मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता

0: आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रभु तेरी महिमा परम अपार, जाको मिलत नहीं कोई पारा, सकल जगत को आप रचावे सबका पालनहारा। प्रभु आपकी महिमा अपरम पार है, प्रभु हम पे कृपा करना।

सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करते याद, कहे कबीर दादास की कौन सुने फरियाद।

प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की सो होए, उत्तम प्रीति सुजानिए हरि नाम से जो होए। जहाँ राम का नाम और एकता का काम हो, वहाँ पत्थर भी तैरते हैं और सपने भी पूरे होते हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001420।

0: 42।
1: ओ 8700104242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700104242 पर। सुनो ना।
0: हाँ।
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700104242।
1: ओ 8700104242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700104242 पर।
2: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अमर शहीद खुदीराम बोस के विचार।
1: आजादी की लड़ाई में बलिदान होने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस को कौन नहीं जानता। खुदीराम बोस जन्मजात देशभक्त थे। ईश्वर ने उन्हें शुद्ध और तीव्र बुद्धि प्रदान की थी। वो बड़ी श्रद्धा से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ को पढ़ा करते थे। वंदे मातरम गीत भी गाया करते थे। वे आनंद मठ को पढ़ते हुए विद्रोही सन्यासियों के संबंध में सोचा करते थे, वे सन्यासी कितने अच्छे हैं, वीर थे, आत्मत्यागी थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जप तप और ईश्वर को भी छोड़ दिया था। वे हथेलियों पर मस्तक लिए हुए घूमा करते थे, मातृभूमि के उद्धार के लिए शत्रुओं से युद्ध करते थे। मैं भी ऐसा ही करूंगा। 1905 ईस्वी में बंग भंग के विरोध में क्रांतिकारियों का आंदोलन जोरों से चल रहा था। क्रांतिकारी चारों ओर फैले हुए थे। संयोग की बात है कि खुदीराम बोस का क्रांतिकारियों से परिचय हुआ। उनके हृदय रूपी समुद्र में पहले से ही देशभक्ति का ज्वार उठ रहा था। क्रांतिकारियों से परिचय होने पर वो और भी अधिक तीव्र हो उठा। परिणामतः खुदीराम बोस सब कुछ भूलकर क्रांतिकारियों के दल में सम्मिलित हो गए। खुदीराम बोस के मन को दासता की पीड़ा सदा मथा करती थी। वे मन ही मन सोचा करते थे, वो दिन कब आएगा जब भारत माता के पैरों की बेड़ियां कटेंगी, देश स्वतंत्र होगा और हम सब बिना किसी भय के बोल सकेंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार की बात है, खुदीराम बोस अपने एक मित्र के साथ वाटिका में घूम रहे थे। वाटिका में एक ओर एक विशाल मंदिर था। मंदिर के बाहर कई स्त्री पुरुष लेटे हुए थे। उन स्त्री पुरुषों को देखकर खुदीराम के मन में बड़ा विस्मय उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने मित्र से पूछा, क्या तुम बता सकते हो ये सभी स्त्री पुरुष इस तरह मंदिर के बाहर क्यों पड़े हुए हैं?

0: मित्र ने उत्तर दिया, ये सभी स्त्री पुरुष रोग की पीड़ाओं से दुखी हैं, दुख से मुक्ति पाने के लिए मंदिर के देवता के द्वार पर धरना दिए हुए हैं। मित्र की बात सुनकर खुदीराम बोले, हो सकता है एक दिन मुझे भी इसी प्रकार देवता के द्वार पर धरना देना पड़ेगा। मित्र ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, ये सभी लोग तो रोग की पीड़ाओं से दुखी हैं, तुम्हें किस रोग की पीड़ा है? खुदीराम ने उत्तर दिया, मैं दासता के रोग की पीड़ा से व्याकुल हूं। इस पीड़ा से अधिक दुख देने वाली और कोई पीड़ा होती है क्या? मित्र चकित विस्मित दृष्टि से खुदीराम को देखने लगा। सचमुच खुदीराम को दासता की पीड़ा सदा व्याकुल बनाए रहती थी। उसी पीड़ा ने तो उन्हें फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झुला दिया था। बात उन दिनों की है जब बंग भंग आंदोलन बड़े जोरों से चल रहा था। उन दिनों कलकत्ता में एक अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त हुआ था, उसका नाम किंग्स फोर्ड था। वो बड़ा अत्याचारी था, देशभक्तों को सजा देने में बड़ा तेज था। फोर्ड के आतंक से परेशान हो क्रांतिकारियों ने एक गुप्त बैठक की। दल के अध्यक्ष ने फोर्ड के अत्याचारों का चित्र खींचते हुए कहा, फोर्ड के अत्याचारों से धरती माँ का हृदय कांप उठा है। वो देशभक्तों को किस तरह दंड देता है उसे सुनने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बंगाल के धरती के पुत्रों, क्या तुम में से ऐसा कोई भी वीर नहीं है जो माँ के आंचल को खींचने वाले की हत्या कर सके? बोलो, कौन है वो वीर जो फोर्ड की कलाइयों को तोड़ने के लिए तैयार हूं? फोर्ड की कलाइयों को मैं तोड़ूंगा महोदय, एक ओर से आवाज आई। सभी क्रांतिकारी विस्मित दृष्टि से बोलने वाले की ओर देखने लगे। वो 18-19 वर्ष का एक दुबला पतला युवक था। उसके अंग अंग में तेज था, स्फूर्ति थी, उसकी आंखें चमक रही थीं, मुखमंडल तेजो दीप्त था। ऐसा लगता था जैसे देवपुत्र हो। अध्यक्ष ने युवक की ओर देखते हुए विस्मय भरे स्वर में कहा, फोर्ड की कलाई तुम तोड़ोगे? तुम्हारा नाम? मेरा नाम खुदीराम बोस है। जानते हो इसका परिणाम? हां जानता हूं, मृत्युदंड। तो क्या तुम मृत्यु से भयभीत नहीं हो? बिल्कुल नहीं। मृत्यु क्या होती है ये तो मैं जानता ही नहीं। जीवन शाश्वत है, नित्य है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य की मृत्यु कभी नहीं होती। जिसे लोग मरना कहते हैं वो तो पुराने वस्त्रों को छोड़ देने के समान है। पुराने वस्त्रों को छोड़ने और नए वस्त्रों को धारण करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। इसी प्रकार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने वाला जीव एक ही होता है। मृत्युदंड से पहले मैं ही हूं और मृत्युदंड के पश्चात भी मैं ही रहूंगा। फिर मृत्यु से भय कैसा? मृत्यु तो जीवन को बदलने की एक क्रिया मात्र है। मैं अपने प्यारे देश के लिए अपने आप को न्योछावर कर देना अपना धर्म समझता हूं।
1: अमर शहीद खुदीराम बोस के विचार अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर निशि सेवक से सुरेश कुमार की बातचीत। विषय है धान की फसल में कीट नियंत्रण।

0: खरीफ के फसल में धान की फसल का बड़ा महत्व है। तो अपने किसान भैया बहनी हरेन अपने धान की खेती में तरह तरह के रोग कीट पतंगा लग जाए से तरह तरह की समस्याएं आ जाती। तो आज अपने कार्यक्रम के बीच में बहनी डॉक्टर निशी सेवक आयन हैं और जौन अपन खेती किसानी के विशेषज्ञ हैं। तो अपने कार्यक्रम में हम पहले आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और हम आपसे पहले ये जानना चाहते कि धान के फसल में जो प्रमुख कीट हैं इनके रोकथाम बदे हमार किसान भैया बहनी हरिन कौन उपचार करें ताकि उनका ई समस्या से निजात मिल सके, बताओ।
1: जी, धान की फसल बहुत ही प्रमुख फसल है और इसमें बहुत सारे कीट लगते हैं
0: जी,
1: तो इनके बारे में हम जानेंगे आज। और मेरी सबसे पहले आग्रह है किसान भाइयों से

0: कि जब भी हम कीटों का निरीक्षण करते हैं और उनके ऊपर कोई भी रासायनिक प्रयोग करते हैं, तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उनका कीटों का क्षति स्तर क्या है।
1: जी
0: कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो कीट देखा और नियंत्रण करना और छिड़काव करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हम इसको देखेंगे कि हर कीट का क्या क्षति स्तर है, और अगर वो आपको दिख रहा है तभी आप छिड़काव को प्रारंभ करें। तो
1: जी
0: मैं आपको कीट बताती हूँ। ये है धान का तना छेदक। ये बहुत ही प्रमुख कीट है, इसको स्टेम बोरर भी कहते हैं, और ये छोटी तितली होती है, और इसका जो सूड़ी है वो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है, और ये तनों में घुसकर डेड हार्ट कर देते हैं, पेड़ को डेड हार्ट बना देते हैं, मतलब सूखी कलियां हो जाती हैं पेड़ की।
1: जी
0: तो अगर आपको इसका क्षति स्तर दिखाई देता है, जैसे 10% डेड हार्ट सूखी कलियां अगर आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप इनमें छिड़काव शुरू कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: छिड़काव जैसे कि मैं आपको बताऊं, कार्बोफ्यूरॉन 3G 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से रोपाई के 10 से 15 दिन बाद आप इसको शुरू करें।
1: अच्छा
0: दूसरी बात एक और मैं बताऊंगी कि एकीकृत जो है आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके तहत एकीकृत कीट प्रबंधन जिसको कहते हैं IPM,
1: हाँ
0: और ये बहुत ही आवश्यक है आजकल। इसमें हम सारे विकल्पों को लेकर चलते हैं, और इसमें हम प्राकृतिक शत्रु का भी उपयोग करते हैं इन कीटों को संभालने के लिए और इनको नियंत्रित करने के लिए। तो जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत ही खास ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम कार्ड्स का किसान भाई सब जानते हैं, इसका प्रयोग करना चाहिए इसके लिए,
1: जी
0: धान के तने छेदक के लिए। ये 50,000 परजीवी प्रति एकड़ 10 से 12 दिन के अंतर पर इसको छोड़ना चाहिए।
1: अच्छा
0: दूसरा मैं आपको बताती हूँ जो कीट है, इसमें पत्ती लपेटक, इसको लीफ फोल्डर भी कहते हैं, ये पत्तियों को मोड़कर अंदर से खा जाता है उनको।
1: जी
0: तो इसके इस्तेमाल के लिए आप देखिए, जैसे नीम तेल 1500 PPM 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ की छिड़काव पे करें।
1: हाँ
0: और दूसरा आपको हम बताएं, अगर आपको रासायनिक प्रयोग करना है तो क्लोरपाइरीफॉस है 20 EC, ये 1.25 लीटर प्रति 500 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर पे आप इसका इस्तेमाल करें। और इसका मैं आपको क्षति स्तर बता देती हूँ, ये है प्रति पौधा एक पत्ता अगर आपको मुड़ा हुआ दिखाई देता है तो
1: जी
0: आप इस पे रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नीम तेल और ये सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपको दिखाई देता होगा, लेडी बर्ड बीटल दिखाई देती है पेड़ों में, मकड़ियाँ दिखाई देती हैं, ये सब
1: जी
0: भी इन कीटों को प्राकृतिक रूप से खाती हैं।
1: हाँ
0: और तीसरा कीट मैं आपको बताती हूँ, ये है भूरा धान फुदका, इसको फुदका कहते हैं, बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं और ये रस चूस लेते हैं सारा पत्तियों से, और पत्तियां जलकर सूख जाती हैं,
1: जी
0: बिल्कुल सूख जाती हैं और फलियां नहीं लगती हैं। और आप देखेंगे कि इसका जो क्षति स्तर है मैं आपको बताना चाहूंगी,
1: हाँ
0: प्रारंभिक अवस्था में 10 कीट प्रति पौधा, बाद की अवस्था में अगर आप देखते हैं पेड़ की बाद की अवस्था में, तो 20 कीट प्रति पौधा या 1 से 2 कीट प्रति तना आपको दिखाई देता है बाद की अवस्था में, तो आप इसके ऊपर रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रसायन में आप pymetrozine 50WG 120 से 130 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इस पर छिड़काव करें। दूसरा, आप जैविक विकल्प की ओर अगर जाते हैं तो आप बेवेरिया बैसियाना, सारे किसान भाई इसको जानते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं,
1: जी
0: 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका आप प्रयोग करें।
1: अच्छा
0: उसी प्रकार से जैसे ये भूरा धान का फुदका है, हरा धान का फुदका भी आपको मिलेगा, वो भी बहुत इसी प्रकार की क्षति को वो पहुंचाता है। और
1: जी
0: मैं आपको बताऊं, एक और कीट है जो है गंधी बग।
1: हाँ
0: गंधी कीट जो है उसको गंधी बग कहते हैं, गंधी कीट कहते हैं, और जब आप देखेंगे इसका प्रकोप खेत में ज्यादा हो गया है तो एक अलग सी बदबू आती है
1: जी
0: खेतों में, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि ये गंधी कीट है। और इसका जो क्षति स्तर है वो आप देखेंगे, दूधिया अवस्था में ये सबसे ज्यादा आता है, दूधिया अवस्था में 1 कीड़ा प्रति पौधा ही क्षति पहुंचाता है। तो
1: अच्छा
0: उसी
1: अच्छा
0: टाइम पे आपको ये रसायन इस्तेमाल आप कर सकते हैं,
1: जी
0: जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बरिल, इसके लिए
1: हाँ हाँ
0: 50 WP 1.25 किलो प्रति 500 लीटर पानी प्रति एकड़, फूल आने से पहले ही आप इसका इस्तेमाल करें।
1: जी
0: दूसरा, नीम बीज करंज तेल स्प्रे आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: हाँ हाँ
0: नीम के जितने भी आप, जैसे नीम तेल है, नीम के बनाए हुए जितने भी आप देखते हैं रसायन है, वो सब इस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी
0: फूल आने के पहले से। एक और आपको मैं बताऊं जो बहुत ही मुख्य कीट है, थ्रिप्स, पत्ती फोल्डर और थ्रिप्स।

0: ट्रिप्स बहुत मुख्य है। ये सब पत्तियों को चूसते हैं, उनको बेरंग कर देते हैं, पत्तों को और पूरे पेड़ों को चूस लेते हैं। और इनकी पहचान ये है कि पत्तियों पर सिल्वर धब्बे आपको दिखाई देंगे। अच्छा। और पत्ते पीले पड़ जाते हैं इसमें
1: जी।
0: तो इसके लिए आप शुरुआत से ही नीम तेल 2%, 2 से 2.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप इस पर छिड़काव करें। और इसकी पहचान ये है कि अगर 6 कीट प्रति पौधा दिखाई देने लगे तो क्षति स्तर की यही पहचान है।
1: अच्छा।
0: आप इसको जो है अपना रसायन का प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: एक और मैं आपको बताती हूँ, केसवर्म जो है वो क्या करता है कि वो पत्तों को कतर कर पानी में उसके केस बना लेता है, गोल करके रहता है और पानी पे ये तैरते हैं। तो इसका जो क्षति स्तर है वो 1 लार्वा प्रति पौधा, आप समझ लीजिए 1 लार्वा प्रति पौधा आपको दिखाई दे तो आप इसके ऊपर छिड़काव शुरू करें। और पहले से ही आप नीम तेल 1500 ppm 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप इस पे छिड़काव कर सकते हैं। और अगर रासायनिक की तरफ जाना है, स्पिनोसैट 45 SC 60 ml प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव करें।
1: अच्छा।
0: देखिए जैसा कि मैंने बात करी कि एकीकृत मैनेजमेंट के लिए, कीट प्रबंधन के लिए ये बहुत आजकल जरूरी है कि सारे उपायों को हमें साथ में लेकर चलना है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे सांस्कृतिक उपाय, कल्चरल जिसको कहते हैं, इसमें खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, फसल अवशेष को जला देना चाहिए, रोपाई से पहले पौधों की पत्तियों की टिप को काट देना चाहिए जिसको क्लिपिंग कहते हैं
1: जी,
0: और खेत खरपतवार बिल्कुल नहीं होने चाहिए, खेत को खरपतवार रहित रखना चाहिए। जल प्रबंधन, जैसे कि अगर फुदका प्लांट हॉपर अगर लगता है, उसका प्रकोप आपको दिखता है, तो उसके प्रकोप पर 3 से 4 दिन खेत से पानी निकालना चाहिए
1: जी।
0: और जैविक उपाय बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाना चाहिए, जैसे नीम आधारित कीटनाशक का नियमित उपयोग करें पेड़ों पर। ये हमारे तो और प्राकृतिक शत्रु हैं, उनको ये क्षति नहीं पहुंचाते हैं और जो हमारे हानिकारक कीट हैं उनको ये जरूर वो करते हैं।
1: अच्छा।
0: रासायनिक उपाय जो हैं वो आप तभी प्रयोग करें जब ज़रूरत पड़े, जैसे थ्रेशोल्ड लेवल जो मैंने आपको क्षति स्तर बताया, जब कीटों का क्षति स्तर पहुंच जाए तभी आप रासायनिक उपायों का प्रयोग करें।
1: अच्छा, तो बहने आप हमारे कार्यक्रम में आयन और धान की फसल में जो प्रमुख कीट हैं उनके नियंत्रण और रासायनिक खाद साथ साथ एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में जो उन फरिया की जानकारी दीन, ये जानकारी दे खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: धान की फसल में कीट नियंत्रण, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर निशि सेवक से सुरेश कुमार की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर पीयूष सक्सेना को, विषय है हार्ट वाल्व की समस्या।
1: हार्ट में हमारे चार चेम्बर्स होते हैं और जो इन चेम्बर्स को जो बीच में जो टिश्यू कनेक्ट करता है उसको हम लोग वॉल्स कहते हैं। और इसी तरह से जो हार्ट के चेम्बर जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से जो खून हमारे फेफड़ों में और हमारे शरीर में जाता है उनको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं। हार्ट के वाल्व की जो बीमारी भारतवर्ष में है उसमें सबसे ज़रूरी कारण जो है वो हार्ट के वाल्व का इन्फेक्शन है, जिसे हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ये बीमारी कम उम्र के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है और इसमें शुरू में पहले हार्ट के वाल्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि उसमें सबसे पहले ये बीमारी जो है घुटनों में सूजन, गले में खराश के साथ आती है। इसको हम लोग एक्यूट रूमेटिक फीवर कहते हैं। इसके साथ साथ यही जो इसका जो कीटाणु है वो हार्ट के वाल्व को भी गलत पहचान करके उसको इन्फेक्शन कर देता है और फिर हार्ट के वाल्व में इन्फेक्शन हो जाने के कारण वो वाल्व जो है या तो सिकुड़ जाता है या फिर वो फैल जाता है, जिसके कारण हार्ट के वाल्व में सिकुड़न या फिर रिगर्जिटेशन या फिर लीक हो जाता है। कुछ हार्ट के वाल्व की बीमारियाँ जो हैं वो पैदाइशी जन्मजात भी होती हैं, परंतु इनका परसेंटेज बहुत कम है। और कुछ हार्ट के वाल्व की बीमारियाँ हार्ट अटैक पड़ने के बाद, जैसे जब बड़ा हार्ट अटैक पड़ता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, तो उसमें कुछ वाल्व से लीकेज शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग पोस्ट एमआई मिट्रल रिगर्जिटेशन या पोस्ट कहते हैं। हार्ट के वाल्व के सिम्टम शुरू में जब हार्ट का वाल्व की बीमारी

0: बीमारी होती है तो उसमें हार्ट के वाल्व की सिम्टम्स में ज़्यादा नहीं पता चलता, परंतु जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली जाती है और समय बीतता चला जाता है तो शुरुआती इन्फेक्शन होने के 8 से 10 साल बाद जा करके पहले जो लक्षण होते हैं बीमारी के वो आने लग जाते हैं। हार्ट के वाल्व के लक्षण में सबसे ज़रूरी जो लक्षण है वो है सांस फूलना, या फिर आपको रात को सीधे लेटने में सोने में कभी कभी तकलीफ हो जाना और रात को अचानक से नींद खुल जाना। इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्ट के वाल्व में सिकुड़न के कारण खून का बहाव हृदय में और बाकी शरीर में अच्छे से नहीं हो पाता और वो खून से जो है वो फेफड़ों में हल्का हल्का भरने लग जाता है। खून का पानी वाला पदार्थ जो है रिस करके फेफड़े में भरने लग जाता है। इसे हम लोग पल्मरी एडिमा कहते हैं। हार्ट जब जो कि एक गंभीर बीमारी होती है जिसको हम लोगों को अपने अगर ये हमें तकलीफ हो रही हो तो हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई भी वाल्व हार्ट का इन्वॉल्व हो सकता है, पर सबसे कॉमनली जो है जो कि लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच का वाल्व होता है जिसे हम लोग मिट्रल वाल्व कहते हैं, उसमें अगर सिकुड़न आ जाना या फिर वो वाल्व इस तरह से नष्ट हो जाता है कि उसका पूरी तरह बंद नहीं हो पाता जब उसे बंद होना चाहिए, तो उसमें से लीकेज होने लग जाता है जिसे हम लोग मिट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं। इसी तरह से जो वाल्व हमारे हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चेम्बर होता है हार्ट का, वहाँ से जो हमारी हार्ट की मेन नस एओटा से पूरे शरीर को खून फैलाता है जिसे हम लोग एओटिक वाल्व कहते हैं, अगर उसमें जाम आ जाए यानी स्टिनोसिस हो जाए या फिर रिगर्जिटेशन हो जाए तो उसमें परेशानी हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है सांस फूलना, काम न कर पाना, थकान हो जाना, पैरों में कभी कभी सूजन आ जाना, वजन अचानक से बढ़ जाना शरीर में पानी बढ़ जाने के कारण। इसका प्रिवेंशन जो है वो दवाओं के कारण से है और अच्छी डॉक्टरी सलाह से है। अगर हार्ट का वाल्व जो है वो दवाओं से ठीक नहीं हो सकता उसके सिम्टम, तो फिर उसमें आगे जा करके हार्ट के वाल्व का ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर तो इसलिए अगर कोई छोटे उम्र का बच्चा जिसे गले में खराश कभी हुई हो और उसके जोड़ों में सूजन आने लग जाए तो उसके लिए उसको किसी डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए, खून की जांचें करानी चाहिए जिससे पता चल सके कि उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ तो नहीं हुई, और उसके साथ साथ उसकी हार्ट की जाँच होनी चाहिए जिससे ये पता चल सके कि हार्ट का वाल्व जो है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं।
1: हार्ट वाल्व की समस्या, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पीयूष सक्सेना को, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 9:30 पर विज्ञान भारती और 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। अब से कुछ देर बाद 7 सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। फिल्मों से लिए गए भजन का आनंद लीजिएगा 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर और 12:15 पर सुनेगा प्रियंका कृष्ण का सैक्सोफोन। 8:45 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम सुन सकेंगे आप 9:50 पर और 7:45 पर।

दस बजकर पांच मिनट पर आप सुनेंगे लोकमाधुरी कार्यक्रम। दस बजकर तीस मिनट पर सुनिए कथक नृत्यांगना डॉक्टर अनु सिन्हा से नेहा गुप्ता की भेंट वार्ता। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 11 बजे।

12:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम होगा। बहनें सुनेंगी कार्यक्रम पनघट 1:15 पर, जिसमें सुनेगा नीलम शर्मा के गाये लोकगीत के साथ है नम्रता श्रीवास्तव की वार्ता। विषय है मानसिक शांति में सकारात्मक सोच। दोपहर 2:30 पर सुनिए अजय कुमार यादव और साथी के गाये लोकगीत। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम होगा। 5:15 पर योजन सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम।

6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में परिवार कल्याण की बात में सुनिए, बदलती जलवायु में हृदय का कैसे रखें ध्यान। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि, डॉक्टर चितरंजन सिंह की वार्ता। 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियोवेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: सेवाविस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमंत्री अमितशाहः गतवासरे मादकद्रव्याणि विरुध्य संयुक्तसंघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै, सामाजिकस्थिरतायै, आर्थिकहिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतॄन्, यूनः, मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम

0: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: उत्तर प्रदेशारक्षिबलिना श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टो जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, पूर्वीयोत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपयक्षेत्रेषु च तडित्पातस्य सम्भावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। संगीत सतीश भाटिया का है।

गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी ने कलयुग की चारित्रिक विशेषताओं का प्रसंग छेड़ दिया है, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी आंखों देखा ही नहीं अपितु बहुत कुछ भोगा भी था। कलिकाल वैसे तो पाप और अवगुणों का युग है, किंतु उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण की प्राप्ति भी है। वो ये है कि कलिकाल में बिना परिश्रम के ही भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ, संगीत सतीश भाटिया का था। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यही समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मों से लिए गए भजन। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए नरसी भगत फिल्म का ये भजन, हेमंत कुमार सुधा की आवाज, जीएस नेपाली के बोल, संगीत रवि का।

लोफर फिल्म के इस खूबसूरत भजन से, फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत, कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। और अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनावों में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान और चढ़ावा मामले में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। श्रीराम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपियों को जेल भेजे जाने के बाद अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर बाकी आरोपियों से कुल मिलाकर 79,85,000 रुपये से अधिक की रकम बरामद की गई है। आरोपियों को 29 जून को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में

0: एफआईआर दर्ज होने और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक निजी एस्ट्रोमेडिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने राज्य में 2017 से पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति के लिए तत्कालीन सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने वर्तमान सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नयन का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा रही है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 से 2029 की अवधि के लिए कल मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। इस अवसर पर गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश ने सोलर रूफटॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6,00,000 से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और यह देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा के मौके पर कल प्रदेश भर में ताजिया जुलूस निकाले गए। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। जुलूसों के बाद देर रात तक कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। लखनऊ स्थित तालकटोरा की कर्बला में बड़ी संख्या में लोगों ने इमाम हुसैन को याद किया। 10वीं मुहर्रम पर गोरखपुर में भी कल सुबह से ही ताजिया जुलूसों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात भर चलता रहा। एक रिपोर्ट।

0: की 10वीं तारीख पर महानगर के सभी इमाम चौकों पर बैठाए गए ताजिए के साथ अकीदतमंदों ने जुलूस निकाला और करबला पहुंचकर ताजियों को करबला में दफन किया। इमाम चौकों पर रखे गए बड़े ताजिए जुलूस में शामिल हुए। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: मथुरा, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, जौनपुर, उन्नाव, हापुड़ और महाराजगंज सहित राज्य के सभी जिलों में ताजिया जुलूस निकाले गए। इस अवसर पर प्रदेश भर में ताजिया जुलूस मार्गों और करबलाओं के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून प्रवेश करेगा। इसके बाद 30 जून से 3-4 दिनों तक प्रदेश भर में गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्रीराम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत। कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए प्रियंका कृष्ण का सैक्सोफोन वादन, राग गुर्जरी तोड़ी। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरुणेश कुमार पांडे।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रियंका कृष्ण का सैक्सोफोन वादन राग गुर्जरी तोड़ी। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अरुणेश कुमार पांडे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में ये देशभक्ति गीत।
1: मुक्ति के संघर्ष का आधार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा

0: वृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
1: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी

0: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ दो कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टिपत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीरार्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की

0: सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-times champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home and Corporation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in the program.
4: Developed by Sahakar Taxi Cooperative Limited with the support of 8 major cooperative institutions including Amul, IFFCO and NABARD, Bharat Taxi operates on a zero commission model to pass the maximum financial benefits directly to drivers. Since its soft launch in December last year, this platform has registered over 1.5 lakh drivers and 7 lakh customers in Gujarat alone.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासर वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत का सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। FIH मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दे दी। और फुटबॉल में दो बार का चैंपियन यूरोगोए स्पेन के हाथों 1-0 से हार जाने के बाद फीफा आलमी कप से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारत की दिफाई फौजों का एक दस्ता और भारतीय बहरिया के 2 जहाज भी इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम अपने दौरे में सेशल्स के सदर डॉक्टर पेट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और दो तरफा ताउन के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे। नीज वो बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन अलाक्वामी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम मोदी अपने दौरे में सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। आज वो शजरकारी की एक तकरीब में जड़ी बूटियों के एक बाग की सैर करेंगे और सेशल्स के साहिली गार्ड के ठिकाने का दौरा करेंगे। भारत और सेशल्स के दरमियान एक देरीना शराकत दारी है जिसकी जड़ें तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। बहिरे बहरे हिंद खित्ते में एक समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का भारत के विजन महासागर में एक खास मकाम है और आलमी जुनूब के तई इसका एक अहद है। वज़ीर आज़म के इस दौरे से भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती और सभी शोबों में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के मुश्तरक अज़्म का इआदा होता है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह इमदाद बाहमी पर मबनी पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का गुजरात के 14 बड़े शहरों में आगाज करेंगे। ये तकरीब आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में मुनक्किद की जाएगी। जनाब शाह गुजरात के 3 रोजा दौरे पर हैं। वो बहुत से बुनियादी कामों का भी आगाज करेंगे और कुछ जायजा मीटिंगों की सदारत करेंगे। हमारे नामा निगार ने बताया है कि इस प्रोग्राम में वजीर आला भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी, इमदाद बाहमी शोबे के

0: हैं जिनमें बचाव टीम के 41 अरकान भी हैं। वेनेजुएला के आरजी सदर डॉल्सी रोड्रिग्ज ने जलजलों के बाद भारत की यगानगत का इतराफ किया है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई मुश्किल घड़ी में भारत और वेनेजुएला के आवाम के दरमियान तआवुन के जज्बे की हामिल है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और बरतानिया के ताल्लुकात भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहदे सेटा की वजह से एक नए संग मील की तरफ बढ़ रहे हैं। लंदन में कल तिजारत से मुतालिक एक मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि बहुत से शोबों की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत एक खुशी का मौका था। ये शख्सियतें मुस्तकबिल के जबरदस्त मौकों पर यकीन रखती हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों को मदु किया कि वो सरगर्मियों में गहराई पैदा करें, इख्तिरा को रफ्तार दें और मुश्तरका खुशहाली के लिए मजीद सरमायाकारी करें, क्योंकि सेटा से तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ये कहते हुए हमले किए कि ये हमले एक दिन पहले आबनाए हुरमुज में एक माल बरदार बहरी जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी फोर्सेज ने ईरान में मिसाइल व ड्रोन लॉन्च किए जाने के मकामात और साहिली राडार तंसीबात को निशाना बनाया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि अगर ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसे नतीज का सामना करना होगा। इस दौरान ईरान के फौजी तर्जुमान इब्राहिम अलफकर ने कहा कि अमरीकी हमलों के खिलाफ ईरानी कार्रवाई इस मरतबा ज्यादा तेज और फैसला कुन होगी। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट्स में अलफकर ने कहा कि ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए मुनासिब वक्त और जगह का इंतखाब करेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने देरपा अमन व सलामती के क्याम के मकसद से इसराइल और अमरीका के दरमियान अमरीकी सालिसी पर मबनी मुआहदे के फ्रेमवर्क का ऐलान किया है। मुजव्वजा समझौते में जंगबंदी और जनूबी लबनान से हिजबुल्ला दस्तों को हटाया जाना और उसके सभी हमले रोकना शामिल है। समझौते के खाके का ऐलान करते हुए जनाब रूबियो ने इस मुआहदे को इस्तेहकाम की बहाली की जानिब पहला कदम करार देते हुए कहा कि यह पेशरफ्त चैलेंज से भरी है, ताहम इस वक्त उतनी ही नागुजीर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, माहे और शिमाली मशरकी भारत में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मशरकी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज शदीद गर्म लहर की सूरत हाल बरकरार रहेगी। मर्दों के एफआईएच प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी अबू बकर ने एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए पाकिस्तान को पहले क्वार्टर में एक गोल की सबकत दिलाई। इसके बाद भारत की तरफ से अलग अलग खिलाड़ियों ने कुल 7 गोल किए। अब कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। फीफा आलमी कप 2026 में आज सुबह मैक्सिको के ग्वाडलाजारा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के आखिरी मैच में यूरोगोए स्पेन से 1-0 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में सरे फहरिस्त हो गया है। ग्रुप एच के एक दूसरे मैच में फीफा आलमी कप में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली टीम कैबो वर्डे सऊदी अरब के साथ बगैर किसी गोल के बराबरी पर मैच खत्म करने के बाद 32 राउंड में पहुंच गई है। यह मैच अमरीका के हॉस्टन स्टेडियम में खेला गया था। इससे पहले आज अमरीका के बोस्टन स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से शिकस्त दी, जबकि मैक्सिको के टोरंटो स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के एक दूसरे मैच में सेनेगल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ सेनेगल 32वें राउंड में दाखिल हो गया है। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बेलफास्ट में खेले गए दो T20 बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। क्रिकेट के किसी भी तरह के फॉर्मेट में आयरलैंड ने भारत पर यह पहली जीत हासिल की है। जीत के लिए मुकर्रर किए गए 183 रन के निशाने को हासिल करने में भारत की टीम नाकाम रही और एक और ओवर बाकी रहते हुए पूरी टीम 148 रन के स्कोर पर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा और आखिरी 20 मैच आज खेला जाएगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है।

आज है 27 जून। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 27 जून को छोटे व्यवसायों के योगदान और महत्व को पहचानने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी MSME डे संयुक्त राष्ट्र ने 6 अप्रैल 2017 को इस दिन को मनाने की घोषणा की। इस दिवस का उद्देश्य छोटे कारोबारियों और कारीगरों के काम को सम्मान देना है। 27 जून को मेले, लोन, कैंप और उद्यम रजिस्ट्रेशन जैसे कार्यक्रम करवाए जाते हैं। हमें इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि लोकल सामान खरीदकर छोटे उद्यमों को हम मजबूत बनाएंगे। वोकल फॉर लोकल, मतलब अपने आसपास बने सामान के बारे में बताएं, उसे खरीदें और दूसरों को खरीदने के लिए कहें। आपस में चर्चा करें, दोस्तों को बताएं, अपना दुकानदार, अपना परिवार, लोकल जो अपनाएगा भारत आगे जाएगा। जी हाँ, सूक्ष्म उद्यम से शुरुआत करें, लघु बनकर विस्तार करें, मध्यम बनकर देश का नाम रोशन करें।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, आपसे एक बात कहेंगे कि हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें करें। मैं सक्षम हूँ या मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जैसे वाक्य दोहराएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तनाव कम होगा और चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। हम सपने देखते हैं। सपने देखने और उन्हें साकार करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों के बीच संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। सपनों की दुनिया में खोए रहने की आदत व्यक्ति को उसके वर्तमान से दूर कर देती है। सपने देखने की प्रक्रिया में हमेशा लक्ष्य पर ध्यान

जी हाँ श्रोताओं, स्वस्थ रहेंगे तो संतुलन रहेगा और संतुलन रहेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। कार्यक्रम में चलते चलते हम यही कहेंगे कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद ना आने दे और सूक्ष्म शुरुआत से सफलता तक ले जाए। इसी के साथ स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें, सुनते रहें कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, जो प्रतिदिन प्रसारित किया जाता है 8:45 पर।

साथ स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। सुनते रहें कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, जो प्रतिदिन प्रसारित किया जाता है 8:45 पर।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज से रंग फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ। बोल समीर का, संगीत नदीम श्रवण का,

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए तलत अजीज अनुराधा पौडवाल की आवाज में बहार आने तक फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा, इब्राहिम अश्क के बोल, संगीत राजेश रोशन का।

बाहर आने तक फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए सुल्तानपुर और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन कुमार साहू का।
2: सुल्तानपुर जिले में पिछले एक माह से सूर्य की तपिश का सामना कर रहे जिलेवासी मानसून के आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माह भर से जिले में पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहा। सप्ताह भर से पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी के चलते राहगीरों के लिए जिला प्रशासन ने राजीव गांधी पार्क परिसर में अस्थायी कूल होम भी बनाया है, जहाँ पर पानी पीने, बैठने व आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। भीषण गर्मी के चलते जिले की सामाजिक संस्थाओं ने राहगीरों के लिए अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर, मिट्टी के घड़ों में निर्मल जल एवं गुड़ रखकर निःशुल्क प्याऊ सेंटर भी खोल रखे हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ माह के मंगलवार को जिले भर में बृहद स्तर पर भंडारों का आयोजन किया जाता रहा। इस सप्ताह अंतिम मंगलवार को नगर में विशेष कर चौक क्षेत्र में आयोजित भंडारों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन श्रद्धालुओं को वितरित किए गए। सुल्तानपुर जिले में जनगणना 2027 का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है। 7,10,223 मकानों की गणना हुई है। इसके अनुसार 947 परिवार अंकित किए गए हैं। मकान सूचीकरण के आधार पर अनुमानित जनसंख्या 31,07,493 हो गई है। पहले चरण में 5,600 कार्मिकों ने डाटा एकत्र करने का काम किया। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। यह 2027 में फरवरी में शुरू होगा। इसमें जातिगत जनगणना भी की जाएगी। जनगणना कार्यक्रम के संबंध में जिला जनगणना अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि
3: जनगणना 2027 का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जनपद सुल्तानपुर में जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान हमारे जनपद सुल्तानपुर में 5 तहसीलों और 5 स्थानीय निकायों को मिलाकर कुल 10 चार्ज गठित किए गए थे और इन 10 चार्जों में टोटल हमारी 4390 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक गठित किए गए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारी पूरी टीम ने बड़ी तल्लीनता से कार्य किया और इसे समय रहते हुए पूरा किया।
2: जनपद सुल्तानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम बृहद स्तर पर आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम पर्यावरण पार्क में आयोजित किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया था। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऋषि परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मान्यता दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र के एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जो निरंतर 12 वर्षों से निरंतर अपने राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए महाअभियान चलाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे नेतृत्वकर्ता का सानिध्य पाना हम सबके लिए सौभाग्य है। उन्होंने पीएम के आह्वान को दोहराते हुए प्रत्येक दिन नियमित योग को अपनाने का नागरिकों को संकल्प दिलाया। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों ने योग को अपनाकर अपने जीवन को सहाल बना लिया है। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि
4: जो मेडिसिन भी जो काम नहीं कर पाती, अगर हम नियमित रूप से योगा करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें जड़ से ख़त्म हो गई है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आजकल इतना बिजी रूटीन हो गया है, मोबाइल फ़ोन, इधर टाइम नहीं मिलता है लोगों को कुछ भी करने का। अगर हाफ एन आवर या 1 आवर डेली निकालें अपने शरीर के लिए तो शरीर जो है नियमित रूप से बहुत ही अच्छा रहेगा।
2: जनपद में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी गति मिली है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे को टांडा बांधा हाईवे से जोड़ने वाली पकड़ी बनकेपुर मार्ग का चौड़ीकरण लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। वहीं गोमती नदी के निरसहिया

0: घाट पर लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पुल बनने से तराई क्षेत्र के 5 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले की 35 ग्राम पंचायतों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शासन ने 15वें वित्त आयोग के तहत 14 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। प्रथम चरण में चयनित ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इधर 28 जून से जिले में पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने 0 से 5 वर्ष तक के 3,56,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बूथों के साथ साथ घर घर जाकर भी बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाने की अपील की है।
1: सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल सिंह का।
2: गंगा दशहरा पर्व पर बुलंदशहर जिले में लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। जिले के अनुपशहर आहार नरोरा कर्णवास राजघाट रामघाट सहित सभी गंगा घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात रही। स्नान को लेकर सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर घाटों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। लखनऊ में एक निजी कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक घटना के बाद बुलंदशहर में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। जिले के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पुलिस प्रशासन के अफसरों के द्वारा अग्निशमन की टीम के साथ निरीक्षण किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स में आपात स्थिति में बचाव के लिए क्या इंतजाम है उन्हें भी गंभीरता से परखा जा रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले भर में अलग अलग टीम बनाकर तमाम व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। साथ ही इमरजेंसी में कैसे खुद को सुरक्षित करें ये भी बताया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराने के उद्देश्य से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए 1 जुलाई से जिले भर में स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत घर घर संपर्क कर बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 1862 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें अब तक करीब 2,00,000 बच्चों ने नए सत्र में प्रवेश लिया है। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य इस बार ऐसे बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने पर रहेगा जो किसी कारणवश पढ़ाई से दूर हैं या बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य योग शिविर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यमुनापुरम स्टेडियम बुलंदशहर में भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में योग को अपनाने और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने की। इस अवसर पर सांसद भोला सिंह, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त मेरठ भानुचंद गोस्वामी और जिलाधिकारी बुलंदशहर कुमार हर्ष ने पौधारोपण भी किया। बीते दिनों कृषि विभाग द्वारा बुलंदशहर में विशेष 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे और अंतिम दिन कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर द्वारा की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और भारी संख्या में प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में जहां कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत और तकनीकी जानकारी दी गई, वहीं राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह दिलेर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं गिनाई। उन्होंने बताया कि सरकारें जनहित में कार्य कर रही हैं, बड़ा बदलाव देश में इन 12 वर्षों में हुआ है।
3: देखिए, पिछले 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, देश का विकास, देश का विश्वास और देशवासियों के लिए जन कल्याण, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम, जो काम 2014 से पहले 67 सालों में पुरानी सरकार नहीं किए थे, उससे दोगुना काम, दोगुनी योजनाएं, दोगुनी संख्या सभी क्षेत्र में हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ाई है।
2: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते PATS को देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ATS टीम ने बुलंदशहर से 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक ATS को पिछले काफी समय से इन संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में खुफिया इनपुट मिल रहे थे। पुख्ता जानकारी और सर्विलांस के आधार पर ATS की टीम ने बुलंदशहर में छापे छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए संदिग्धों की पहचान मोहम्मद उमर पुत्र जुल्फिकार और फैजान पुत्र समीमुद्दीन के रूप में हुई। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की पुष्टि कानून व्यवस्था और एटीएस के आला अधिकारी एडीजी अमिताभ यस ने की है।
4: दिनांक 17 जून 2026 को एटीएस उत्तर

0: पुलिस द्वारा दो अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
1: ओमान खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकन हमले से सकुशल बुलंदशहर जिले के रहने वाले सनी चौधरी ने गृह वापसी की, जो कि मर्चेंट नेवी में पिछले एक वर्ष से तैनात हैं। उनकी ड्यूटी पानी के जहाज पर गल्फ ऑफ ओशियन में चल रही थी। 11 जून को अमेरिकन नेवी ने गल्फ ऑफ ओशियन ओमान की खाड़ी में खड़े जहाज पर हमला कर दिया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी के कहने पर रेस्क्यू किया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी की मदद से उन्हें भारत पहुंचाया गया है। 20 भारतीयों को सकुशल भारत भेजने की ओमान की इंडियन एम्बेसी ने एक्स पर फोटो सहित सूचना की पोस्ट भी डाली है। घर पहुंचने पर सनी चौधरी ने भारत सरकार का आभार जताया।
2: ओमान वॉरशिप द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जब हम सिनाज पोर्ट पहुंचे, वहाँ इंडियन एम्बेसी ने हमारी जो भी सहायता हो सकती थी वो हमारी की और हमको ओमान से इंडिया के लिए भेजा गया। मैं हमारी भारत सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: आप सबके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपका मेज़बान फरीदुल्ला खान हाजिर है। सलाम खलूस कबूल कीजिए। आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। इस्लामी साल की शुरुआत मुहर्रम और हराम के पाक महीने से होती है। मुहर्रम हुरमत वाला महीना चार पाक महीनों में से एक है। मुहर्रम के महीने में बहुत ही वाकयात पेश आए हैं। इस महीने की 10 तारीख को आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई मिली। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन से निजात मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठाया गया। और इसी दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हुई। इसी तारीख को क़यामत क़ायम होगी। मुहर्रमुल हराम के इस पाक महीने में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं ये अपने आर्काइव्स में मौजूद फीचर, कुर्बानी जो तारीख बन गई। तहरीर शहज़ादा गुलरेज़ की है।

وہ غم ہے جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قائم ہے،

ہنسی ہے، اب یہ ہے کہ ہمارے میں نظر بھی نہیں ہے۔

0: अभी आप ये आकाशवाणी रामपुर के आर्काइव्स में मौजूद फीचर समाप्त कर रहे थे, कुर्बानी जो तारीख बन गई। सदाकार थे सैयद हामिद मियाँ, रईस रामपुरी, जी आर सैयद, जुल्फ़िकार आदिल, शहजादा गुलरेज, अख्तर रिजवी और विनोद आनंद दयाल। तरतीब व पेशकश थी विक्रांत चौधरी की। और अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा है।

0: हाथा
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने। बीज तो कब के बो दिए?
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुजाता सिंह के स्वर में ये भजन।

मिल गया एक तारा। अभी आपने सुना सुजाता सिंह के स्वर में ये गीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: वणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में यह सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रखे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला रविवार को होगा। वहीं फीफा विश्व कप 2026 में 2 बार का विश्व विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बयाना ने स्पेन के लिए विजयी गोल किया। ग्रुप एच में काबूवर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबूवर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक माधुरी। लोक माधुरी में आज के कलाकार हैं रश्मि टंडन, दुखी राम। सबसे पहले सुनिए रश्मि टंडन के स्वर में ये देवी गीत।

दुखीराम के गाए इस दादरा गीत के साथ ही लोकमाधुरी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए भेंट वार्ता, कथक नृत्यांगना डॉक्टर अनु सिन्हा से नेहा गुप्ता की बातचीत, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की।
1: श्रोताओं, नृत्य हम जब भी देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ हैपन हुआ, कुछ हमारे साथ

0: भी हुआ और हम उसी भाव में बह चलते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि गाना सुना आपने और आपके जो होठ हैं वो गुनगुनाने लग जाते हैं, भले ही हमें गाना आए या ना आए। वैसे नृत्य के साथ भी होता है ना, आपने कभी देखा हो शादी में बजते हुए या फिर किसी मंच पे किसी भी नृत्यकार या नृत्यांगना को देखा हो तो पैर अचानक से उसी में शामिल हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता होगा? इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वो प्रभाव बहुत प्रभावशाली होता है, वो हमें धीरे धीरे अपने आगोश में लेने लगता है और हम उसके होने लगते हैं। आपको लग रहा हो कि ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में आप अनु सिन्हा जी हैं। आपने ज़रूर बहुत सारे वीडियोस उनको लाइव करते हुए देखा होगा, कथक नृत्यांगना हैं आप, देश विदेश के मंचों पर आपने भावों को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया है। चलिए आज उस भाव के सफर पर निकल पड़ते हैं जो कभी जन्मे और उन्होंने उसको सींचा। स्वागत करते हैं अनु सिन्हा जी का, बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए।
0: मैंने आपको कई सारे वीडियोस में भी देखा है, पढ़ा भी आपको, अच्छा लगा ये
1: धन्यवाद।
0: जान करके कि जिस तरह से आप बिल्कुल इलेक्ट्रिफाई कर देती हैं जो हमारे जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग होते हैं, आप जब देखती हैं कि वो आपके साथ होने लगते हैं तो कैसा लगता है?
1: ये सब सही में मेरे लिए एक सपना जैसा ही लगता है आज भी, क्योंकि इस सपने को ही लेकर मैं पैदा हुई हूँ और इस सपने को सजाने के लिए, संवारने के लिए मैंने अपनी पूरी उम्र इसमें मैंने न्योछावर किया है। तो मुझे तो हर एक छोटा से छोटा मंच और बड़ा से बड़ा मंच जो है बहुत ऊर्जा और एनर्जी देकर जाता है। मैं इसी में जागती हूँ, इसी में सोती हूँ और इसी में मैं खोई रहती हूँ।
0: जब आपने सोचा, आप टाटानगर से हैं,
1: जी,
0: उसके बाद आप गौतम बुद्ध नगर आती हैं,
1: जी
0: गोरखपुर का जो इलाका है अपना,
1: जी
0: फिर कुछ जयपुर से
1: जी
0: सफ़र हुआ
1: जी
0: दिल्ली और तमाम शहर
1: जी
0: और विदेशों के भी कुछ
1: जी
0: स्थान आप गई।
1: जी
0: उस समय आपने जब ये सोचा ही होगा कि नहीं मैं भी कुछ करूं, तो ये लगा था आपको कि इतना बड़ा हो जाएगा?
1: नहीं, कभी भी नहीं, इतना बड़ा तो कभी नहीं सोचा था, ये तो कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये ज़रूर है कि अब जैसे जैसे जो सपने साकार होते जाते हैं वैसे वैसे लगता है कि वाकई जब इंसान बचपन से कुछ सोचता है, और मैं बच्चों को भी हमेशा ये कहानी अपनी सुनाती हूँ कि मैं सपने में देखा करती थी कि मैं मंच में नृत्य कर रही हूँ, मैं बॉम्बे में कलाकारों के साथ मैं घूम रही हूँ, मैं बॉम्बे के बड़े बड़े कलाकार लोग हमारे घर पे आ रहे हैं, ये मैं सपने में बचपन में देखती थी। लेकिन मेरे घर का माहौल बिल्कुल भी नृत्य संगीत से कोसों दूर था।
0: फिर पिताजी
1: हाँ, मेरे
0: डांटते नहीं
1: पिताजी
0: थे?
1: बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव और बहुत ऐसे सोसाइटी से, हम लोग जैसे बिहार की मैं
0: जी
1: बेटी हूँ,
0: जी
1: बिहार में मेरे नानी घर, दादी घर, सब बिहार। तो जो जमशेदपुर है वो भी पहले बिहार था, अब
0: जी
1: झारखंड है।
0: अब झारखंड।
1: तो मैं जब फादर मेरे रेलवे में थे, जमशेदपुर में पैदा हुई मैं, और जमशेदपुर में जो कल्चर है वो पूरा बहुत ही एक मल्टी कल्चर है। वहाँ पर
0: हाँ,
1: पूरे देश के लोग
0: लोग
1: वहाँ पर
0: रहते
1: रहते हैं,
0: हैं।
1: क्योंकि टाटा स्टील सिटी है, उसके
0: हाँ
1: वजह से पूरे हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे लोग वहाँ पर कार्यरत हैं। और वहाँ पर बंगाल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जिसके वजह से आर्ट एंड कल्चर भी बहुत ज़्यादा है, घर घर में वहाँ पर नृत्य संगीत करते हैं। इवन
0: जी
1: मेरे पिताजी हमें स्कूल में भी नृत्य संगीत में पार्ट लेने नहीं देते थे, जबकि हमारे मम्मी के नानी घर में इसका बहुत चलन था, क्योंकि मेरे नानी घर एक जमींदार फैमिली से होते थे, जो राजगीर के पास उनका
0: जी
1: गांव है, स्योतर नाम है उस जगह का। तो वहां पर उनके घर में बोलते थे कुछ भी करो, मंदिर में करो, अपने घर में करो, चाहे भजन है, कीर्तन है, शादी ब्याह के नृत्य संगीत कुछ भी है, सिर्फ घर में अपने घर के स्तर पर। लेकिन
0: ये
1: हाँ
0: जो एक ग्लास सीलिंग है
1: जी,
0: कि
1: इसको
0: नहीं करना है,
1: हाँ नहीं करना ही नहीं था हमें तो
0: और उस
1: करना।
0: अनु की नज़र
1: हाँ
0: में जो सपने में घूम रही थी चीज़ें,
1: हाँ
0: वो
1: बिल्कुल,
0: हकीकत में करना था।
1: हाँ
0: कैसे
1: बहुत,
0: हुआ ये?
1: उसके लिए बहुत मेहनत करते करते अड़ोस पड़ोस में हमने कुछ देखा नृत्य संगीत सीखते हुए लोगों को करते हुए, तो बहुत मुझे इच्छा होती थी, मैं छुप के देखती थी और उन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करती थी। और जब हम लोग के वहाँ पर बहुत सारे जो फेस्टिवल होते थे, जो सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा, इन सब पूजाओं में बहुत ज्यादा वहाँ पर
0: प्रस्तुतियां देते हैं
1: बंगाली और उड़िया जो उड़ीसी डांसर, तो मुझे उनसे बहुत रहता था, तो उससे मुझे बहुत मार भी पड़ती थी। तो ऐसे करते करते जब शादी की जो बारी आई तो मेरी बारी भी आ गई, एक चार बहनों की शादी हो गई, फिर पांचवी में मैं थी तो मेरी भी शादी, वही जो 16-17 साल 2 महीने की उम्र थी मेरी उस समय, तो मेरी शादी हो गई। उस समय हमने बस अपना स्कूल खत्म ही किया था, कॉलेज में पढ़ा था, और कॉलेज की पढ़ाई जो है हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग शादी के बाद ही करते हैं, क्योंकि शादी तो हो गई स्कूल खत्म।

0: मोती कॉलेज
1: जी
0: में पांव रखा, शादी हो गई, फिर आपके ससुराल वाले आपको पढ़ा सकते हैं, और ससुराल में सब लोग पढ़ाते ही हैं, क्योंकि हम
1: जी
0: लोग क्या है, वो जो गौना वगैरह भी होता है कि
1: हाँ
0: एक साल के बाद
1: हाँ
0: में, वो
1: जी
0: सब परंपरा तो उस समय थी, अब तो वो सब परंपरा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने वो सब परंपरा को देखा है घर में। तो उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, जितना मर्जी पढ़ना चाहे, सब लोग पढ़ते रहते हैं और घर भी संभालते रहते हैं। और मेरी भी ऐसे शादी हो गई और मैं भी आ गई, उसके बाद तो मेरा तो सपना तो फिर हमें भी लगा भी सपना तो टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया,
1: जी
0: कुछ सोचना ही नहीं था। फिर ऐसे करते करते फिर 19 साल की उम्र में तो मेरा बेटा भी हो गया एक,
1: जी
0: तो हम लोग भी उस समय स्ट्रगल करने लग गए, वहां से फिर दिल्ली आ गए, दिल्ली में फिर थोड़ी पढ़ाई भी
1: मतलब
0: करते
1: अभी
0: रहे।
1: तक वो प्रारंभिक शिक्षा शुरू नहीं
0: नहीं
1: हुई
0: नहीं नहीं नहीं
1: थी।
0: बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं, एकदम नहीं,
1: आह
0: बिल्कुल भी नहीं, वो जो देखा था
1: मतलब
0: थोड़ा
1: वो जो
0: बहुत,
1: सपना देखा
0: हाँ
1: अभी
0: हाँ
1: रखा हुआ है और अभी तक
0: हाँ अभी तो
1: वो
0: कुछ नहीं, वो तो शुरुआत ही नहीं हुई, बस वो जो देखा छुप के देखा, जो ऐसे देखा, जो थोड़ा स्कूल में देखा या कहीं, अच्छा उस समय तो ना टीवी ना कुछ ऐसा ना कुछ, हमें तो जो जिस तरह से मैगजीन जो होते हैं, जो मैगजीन में भी कुछ फोटो देखते हैं, वो सब फोटो देखना भी मना था, कभी कभार वो पंडाल में देख लिया या स्टेज पे देख लिया बंगाली लोग। तो मैं तो बता रही हूँ कि 84 85 80 के बाद की, उसमें 80 से लेके 90 तक 95 तक तो कुछ था ही नहीं। घर में हमारी तो जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली, जब शादी होके हमारे फिर हस्बैंड भी उस समय अपना काम में नए नए थे सब लोग, और हम लोग
1: जी
0: को भी अपना, मुझे पढ़ाई भी चल रही थी, कुछ ना कुछ करना भी था, लेकिन नृत्य और संगीत के बारे में तो सोचना ही नहीं था, वो तो सब भूत भी उतर गया था एक तरह से। और गाना सुनते थे, गाना मैं बहुत अच्छा गाती थी बचपन में,
1: जी
0: गाना मैं जरूर गाती थी, कोई भी गाना मैं सुनती थी तो गाना याद कर लेती थी और उसको मैं अच्छा से गाती थी, तो गाना लोग सुनते थे तो मैं सोचती थी चलो ठीक है अब गाना ही गाएंगे और डांस तो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन खैर ऐसे हुआ कि ऐसे समय चलता गया, उसके बाद जब मेरा बेटा 6 7 साल का हो गया, 8 साल का, तब हम लोग की स्थिति थोड़ी थोड़ी बहुत अच्छी हो गई, संभल गई, काम धंधा भी अच्छा हो गया, सब सेटल होने लग गया परिवार, तो पैसे की भी कमी नहीं रही। उसके बाद फिर एक दिन मैंने अपने हस्बैंड के ऑफिस में, मैं गई थी तो उनके ऑफिस में टेबल पे एक कथक की किताब रखी हुई थी, तो देखते ही मैं तो बहुत ही ललायित हो गई कि ये किताब कैसे, तो उन्होंने बोला एक हमारे कोई वेंडर है वो आए हैं, तो उनकी बहन ये करती हैं, उनको कुछ पैसे देने थे स्पॉन्सरशिप, तो हमने उनको पैसे दिए। तो मैंने बोला अरे आपने पैसा भी दिया, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने ये काम जो मैं करना चाहती थी उसके लिए आपने किसी और को पैसा दिया। मैंने किनको दिया उनके, आप प्लीज मिलवा
1: जी
0: दीजिए। तो उन्होंने फिर उनको बुलाया, और ये 99 की बात है, 69 से आप समझ लीजिए, 69 से भी अगर मैं पैदा हुई, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी अगर आप वो समझ सकते हैं
1: मतलब
0: कि
1: 30 साल,
0: हाँ 30 ईयर्स हो गए,
1: ये
0: हाँ
1: तो
0: यही एक मेरे
1: अनोखी
0: लिए
1: कहानी
0: अनोखी
1: है।
0: है, और इसको ही मैं बोलती हूँ कि मेरा नाम कहीं गिनीज बुक में भी जाना चाहिए, मेरा नाम कहीं और भी जाना चाहिए, और भी कहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस उम्र में मैंने शुरू किया उस उम्र में तो लोग खत्म कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: उस उम्र में लोग नाचना गाना खत्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और अपने घर गृहस्थी संभालते हैं, लेकिन हमने सब घर गृहस्थी पहले किया, सब चीजें पहले संभाली, उसके बाद जब मौका मिला फिर उनको मैंने बुलाया और उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बोला हाँ मेरी सिस्टर है वो अपना संस्था चलाती है ऐसे ऐसे, और वहां पर एक गुरु जी है वो सिखाते हैं, तो बहुत बड़े गुरु जी थे, बहुत नामी, वो रावत सर गुरु जी थे, हरिश्चंद्र रावत जी, बिरजू महाराज जी से भी सीखा हुआ था उन्होंने, बड़े बड़े गुरुओं से सीखा हुआ था, दुर्गा लाल जी से सीखा हुआ था, प्रसार भारती, दूरदर्शन, सबके बहुत ग्रेडेड आर्टिस्ट आज भी है उनका सब
1: जी
0: जगह,
1: जी
0: तो उन्होंने बोला कि वो गुरुजी वहां पर संस्था चलाते हैं और सिखाते हैं सबको। मैंने बोला कि प्लीज मुझे एक बार आप मिलवा दीजिए। मैं फिर उनके पास में गई और फिर गुरुजी को जब मैंने अपनी सारी ऐसे बताया कि गुरुजी मन में मेरी ऐसी लालसा है, इच्छा है, तो उस उम्र में कोई भी गुरु अपनाने में बहुत कतराते हैं, तो
1: हाँ
0: एकदम डरते भी है
1: कि
0: कतराते भी, और सोचते हैं कि इस उम्र में मैं क्या सिखाऊं और
1: हाँ
0: कैसे सीखेगी ये,
1: जी
0: ठीक है, और क्या कर लेंगी, बिल्कुल सोचा भी नहीं था गुरुजी ने। अगर मेरी शिक्षा में किसी ने मुझे सहयोग किया तो मेरे हस्बैंड, मेरे पति, बस मुझे करना ही है, और अब मेरे पास समय भी है और मेरे पास में जगह भी है और पैसा भी है, आप प्लीज कराइए। तो गुरुजी ने बोला कि आप यहाँ पर आके सीखिए, तो मालूम नहीं मैं सबके साथ तो नहीं सीख पाऊंगी, और वहां पर अगर हम जाके सीखेंगे उनके क्लास में तो मेरे पास में मेरे लिए अटेंशन भी नहीं देंगे और शायद मेरा उतना कॉन्फिडेंस भी ना हो सीखने का। तो
1: जी
0: मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं यहीं पर आपके लिए बच्चे इकट्ठा कर दूं अपने जहाँ पर मैं सीखना चाहती हूँ, तो आप यहीं पर सिखा देंगे आके। तो गुरुजी ने बोला कि हाँ कम से कम आप 30 बच्चे इकट्ठे करो।
1: 30
0: हाँ उन्होंने बोला 30 बच्चे, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 99 में शुरू किया, अब ये बात 2000 पहुंच गई,
1: जी
0: ठीक है 26 साल पहले से, 2000 की बात है, 2000 सरस्वती पूजा, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी इस बार सरस्वती पूजा आप मेरे संस्था में करिए, मैंने 30 बच्चे इकट्ठे कर लिए। गुरुजी पूरा सब कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेकर आए,
1: जी
0: सजाया अच्छा से, सारे बच्चों को बुलाया, बच्चों को घुंघरू उंगरू दी गई और मुझे भी घुंघरू दे के घुंघरू पूजा करके हम लोगों ने कार्यक्रम पहला
1: शुरू
0: दिन
1: किया।
0: का शुरुआत किया, पूरा बड़ा धूमधाम से, और मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्या मैं बताऊं कि गुरुजी आ गए, बच्चे आ गए, क्लास लग गई, सब चीजें हो गई, मैं जो घुंघरू सुबह बांधती थी तो शाम तक घुंघरू में उतारती ही नहीं थी, और आने के बाद में उसके बाद में फिर गुरुजी की सेवा में मैं लग जाती।

0: मेरी प्रैक्टिस कम होती थी, मैं गुरुजी की सेवा में लग गई। मैं फिर भूल गई कि मुझे नाचना भी है। फिर गुरुजी का आना जाना, उनका सेवा, फिर बच्चे आने लग गए, फिर बच्चों के पेरेंट्स, फिर सारे बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, पेरेंट्स इंटरेस्टेड हो गए, फिर वो भूल गए कि ये तो अनु जो है ये तो खुद सीखने के लिए मुझे सीखना था ना।
1: जी,
0: एक साल के बाद में मैंने एक बड़ा कार्यक्रम, मैंने बोला गुरुजी एक बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं, तो गुरुजी ने बोला हाँ करो। सब लोग नाचे, मैं भी गुरुजी के साथ में दो प्रस्तुति मैंने उस समय गुरुजी के ने सिखाया और मैंने उसको नाचा, एक ठुमरी और एक विष्णु वंदना।
1: कैसा लगा आपको?
0: तो मतलब हम खूब सुंदर ड्रेस पहने, खूब सुंदर, मतलब कि एकदम सच पूछे तो बिल्कुल परियों की दुनिया में मैं चले गई। बहुत आनंद आया, लेकिन बाद में जब मैंने फोटो देखा, वीडियो देखा, तो मुझे बहुत निराशा हुई कि मैं तो बहुत ही खराब नाच रही हूँ। मैं बहुत रोई, सब लोगों ने भी बोला, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं तो सच में मैं तो सीखी नहीं उतना। एक साल तो निकल गया लेकिन मुझे तो उतना सीखने का मौका नहीं मिला
1: जी,
0: मैं तो यही सब करते रही। उसके बाद मैंने गुरुजी से इस बारे में बात किया कि गुरुजी मेरा फोकस डाइवर्ट हो रहा है, तो मेरे अपने, तो गुरुजी बोले ठीक है तुम अलग से भी आओ मेरे पास में। फिर हम गुरुजी के पास में बहुत दूर नोएडा से वसंत विहार, एक घंटा मैं अपने ड्राइवर को लेके जाके सुबह से शाम तक बैठती थी, लेकिन वहां पर फिर से वही हाल। बैठते तो थे घुंघरू बांध के, लेकिन मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट भी मेरी क्लास नहीं हो पाती थी, क्योंकि सब लोग इतना ताबड़तोड़ नाचते थे। फिर हम वहां पर अपने आप को बहुत ही असहाय और एकदम से एकदम नौसिखिया और ऐसे महसूस करते थे कि कोई उम्र को भी लेके इसको। फिर हम वहां पर रोना गाना, मेरे सर्कल बहुत अच्छे थे, मेरे हस्बैंड का सर्कल और उनके जो दोस्त लोग थे, तो सबको जब पता चला कि मैंने नाच शुरू किया है, ये सब किया है, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है हम आपको ना मौका देंगे, आप अपने गुरुजी के साथ में टीम के साथ में प्रोग्राम करिए, प्रोग्राम लीजिए। तो बड़े बड़े प्रोग्राम मुझे मिलने लग गए, मतलब मुझे तो मिलने लग गए, लेकिन प्रोग्राम तो नाच तो लोग और रहे हैं ना, नाम प्रोग्राम में नाम मेरा है, लेकिन मुझे तो नाच उतना आता नहीं है, तो मैं कैसे नाचूंगी। वो तो नाच तो और लोग रहे हैं, जो मेरे ग्रुप के लोग हैं, जो सीख रहे हैं, जो गुरुजी से सीख रहे हैं, या फिर जो सीनियर डांसर हैं, जो अच्छे डांसर हैं, और मेरा उसमें कहीं पे थोड़ा से 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की एंट्री कहीं हो जाती थी, मैं तैयार वर होके सज के सुंदर से फोटो खिंचा लेते थे और थोड़ा से ऐसे करके। फिर मुझे लगा कि ये भी अब गड़बड़ हो रहा है, तब कुछ डांसर्स और मिले, डांसर्स लोगों ने बोला कि दीदी आप इधर उधर इतना भटक रहे हैं और इतना समय भी लगा रहे हैं, आपके पास में प्रोग्राम्स भी है सब है, तो आप पंडित राजेंद्र गंगानी जी के पास में कथक केंद्र में क्यों नहीं जाते हैं। अब इसी में मैं बताऊंगी कि वही कथक केंद्र है जहां पर मैं 10 साल पहले गई थी
1: जी,
0: उस जगह पे जब मेरी शादी हुई थी एकदम, और तब हम वहां पर गए थे एक बार। उस समय एक उड़िया डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं आता है, आपने कुछ नहीं सीखा है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम लोग ऐसे लोगों को नहीं लेते हैं। उस समय मेरी उम्र वही 18-19, मेरा बेटा नहीं हुआ था, 19 साल से पहले की बात है, तो 18 साल की उम्र थी। अगर उस समय हम सीखते तो शायद मुझे बहुत कामयाबी होती है, अच्छा, लेकिन भगवान को जो मंजूर है और जो किस्मत में है, जो समय से पहले जैसे कुछ नहीं मिलता है, तो वो समय से होना था। तो बाद में फिर उसी जगह पे मैं पहुंची 2003 में,
1: तो उन्होंने सिखाया।
0: हाँ, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं अनु, फिर पंडित राजेंद्र गंगानी जी जब मिले, वो गुरुजी तो इतना प्यार से मिले और इतना अच्छा से उन्होंने देखा, सुना, समझा, उन्होंने बोला नहीं तुम आओ हम लोग सिखाएंगे। ओ, इतना सबको उन्होंने मेरी ड्यूटी पर लगा दिया, खुद भी गुरुजी सिखाते थे, मैं दिन भर बैठती थी केंद्र में, जबकि मेरा वहां पर एज के हिसाब से मैं वहां पर क्वालिफाई नहीं कर सकती थी, इसीलिए इनरोल नहीं हो पाई मैं। लेकिन मैं वहां पर क्या था कि उस समय बड़ी आजादी थी कि कथक केंद्र में बैठ के बाहर के लोग भी आराम से दिन भर बैठ के सीख सकते थे और बैठ सकते थे, देख सकते थे, समझ सकते थे। फिर तो मैंने तो वहां पर तो अड्डा ही जमा लिया, मैं सुबह ही उठ के चले जाती थी, शाम तक, रात तक। उस समय कथक केंद्र में जो NHD बिल्डिंग है अभी, उसी के अंदर ही हम कथक केंद्र हुआ करता था। उस समय हमारे गुरुजी कथक केंद्र में वहीं पर।
1: अब वो बात आने लगी धीरे धीरे, अब वो पकड़ और हस्त मुद्राएं और वो सब चीजें
0: समझ में आने लगी। फिर गुरुजी ने अपने बहुत ही सीनियर डांसर्स लोग को भी सबको बोला कि तुम सब लोग अनु को गाइड करो और तुम बताओ और समझाओ और सिखाओ। फिर उन लोग भी सब बताने लग गए, कुछ घर में भी आके सिखाने लग गए, फिर गुरुजी की क्लास में भी, जहाँ गुरुजी बोलते जो बोलते जहाँ। उसके बाद में फिर मैंने प्रोग्राम लेना भी शुरू कर दिया, और फिर मैं टेढ़ा मेढ़ा भी जो भी नाचती थी, मैंने सोचा कोई बात नहीं। मैंने सच पूछे तो स्टेज पे ज्यादा सीखा, मैंने स्टेज में जो भी टेढ़ा मेढ़ा नाचे, फिर हम देखे कि इतना गंदा नाच रही हूँ इसको ठीक करना है, फिर मैंने देखा इसमें भी ठीक करना। फोटो, मैंने इतना फोटो सेशन कराया, फोटो देख देख के मैंने अपने आप डांस को ठीक किया कि फोटो में हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, फोटो में हाथ वैसे नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेशन अपने फोटो में देख के।
1: इसका मतलब है कि आप मूल्यांकन करती थी।
0: हाँ,
1: बैठ करके, ऐसा नहीं कि हो गया तो फोटो में खो गए,
0: नहीं,
1: वाहवाही में पड़ गए,
0: बिल्कुल नहीं। मुझे तो लोगों ने बोला कि अनुजी आपका तो भाव इतना अच्छा है, आप तो मंच पे खड़े हो जाती हैं तो सबकी छुट्टी कर देती हैं, इतना चने के झाड़ पे चढ़ाया कि मैं तो बोलती थी कि ठीक है इतना। एक मुझे थोड़ा सा मालूम था कि चलो ठीक है, एक जो स्टेज

0: पर्सनालिटी चाहिए वो भगवान ने दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है हाथ पांव टेढ़े मेढ़े होने से कुछ स्टेज में डांस अच्छा नहीं लगता है।
1: इसका मतलब जब आपको लोग चढ़ा रहे थे
0: हाँ हाँ
1: कि भाई आप तो क्वीन
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: लेकिन जब आप अपनी फोटो खुद ही देख रही थी
0: बिल्कुल
1: तो कैसा लग रहा था कि यार
0: नहीं,
1: कोई कह
0: मैंने तो
1: कुछ और
0: देखा
1: रहा है और
0: अभी
1: हम कुछ लग
0: बिल्कुल
1: और रहे हैं। जैसे ये अंतरात्मा की जो आवाज आ रही थी आपकी,
0: हाँ
1: इसको
0: जी
1: यही कहें
0: हाँ बिल्कुल
1: कि जो कुछ भी हो रहा था शोर चारों तरफ था,
0: जी
1: लेकिन एक आवाज जो आपको सुनाई पड़ रही थी कि ये ठीक तो नहीं है,
0: बिल्कुल
1: तो आप उसको मतलब पकड़ ली थी। बहुत लोग पकड़ नहीं पाते,
0: नहीं नहीं
1: वो शोर
0: मैंने
1: में खो
0: सही में
1: जाते
0: वही
1: हैं।
0: मैंने मेरे पास में वही सिक्स सेंस जो था वो काम मेरा कर रहा था। मुझे खाली एक चीज़ का थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस था कि चलो मेरे हाथ में थोड़ा सा पैसा है और भगवान के एक थोड़ा सा हमारे पास में सपोर्ट है लोगों का, और मेरे पति भी जो बोल रहे हैं कि ठीक है तुम करो। तो मैं साथ साथ गाना भी सीख रही थी, इसके साथ में तबला वाले को मैं अलग से मैं बुलाती थी। मैं सोचती थी चलो ये डांसर जो है हो सकता है वो कॉम्पिटिशन में ना बताए, तबला वाले से पूछते हैं।
1: मतलब ये
0: हाँ
1: था कि जानने की जो जिज्ञासा थी वो कभी
0: बिल्कुल
1: बुझी नहीं
0: नहीं
1: थी
0: नहीं बुझी नहीं।
1: कि
0: और
1: अच्छा इनसे नहीं हो रहा है तो कौन से
0: हाँ
1: होगा।
0: जैसे होता है ना कि एक को पकड़ के बैठ गए, मैंने बोला नहीं ऐसे तो फिर मेरा तो समय ऐसे बहुत लेट हो चुके हैं, हम तो बहुत पीछे हो जाएंगे। फिर मैंने एक सारंगी वाले को पकड़ लिया, वो सारंगी वाला ना बचपन से उसने कथक वालों के साथ में बहुत बजाया था। मैंने उसको बोला कि भैया तुम बता सकते हो मुझे क्या कमी हो रही है। उसके बाद में तबला के जो बोल रटाने लग गए गुरु जी लोग कि तबला के बोल रटो, तबला के बोल याद करो, ताली खाली याद करो, पढ़ंत याद करो। पढ़ंत याद ही नहीं कर पाते थे, इतने
1: जी
0: मुश्किल मुश्किल तकड़े दिगिट
1: नहीं
0: ऐसे निकलते ही नहीं थे, ये लिख के भी देते थे। अच्छा फिर उसके बाद कुछ डांसर्स आने लग गए तो मैंने बोला भैया मुझे ना लिख के दे सकते हैं आप सारा कुछ,
1: जी
0: तो लिख के दे दिया, कॉपी बन गई 1 महीने की, काफी सारी चीजें मैंने याद कर ली। खैर ऐसे करते करते मैंने प्रोग्राम्स तो बहुत कर लिए।
1: मतलब जब आप रण महोत्सव में काम कर रही थी,
0: हाँ
1: हिंदी साहित्य
0: जी
1: जो
0: जी
1: सम्मेलन
0: जी
1: हुआ,
0: जी
1: ताज महोत्सव हुआ, ये सारी
0: ताज
1: चीज,
0: महोत्सव में मैंने इतना गंदा नाचा
1: आप
0: कि
1: इतनी ईमानदारी से ये बात कह
0: मैं
1: रही
0: तो मैं
1: हैं।
0: बता रही हूँ इतना गंदे तरीके से मेरी एंट्री हुई उस समय, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे उस समय जो पहली बार मैं ताज महोत्सव में मैं एंट्री ली। और मेरे साथ के जो ग्रुप के जितने डांसर थे वो सारे ताबड़तोड़ डांसर थे, सारे एकदम कथक केंद्र के मजे हुए, लेकिन जब मेरी एंट्री आती थी मेरे हाथ पांव, मुझे अभी भी मेरे ना कुछ वीडियो है मेरी उंगलियां कपकपा रही है, एकदम ऐसे कांपते थी मैं अंदर जाते हुए।
1: आपको डर नहीं लग रहा है ये माइक पर
0: नहीं
1: ये
0: मैं तो
1: बोलते
0: माइक
1: हुए?
0: मैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो
1: ईमानदारी
0: बोलती हूँ कि नहीं ईमानदारी से बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी मेरे उम्र की बहुत सारी महिलाएं आती हैं लेकिन उनको क्या लगता है थोड़ा से सीखते लगता है कि मुझे बहुत अच्छा आता है और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। उन्होंने थोड़ा सा रील बना लिया, उनके कुछ लाइक आ गए, वो बोल रहे हैं हम डांसर बन गए। उनको मैं बोल रही हूँ कि आप पाँव ठीक करिए तो वो मुझसे नाराज हो जा रही हैं, उनको मैं बोल रही हूँ हाथ ठीक करिए तो मुझसे नाराज हो जा रहे हैं, उनके बच्चों को डांट रही हूँ तो पेरेंट्स नाराज हो जा रहे हैं, क्योंकि हम उनको ये बता रहे कि भाई मुझे किसी ने ये सब नहीं टोका तो मेरा डांस कितने दिन तक खराब रहा, अगर मुझे उन्हीं दिनों सब टोकते और बताते तो मेरा डांस उन्हीं दिनों बहुत ठीक हो जाता।
1: इसका मतलब है कि अगर कोई आलोचना भी कर रहा है, टोक रहा है,
0: वो अच्छा है,
1: अच्छा है,
0: बहुत अच्छा है,
1: मतलब ध्यान दीजिए, बुरा मत
0: बिल्कुल
1: मानिए।
0: बिल्कुल। बाद में क्या हुआ कि ऐसे करते करते जब 2005 के बाद राजगीर महोत्सव में मैं पहुंची, बोधगया महोत्सव तक तो मैं अच्छा नहीं नाच रही थी, इतना मुझे पक्का मालूम है कि 2003 4 फिर 5 के बाद जब मुझे खुद अपना वीडियो अच्छा लगने लग गया।
1: आपको समझ थी कि
0: हाँ
1: अच्छा क्या है, बुरा क्या है?
0: देखिए अच्छा और बुरा ये है ना कि एक तो है कि मैं बहुत एफर्ट्स लेके नाच रही हूँ, एक है कि चलो ठीक है थोड़ा से हम गलत भी नाच रहे हैं लेकिन उसमें एक पूरा आपका बॉडी जो है बहुत अच्छा से ट्विस्ट हो रहा है, आपका एक्सप्रेशन बहुत सुंदर है, आपके हाथ बहुत सुंदर है, आपके मेकअप अच्छा से किया हुआ है, आपने कपड़े ठीक से पहने। मुझे तो ना मेकअप करना आता था ना मुझे ठीक से कॉस्ट्यूम का पता था, लेकिन मैं कुछ भी पहन लेती थी सब बोलते थे नहीं नहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं।
1: अंदर वाली जो एक ईमानदारी थी या रोशनी थी वो कहीं ना कहीं काम कर रही थी कि एक दिन होगा, एक दिन वो भी आएगा जब हस्त मुद्राएं भी एकदम सटीक होंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारे ना कुछ गुरु भाई लोग थे जो
1: जी
0: कि गोल्ड मेडलिस्ट बहुत अच्छे सीखे हुए, उनको मैं बैठ बैठ के मैं बोलती थी भाई ये जरा देखना ना मेरा इसमें फोटो देखो ना ये वीडियो देखो ना इसे बताओ, उन लोग बताते दीदी सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पर आपको ऐसे करना है। तो मैंने क्या किया मैंने फोटोग्राफी पे बड़े बड़े फोटोग्राफर उनसे मैंने, तो फोटोग्राफर भी ना कैमरा लेके ना बड़े दुखी हो जाते थे, बोलते थे अनु जी एक्सप्रेशन तो आ नहीं रहा है। अच्छा वो फोटोग्राफर ऐसे थे जिनको लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो अगर मैं गई तो मुझे ले तो लिया फोटोग्राफी के लिए,
1: जी
0: लेकिन वो बेचारे क्लिक करने में उनको असुविधा हो रही है, वो बोल रहे हैं आपका एक्सप्रेशन तो आ नहीं रहा है।
1: मतलब
0: हाँ
1: कमाल की बात है कि आपने खुद से बहुत
0: इसीलिए मैं बोलती हूँ
1: सीखा।
0: कि देखिए जब आजकल लोग बोलते हैं ना कोचिंग, कोचिंग में कोई क्या पढ़ाएगा जब तक आपको खुद नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है।

0: है कि नहीं?
1: सिक्स सेंस आपको बता रहा है
0: हाँ
1: कि समथिंग शुड बी
0: यस
1: चेंज्ड।
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: फोटोज बता रही
0: हाँ
1: हैं, कुछ लोग थे लेकिन दिशा नहीं थी कि एकदम सटीक यही है।
0: बिल्कुल।
1: आप चलती जा रही थी।
0: बस मैं चलते जा रही थी, बीच में कई उतार चढ़ाव है, कई बार ऐसी चीजें हुई, परिस्थिति ऐसी हुई, पारिवारिक या कुछ आर्थिक भी हुआ बीच बीच में, बहुत सारी चीजें हुई, फिर ब्रेक लगा, फिर आगे बढ़े, फिर ब्रेक लगा, फिर आगे बढ़े, फिर ऐसे करते करते 2010 में मुझे कॉमनवेल्थ में 2 साल के लिए काम करने का मौका मिला। और
1: दुखी हो कि छोड़ी नहीं।
0: नहीं छोड़े नहीं, क्योंकि इसमें तो वो सेटिस्फेक्शन तो मिला ही नहीं था ना अभी तक जो बचपन से चाहती। लोग तो ये सुंदर सुंदर इसीलिए बोल रहे थे कि वो सब कुछ देख के अच्छा लग रहा था। अच्छा, प्रगति मैदान में वहां पर जनरल मैनेजर वगैरह थे, उन्होंने जब देखा और जब मेरा डांस प्रोग्राम हुआ तो पूरा हॉल बुक मतलब खचाखच भरा हुआ, तो वहां पर उन्होंने जनरल मैनेजर ने बुलाया और बोले कि यहाँ पर तो प्रगति मैदान में क्लासिकल डांस में तो लोग हॉल में 25-50 लोग भी नहीं बैठा पाते हैं, तो आप इतने लोगों को कैसे भर लिया आपने, इतना हॉल आपका बुक कैसे हो जाता है, कैसे फुल हो जाता है? तो मैंने यही कहा कि हाँ, मैंने फिर थोड़ा दिमाग लगा के ना कि स्लो नृत्य नहीं दिखाना है, मैंने सोचा कि हम एकल नहीं करेंगे, क्योंकि एकल में करेंगे तो अगर मैं गलतियां करूंगी या मैं खराब नाचूंगी या कुछ ऐसे करूंगी तो 5 मिनट पब्लिक बोर हो जाएंगी और फिर मुझे नहीं देखेंगे, तो मैं एकल नृत्य नहीं करूंगी, मैं समूह नृत्य करूंगी और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा झलकी दिखा दिखा के मैं चले जाऊंगी।
1: मतलब
0: हाँ,
1: आपको अपनी कमजोरी
0: का
1: और
0: मालूम था,
1: मजबूती
0: हाँ दोनों का एहसास था।
1: दोनों का
0: हाँ, तो
1: एहसास
0: मुझे
1: था।
0: ये दिखा कि मैं थोड़े से आऊंगी और थोड़ा से सुंदर से 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट नाचे, निकल गए, ग्रुप आ गए, उनका
1: आपको अपनी
0: जताबा
1: ईमानदारी से डर नहीं लगता कि लोग फिर मंच नहीं देंगे?
0: नहीं, वो बहुत लोगों ने ऐसे ब्लैक लिस्ट किया, तो मैंने बोला कि देखिए ब्लैक लिस्ट तो जो भी कर रहे हैं तो वो लोग कभी तो एक सबकी सीमा है ना,
1: जी
0: तो इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कितने सारे मंच है
1: क्या
0: ना। हाँ, कुछ लोग तो रिटायर हो गए, कुछ लोग इस दुनिया से भी चले गए, रिटायर हो गए तो मेरा मेरी बारी आ गई, नए लोग आए तो उन्होंने बोला कि मौका दिया फिर
1: मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लग रही है आपको? ये जो धैर्य है ना।
0: धैर्य मैंने हमेशा रखा, मैंने ये बोला कि कोई बात नहीं, मुझे कितने सारे प्रोग्राम, जैसे संकट मोचन ही मैं बनाती हूँ, संकट मोचन में
1: मैंने
0: दस
1: देखा है।
0: साल तक मैंने अर्जी भेजी, 10 साल लगातार, उसके बाद मुझे 2000 अभी 4 साल पहले मुझे उसमें मतलब,
1: पंडित
0: हाँ
1: विश्वंभर मिश्र जी
0: हाँ
1: हैं।
0: जी, तो 2 बार वहां पर मुझे परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने बुलाया, एक बार तो मैं नहीं जा सकी थी और एक बार मैंने वहां प्रस्तुति दी, उसके बाद वो गंगा महोत्सव जितने महोत्सव है जित,
1: अब आपके हस्बैंड और
0: हाँ
1: आपके घर वाले जब आपको देखते हैं, उन उतार चढ़ावों से तो घर वालों ने देखा है, आपके बच्चे ने देखा है।
0: हाँ सबने देखा, सब लोग अब यही बोलते हैं कि आप बहुत ही स्वार्थी हैं, आप एकदम फोकस है, सेल्फ सेंटर्ड है, आपने अपने नृत्य के सामने किसी को नहीं देखा, आपने कुछ नहीं सोचा, आपने एक पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन हाँ ये बात सही है, देखिए जब मैं घर में रहती हूँ जो मुझे मेरी जरूरत होती है यहाँ पर वो मैं कर देती हूँ।
1: आपके जैसे व्यक्तित्व से मैं बहुत कम मिली हूँ जो इतना साफ गोई है,
0: ये
1: जो
0: बात
1: देखा वो बोला और जो करना है वो करना है, चाहे जिसको जो समझना है वो समझता रहे।
0: मुझे बहुत साल पहले, जब मैं बता रही हूँ जब मेरे खराब दिन थे, जब मेरा बेटा हुआ था, तो मुझे नौकरी की जो जरूरत पड़ती थी तो अलग अलग जगह पे जाके इंटरव्यू दे देते थे, एक बार मैनेजर के लिए एक पोस्ट निकला था तो मैं गई वहां पर इंटरव्यू देने, तो वहां पर उन्होंने पूछा था कि आपकी एक कमजोरी और एक आपकी जो
1: जो
0: स्ट्रेंथ वो
1: हाँ प्लस
0: बता दीजिए,
1: पॉइंट
0: तो
1: है।
0: उस समय तो मुझे स्ट्रेंथ और कमजोरी के बारे में तो मालूम ही नहीं था क्या सवाल पूछ रहे हैं, बोला ये कैसा सवाल है, मैं लो कि मैं अपनी कमजोरी मैं खुद क्यों बताऊं, और मुझे क्या पता कि मेरी कमजोरी क्या है और स्ट्रेंथ मैं क्यों बताऊं, ये तो दूसरा देखेंगे ना, ये दोनों चीजें तो कोई और देख के बताएगा ना, उस समय तो मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, मेरी तो उम्र सिर्फ 21-22 साल की थी, 23 साल की, तो 23 साल की उम्र में मुझे तो इसका तो मैं आकलन कैसे करूं, लेकिन फिर भी मैंने एकदम तपाक से मैंने बोला था कि मुझे जहां तक लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है तेज, और मैं मुंह पे पटाक से जवाब दे देती हूँ, जो भी मन में होता है वो मैं बोल देती हूँ, और दूसरे मेरे मुझे ये लगता है कि जिस चीज को मैं चाहती हूँ कि करना है उसको मैं करके ही छोड़ती हूँ, कि
1: ये
0: मैं
1: तो
0: ठान
1: आपने
0: लेती हूँ।
1: साबित कर दिया है।
0: हाँ
1: अच्छा, अब घर वाले,
0: जी,
1: जैसे आपका बेटा अब बड़ा हो गया
0: हाँ
1: होगा,
0: वो दुबई में सेटल्ड है और
1: दुबई,
0: बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा
1: घर के
0: कर रहा है।
1: बाकी लोग
0: हाँ,
1: जो
0: मेरे
1: आपकी
0: पति जो
1: बहनें
0: हैं
1: हैं,
0: वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस में हैं,
1: तो
0: कंपनी
1: जब
0: है,
1: आप
0: अच्छा।
1: परफॉर्म करती हैं और अब हस्त मुद्राएं भी भाव भी बिल्कुल सटीक हैं जैसे होने चाहिए, लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं और आपके
0: बिल्कुल
1: साथ बह जा रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: अब उनको कैसा लगता है?
0: नहीं वो तो जब लोगों से सुनते हैं तो फिर मेरे पति तो सिर्फ थोड़ा सा सर हिला देते हैं ऐसे, हाँ, नहीं कर रही हैं कर रही हैं, उनको लगता है कि लोग भी बोल रहे हैं तो मैं मन, क्योंकि वो देखने कभी नहीं आते मेरा प्रोग्राम, कभी कुछ उनकी ज़रूरत पड़े तब वो करते हैं, और जब मेरा बेटा है, मेरा बेटा ज़रूर बोलता है कि मम्मी आपको जो अच्छा लग रहा है, जितना अच्छा लग रहा है आप

0: ना करो, ठीक है, आप औरों के साथ में कम्पीट नहीं कर पाएंगे और कंपटीशन मत करो बिल्कुल भी। आप जितना कर पा रहे हैं, जो अच्छा कर पा रहे हैं, आप उतने ही करते रहो। तो मुझे भी यही लगा कि हाँ, कंपटीशन नहीं करना। बहुत लोगों ने बोला कि जैसे हमारे अच्छे अच्छे डांसर हैं, जो बड़े बड़े डांसर हैं, जो हमारे उम्र के आसपास की हैं, जो हमसे थोड़े छोटी भी हैं, बहुत अच्छा नाच रही हैं, बहुत ही अच्छा नाच रही हैं वहाँ पर, तो उनके साथ में मैं कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहती हूँ। बचपन से नाच रही हैं, ठीक है, बचपन से नाच रही है, तो बचपन से नाचना में जो एक एनर्जी आपके बॉडी में जो फ्लो में जो आ जाता है,
1: वो मैंने आपके वीडियोस देखे हैं और आप जो ईमानदारी से ये बात कह रही हैं, बहुत कम लोगों में ये बात है, शायद तभी ईश्वर आपके साथ हैं।
0: तो ये मैं मानती हूँ। तो मैंने ये बोला कि कोई बात नहीं है, कि जैसे एक होता है ना, कि जैसे किशोर कुमार तो बहुत अच्छे सिंगर थे, लेकिन वो तो क्लासिकल सिंगर नहीं है थे ना। तो क्लासिकल सिंगर वालों ने तो उनको जीवन भर बोला है कि ये तो क्लासिकल नहीं सिखाया भाई। तो नहीं सिखाया तो क्या हुआ, तो उन्होंने गाया तो खूब है, पूरे जीवन भर गाया। श्रीदेवी तो कभी डांसर नहीं थी, हेमा मालिनी एक डांसर थी, लेकिन श्रीदेवी ने तो कभी नहीं सीखा था। माधुरी दीक्षित ने थोड़ा सीखा था, बहुत कम सीखा था, बाय बर्थ डांसर थी।
1: जो लोग आपकी खूबसूरती के कायल रहे हैं
0: जी,
1: मैं आपको साक्षात देख रही हूँ सुधीर श्रोता, वैसी सुंदर प्यारी, कैसे इसको मेंटेन किया हुआ है आपने?
0: ये एक तो थोड़े से खानदानी भी होता है।
1: अच्छा, जीन्स है,
0: जीन्स
1: मदर फादर के,
0: मदर के तरफ से, मदर के तरफ से। हमारी मम्मी, सब लोग नूतन कहते थे, फिल्म की जो हीरोइन थी नूतन, उनके जैसे ही लगती थी। और फादर भी एक ऐसा है, थोड़ा जेनेटिक है। और दूसरा फिर हम लोग वही है कि थोड़ा खान पान को हम लोग अनुशासन और नियम से करते हैं, बाहर का ये सब चीज
1: अवॉइड करते हैं।
0: हाँ, जितना सिंपल और साफ सुथरा खाना खाए। और बाकी फिर वही है कि अंदर से भी विचार भी थोड़ा शुद्ध, मन भी शुद्ध, भावना शुद्ध, थोड़ा पॉजिटिव।
1: अच्छा, कई महिलाएं ना मैंने देखा है झुंझला जाती हैं,
0: जो
1: घर परिवार की जिम्मेदारी, और
0: देखिए
1: 5 साल तक कुछ नहीं हुआ तो शायद अब ढल गया, अब कुछ नहीं, उनको क्या कहेंगे आप?
0: एक तो ये सबसे ज्यादा जो महिलाओं के साथ में ये जो शुरू होता है वो 40 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है, सभी के साथ, हम लोग के साथ में भी होता रहा है और आगे भी। एक तो कुछ आपका बायोलॉजिकल जो चेंज होता है, जो बॉडी में जो आपके चेंजेस होते हैं, उससे वजह से किसी भी महिलाओं को, चाहे वो सक्षम है या वो अपने फील्ड में उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, उनको भी, सभी को ये दौर से गुजरना पड़ता है और वो फेस करते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के वजह से भी बेचारे इरिटेट हो जाते हैं, कुछ पति की वजह से हो जाते हैं, उनसे भी अगर उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता रहा है कि कम से कम कुछ नहीं है, चलो कुछ भी नहीं दे रहे हो तो भी आप बोलो कि ठीक है भाई, चलो तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। अब जैसे मेरे पति हैं, एकदम मुझे इंटरफेयर नहीं करते हैं और ना ही वो खुद चाहते हैं कि इंटरफेयर मैं करूं। मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं और कब आएंगे और कब नहीं आएंगे। ये पहले दिन से हमारा तय था कि ये सब पूछना उछना नहीं है, एकदम नहीं पूछना है कि 12 बजे आप जगे हुए हैं कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं बैठी हूँ, हम लोग के घर में, वो सब नहीं।
1: आपको अनुशासन भी रहा है
0: हाँ,
1: जो इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है।
0: अनुशासन मेरा रहा है, मैं शाम को खाना जैसे 7 बजे 8 बजे खा लेती हूँ, पहले से, बहुत पहले से खाना जल्दी खाना है। सुबह में जैसे कि थोड़ा से उठ के या टहलना है
1: जी,
0: ठीक है ना।
1: आपसे बात करते हुए समय का अंदाज ही नहीं रहा, पता नहीं मन में और कितने प्रश्न, लेकिन अब ये सिलसिला यहीं थामना होगा। और बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे ही खुश रहें, खिलखिलाती रहें, बहुत सारे बच्चों को सिखाएं और हम लोगों ने जो आपसे सीखा है वो हमेशा अपने पास रखें। बहुत शुक्रिया आपका,
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता कथक नृत्यांगना डॉक्टर अनुह सिन्हा से नेहा गुप्ता की बातचीत, प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार से। श्रोताओं, कुछ धुनें केवल कानों तक नहीं पहुंचती, वे दिल की धड़कनों में बस जाती हैं। कुछ संगीतकार केवल गीत नहीं बनाते, वे एक जादू रचते हैं जो पीढ़ियों तक गूंजता रहता है। समय बदलता है।

ये दिल की धड़कनों में बस जाती हैं। कुछ संगीतकार केवल गीत नहीं बनाते, वे एक जादू रचते हैं जो पीढ़ियों तक गूंजता रहता है। समय बदलता है, संगीत की शैली बदलती है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी धुनें कभी पुरानी नहीं पड़ती।

आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही जादूगर से, एक ऐसे संगीतकार जिसने भारतीय फिल्म संगीत को नई उड़ान दी, नई पहचान दी और हर सुर में एक नया प्रयोग किया। वे थे राहुल देव बर्मन, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें प्यार से पंचम दा के नाम से जानती है।

राहुल देव वर्मन का जन्म 27 जून 1939 को तत्कालीन कलकत्ता यानी अब कोलकाता में हुआ। उनके पिता हिंदी सिनेमा के महान संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। उनकी माता मीरा देव बर्मन स्वयं एक प्रतिभाशाली गीतकार और गायिका थीं। अभिनेता अशोक कुमार ने ही स्नेह से उन्हें पंचम कहना शुरू किया और यही नाम आगे चलकर भारतीय संगीत की सबसे बड़ी पहचान बन गया। संगीत उनके केवल ये एक पेशा ही नहीं था बल्कि बचपन से ही जीवन का हिस्सा था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उन्होंने पश्चिमी संगीत की भी गहरी समझ विकसित की। यही कारण था कि उनकी धुनों में भारतीय मिट्टी की खुशबू थी और आधुनिकता की ताजगी भी थी।

संगीतकार के रूप में पंचम दा ने अपने सफर की शुरुआत की 1961 में फिल्म छोटे नवाब से। शुरुआती सफलता भले ही सीमित रही, लेकिन 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल ने हिंदी संगीत की दिशा ही बदल दी। इस फिल्म के बाद हर कोई यही कहने लगा कि हिंदी फिल्म संगीत को एक नया सितारा मिल चुका है। पंचम दा की सबसे बड़ी विशेषता थी नए प्रयोग करने का साहस। उन्होंने बोतलों, गिलासों, कंघी, सांसों की आवाज़, तालियां और रोज़मर्रा की चीज़ों को भी संगीत का हिस्सा बना दिया।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार से, और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार राहुल देव बर्मन पर। पंचमदा केवल एक महान संगीतकार ही नहीं बल्कि एक प्रभावशाली गायक भी थे। उनकी धुनों को किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और अनेक प्रसिद्ध गायकों ने अपनी आवाज़ देकर अमर बना दिया। साल 1980 में उन्होंने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से विवाह किया। दोनों की जोड़ी ने हिंदी फिल्म संगीत को अनेक ऐसे गीत दिए जिन्हें सुनकर आज भी श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं। अब सुनते हैं प्रेम और संवेदना से भरा एक अमर गीत।

70 और 80 का दशक हो, पंचम दा के स्वर्णिम दौर के रूप में जाना जाता है। रोमांस हो, दोस्ती हो, दर्द हो, लोक धुन हो या पाश्चात्य संगीत, हर शैली में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी।

श्रोताओं, आप जिस गाने को सुन रहे थे, फिल्म शोले का ये गाना था। वो गूंजती हुई धुन जिसकी महंगे सिंथेसाइजर से नहीं बल्कि खाली बियर की बोतलों से ये आवत धुनें बनी हुई थी। पंचम दा को जुगाड़ और संगीत का ऐसा संग्रम माना जाता था जो किसी और की कल्पना से परे था। वे केवल सुरों के सम्राट नहीं, वे आवाज़ों के जादूगर थे। वे स्टूडियो में घंटों बैठकर पुरानी बोतलें, चम्मचों, यहाँ तक कि हवा के झोंकों में भी धुनें ढूंढ लिया करते थे। शायद इसलिए उनका संगीत आज भी इतना ताज़ा और जीवित महसूस होता है।

फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का संगीत उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में तैयार किया। दुर्भाग्य से 4 जनवरी 1994 को मुंबई में उनका निधन हो गया। फिल्म की रिलीज के बाद उनका संगीत अपार लोकप्रिय हुआ और इसके लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। करीब 330 से अधिक हिंदी फिल्मों में संगीत देने वाले पंचम दा ने बंगाली, तमिल, तेलुगु और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरा। आज उनके जाने के 3 दशक बाद भी उनकी धुनें नई पीढ़ी के लिए उतना ही ताज़ा है जितनी अपने समय में थी। शायद यही किसी सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो समय के साथ नहीं चलता बल्कि समय उसके साथ चलता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार से। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना हमने लिया है फिल्म गोल से, आवाज है ऋचा शर्मा की।

श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। दिनांक 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर 0532-2970-462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर पुनः सुन लीजिए 0532-2970-462। दूसरा नंबर है 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे येसुदास को, फिल्म दादा में गीत लिखा था कुलवंत जानी ने और संगीत दिया था उषा खन्ना ने। अब आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म परदेश में।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, फिल्म याराना में गीत लिखा था अनजान ने, संगीत दिया था राजेश रोशन ने। अब आइए सुनते हैं फिल्म सोल्जर का ये गाना, आवाज़ें हैं जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
3: गूंजती है हर दिल में एक धुन पुरानी सी।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत

0: मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ. मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Mr. Modi said that during the visit, he will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. यूनियन होम

युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर होगा। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत डॉक्टर उमर हसन से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत। विषय होगा बदलते जलवायु में हृदय का कैसे रखें ध्यान। साथ ही अजय कुमार यादव और साथियों से लोकगीत सुनेंगे। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर चितरंजन सिंह की वार्ता होगी डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सात्विक मिश्रा से भजन सुनिएगा। 7:45 पर 8:00 चित्रपट संगीत और 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। तो ये थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए। दिनांक 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532-2970-462 और दूसरा नंबर है 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर पुनः सुन लीजिए 0532-2970-462 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए प्रियंका कृष्ण का सैक्सोफोन वादन, राग है पट्टदीप, तबले पर संगत की है अरुणेश कुमार पांडे ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रियंका कृष्ण का सैक्सोफोन वादन, राग था पटदीप, तबले पर संगत की थी अरुणेश कुमार पांडे ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार जी।
1: मेरा अंत्येष्टि है।
0: जी नीतीश जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: चिंतना में जो जीता हूँ सिकंदर।
0: हाँ जी, गाने के बोल बताइए।
1: जिस दिन निकलेंगे झूम कर मैदान में।
0: यहाँ के हम सिकंदर।
1: जी मैम, बहुत
0: अच्छा
1: अचानक है।
0: अच्छा अच्छा चलिए, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में है, इसे लिखा है मजरूह ने और संगीत है जतिन ललित का, और
1: जी मैम,
0: नीतीश जी की पसंद का गाना है जो जीता वही सिकंदर। तो चलिए आज आपको सुनवाने जा रहे हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम अपना नाम बता दीजिए।
1: पवन निषाद मेरी कला पंडुकड़ा से।
0: जी पवन जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: राजा हिंदुस्तानी का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देख कर हूँ।
0: तो पवन जी, आपको किसी के नाम लेने हैं?
1: हाँ, दोस्तों के नाम लेना है।
0: जी बताइए।
1: पिंटू आ भोंदू,

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: आदरणीय मधु दीदी जी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार
1: दीदी। आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: जी राजू जी, हमारे हैं तो पुराने श्रोता, लेकिन फोन इनका काफी दिनों के बाद आया है।
1: जी जी जी
0: जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं राजू जी।
1: जी दीदी, फिल्म का नाम है उमराव जान, जो अपने समय की हिट फिल्म है।
0: हाँ हाँ,
1: और आशा जी की मधुर आवाज में गीत है इन आंखों की मस्ती के।
0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत चुना है, आशा जी की आवाज है, राजू जी की पसंद है।
1: गीतकार है शहरयार और संगीतकार है खयाम।
0: तो आपकी पसंद के इस गाने को हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद परम आदरणीय मधु दीदी, सादर सप्रेम प्यार भरा नमस्कार
0: जी। नमस्कार, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: दीदी। सर्वप्रथम मैं अपने श्रोताओं को परिचय देना चाहता हूँ
0: जी जी
1: कि मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति ईश्वर राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय मधु दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी प्रयागराज से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। आप तुम्हारे इतने नियमित और पुराने श्रोता हैं कि आपकी आवाज़ से ही हमारे जो और श्रोता सुन रहे इस कार्यक्रम को समझ जाते हैं कि भाई आज शारदा प्रसाद प्रजापति जी की फरमाइश आ गई।
1: जी निसंदेह दीदी। दीदी आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है चांदनी
0: जी।
1: और अब वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है, मानसून आने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, पर्वत से काली घटा टकराई, ये गीत सुनना चाहता हूँ आकाशवाणी प्रयागराज से।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। कई कई जगह तो वर्षा होती रहती है और कई जगह वर्षा हो रही है और जहाँ नहीं हो रही वो ये गाना सुन के थोड़ी सी राहत ले लेंगे कि भाई काली घटा तो टकराएगी कभी ना कभी। तो चलिए आपकी इस पसंद को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं चांदनी फिल्म का ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज केंद्र और मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी।
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज से, ट्रक ड्राइवर। कैसी मैम आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ विकास जी। आज आप कौन सा गीत लेकर आए हैं?
1: फिल्म का नाम है आप पहले ऐसे नहीं, मतलब ऐसी फिल्म का नाम है।
0: चलिए हम इसको करेक्ट कर देते हैं, आप तो ऐसे ना थे, ये फिल्म का नाम है।
1: और तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: इस फिल्म का ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था
1: जी। ये गाना बहुत अच्छा भी लगता है सुनने में।
0: जी जी। तो आपको मनहर की आवाज में सुन रहा है या मोहम्मद रफी की?
1: मोहम्मद रफी साहब की।
0: अच्छा अच्छा, तो चलिए आपकी इस पसंद को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। एक बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों

0: पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14

0: बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said, Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. During the visit, Prime Minister Modi will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Meanwhile, Seychelles has backed India's bid for a permanent seat on the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Ford said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister

0: Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Mr. Rubio said the Trump administration viewed India as one of the United States' closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power.
1: Prime Minister Modi and what he's done. I mean, he leads a country that's making incredible gains economically and is really coming into its own as sort of a global power, a country that's increasingly accounted for on decisions being made on the global stage.
0: Punjab police has busted another cross-border illegal arms smuggling network in Amritsar and apprehended four accused today. Police have recovered 10 sophisticated pistols along with live cartridges from their possession. This is the second major arms recovery in Amritsar within the last few days. According to police, in both cases, the arrested accused were acting on the directions of a foreign-based smuggler and were receiving illegal weapon consignments through cross-border routes for onward supply to criminal elements. Further investigation is underway. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah inaugurates cooperative-based taxi service, Bharat Taxi, in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar. Mr. Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Vice President C.P. Radhakrishnan says the strength of any economy across the world lies in the contribution of its MSME sector. Addressing an event on MSME Day 2026 in New Delhi, he said, in India, the MSME sector represents the courage and entrepreneurial spirit of first-generation entrepreneurs. The Vice President noted that the sector contributes nearly 50% of the country's total exports while consistently maintaining high-quality standards. U.S. Vice President J.D. Vance has warned Iran that any future aggression would be met with force. He said this hours after the United States carried out military strikes on Iranian targets. In a social media post, Mr. Vance said Iran had signed a ceasefire agreement and the United States had honored it. He added that any disputes over the agreement should be resolved through dialogue and warned that violence would receive a military response. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Assam and Meghalaya today. The Met Department predicted heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Konkan, Goa, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Mahi and in some parts of the Northeast India. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in their final Group G match. Iran's Ramin Rezaian was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडिया वेव, मीडियम वेव 366.3.
3: ये आकाशवाणी लखनऊ है. इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी. वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 प्रोग्राम में शिरकत की. इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-आला ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज़ाद भारत में हुकूमतों से अपील की थी कि इक्तसादी तरक्की के लिए सबसे नीचे पायदान पर बैठे शख्स के मफादात को जहन में रखकर पॉलिसियाँ बनाई जानी चाहिए.
4: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है. इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श ये संस्कार समाहित हो सके इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया.
3: अयोध्या में श्री राम मंदिर अतिया और चढ़ावा के मामले में मुबैना बेजाबतगियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तमाम आठ मुलजमीन को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम मुलजमीन को 29 जून तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुलजमीन में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सिफारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की तरफ से श्री राम मंदिर में अतियात और चढ़ावे के मुबैना गबन के सिलसिले में FIR दर्ज कराई गई थी। मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद प्रोसिक्यूशन अफसर KC वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर कुल 79,85,000 रुपये मुलजमीन से बरामद हुए हैं। मुलजमीन को 29 जून को इंसदादे बदउनवानी की अदालत में पेश किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने FIR के इंदराज और श्रीराम मंदिर के अतिया केस में 8 मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद कहा कि अकीदे के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट मौसूल होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों के अफ्तताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब के दौरान आवाम से खिताब करते हुए वजीर आला ने देवरिया में तरक्की पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत के नौजवान जो पहले मुलाजमतों के लिए हिजरत करते थे अब अपनी सलाहियतों और तवानाई को अपने इलाके में दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में महफूज माहौल की वजह से सरमायाकारी आ रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक प्राइवेट एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर सर्विस आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में 120 मिलियन से ज़्यादा लोग मुफ्त सेहत की खिदमत हासिल कर रहे हैं।
4: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
3: तिब्बी और सेहत के शोबों में मौजूदा हुकूमत की तरक्की का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत में पंचायत इंतखाबात में ताखीर और प्रधानों का मुद्दतकार बढ़ाने वाले हुक्म पर नाराज़गी जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत को तफसीली हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि पंचायतों का मुद्दतकार 5 बरस के लिए होता है और किसी भी हाल में 5 साल ख़त्म होने से पहले आइंदा इंतखाबात हो जाने चाहिए। यह तबसरा जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की रिट पर समाप्त करते हुए किया। रिट में रियासती हुकूमत के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन अहकामात को चैलेंज किया गया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947 की दफ़ा 12(3)(a) का हवाला देकर इंतखाबात टाल दिए गए और प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम जारी रखने की इजाज़त दी गई। रियासत में शदीद गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून कल रात से मशरिक़ी उत्तर प्रदेश के कई अज़ला में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद 30 जून से 3 से 4 दिनों तक रियासत भर में गरज चमक के साथ बड़े पैमाने पर बारिश मुतवक्के है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई।
5: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। ग्रामीण अंचल की महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम पनघट।

0: पनघट कार्यक्रम सुने बैठी सभी श्रोता बहनी लोगन के जमुना और
1: सरस्वती के राम राम, राम। और बतावा जमुना बहनी, हाँ हाँ। का हाल चाल हवे घरे दुआरे का?
0: ए सरस्वती, जौन तोहरे ठिन होता है वही हमरे ठिन होता है।
1: बात तो तू सही कहत हो, बिल्कुल सही।
0: आप देखा गदेलन

0: जौन बा विद्यालय भी खुले वाला बा, अब मनई दऊ के पानी का इंतजार करत बाटे सरस्वती बेहन डाल डाल के कि कब ऊपर वाले अपन कृपा करें और हम सब धाने का रुपाई जौन बा शुरू कर दे।
1: बिल्कुल सही कहा तू, देखा यही इंतजार में हम सब लोग बैठी है, है ना। तो अब देखा कि जैसे तू स्कूले के बात करत रहो,
0: है
1: ना, धीरे धीरे सब लड़का स्कूल की तरफ, स्कूल खुले के दिन आएगा, है ना, और मतारी सब तैयारी में लगी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तब तैयारी में लगी हैं और यो इंतजार होता है कि भगवान पानी बरसावे। देखा गीता, देखा हमारे मौसी बिटिया आए बैठे, ओके गीता गीता करी था तुहरो नाम वही निकली आए, तो जाना तो सरस्वती। अब देखा भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा था जब ना,
0: और जब बरखा हुई उनकर जब मर्जी चली तभी बरखा हुई, तभी हमारे सबका गाड़ी आगे बढ़ी।
1: बिल्कुल सही कहा तू, देखा प्रकृति के नियम हो था और वही नियम से प्रकृति चलत है। तो हम सब के भाई यह है कि बैठ के इंतजार करे का है, और रुके के नहीं बा, अपने काम के जैसे भी बा भाई, देखा प्रभु की मर्जी वो हिसाब से हम सब के खुद के ढाले की पड़ी और चले की पड़ी।
0: और देखा सरस्वती, अब गर्मी हम सब तो भाई चला घरे के अंदर है, पंखा कूलर चलावत है, अपन सबका जो देखा चिराई चिरोमन है, तो इनके सबके भी देखा कभी कभी देखा चिराई बैठी रहती मोहमा उनका खुला रहा था प्यास के मारे। हम तो अपने छते पर जाई थे और जितना हम गमला उमला में पानी देत रही थे, जितना छोट बड़ बर्तन बा ओके हम जौन बा पानी से भर दे थे, कतौ से भी उड़ के आऊ है और जौन बा पानी पी ले, कुछ ना कुछ दाना जौन बा बिखेर दे थे।
1: बहुत अच्छा काम करे तू जमुना बहनी तू, हम सबके ही काम करे के चाहिए हमें लगते। देखा हम सब के तो भगवान आवाज दिए हैं, हम सब मांग सकत ही खाना चाहिए पानी चाहिए, लेकिन वो सभी तो कहा जाते ना बेजुबान पक्षी है ना, बेजुबान पशु। तो देखा कहा जाता ना कि जब उनके बदे हम सब व्यवस्था कर देती ही तो उनका मन कितना तृप्त हो जाता
0: है। मन जब तृप्त होता है ना सरस्वती, तो हमें सबके कितना पुण्य मिले थे।
1: बिल्कुल सही कहा
0: तो। और एक चीज और तुझसे कह चाहते रहे सरस्वती कि केवला चाची के जौन बिटुआ नहीं बटे दूसरे के नंबर वाला, वो कब पढ़े कब बाहर कमाए चला गए पता ही नहीं चला।
1: अच्छा,
0: जितना पढ़े में वो सियार रहें उतना ही समझ ले सरस्वती उनके अंदर संस्कार जोन बाटे कूट कूट के भरा बा। भाई उनके दुआरे तू कबो चला जा तो लगी तो हार पैर छुए, हाँ दूरे से जौन बा हाथ जोड़े चलाए हैं, तो भाई काहे मतलब कि उनके अंदर इतना अच्छा अनुशासन इतना अच्छा संस्कार केवला चाची लोग दे हैं कि वो ना ही सोचते हैं कि हाँ ये बाहरी हैं कि ये घरे के हैं, तो सबके संगे उनका एक जैसन व्यवहार होता। तो जब हम गए उनके यहाँ और हम ऐसा ऐसा देखा तो हम कहा देखा अगर ऐसे सब है लड़का गदेल करें तो कितनी अच्छी बात हो ना?
1: बिल्कुल,
0: तो बच्चन में संस्कार दे बहुत अच्छी चीज होता है। तो हम सोचा कि आज अपने पनघटे पर अपने
1: और देखा जब ना महीनी संस्कार तो हर माता पिता देते हैं, सोचते थे कि हमारा लड़का बच्चा संस्कारी आगे चल के निकले ताकि हमार जीवन तो आगे से अच्छा हो भी करे बीते और देश और समाज के बदे भी यही सहयोगी हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो देखा हम सोचते थे जमुना बहनी काहे ना यही विषय पे आज हम सब एक चर्चा कर ली जाए, अनुशासन का जीवन में महत्व।
0: तो देखा सरस्वती अनुशासन मनुष्य के जीवन का वो अमूल्य गुण है जौन ओके सफलता सम्मान और प्रगति की ओर ले जाते है।
1: बिल्कुल सही कहा तू जमुना बहनी, देखा अगर अनुशासन ना होए तो जीवन हमार तुहार ना एक बेलगाम घोड़े की तरह हो जाए, है ना,
0: बिल्कुल
1: कहीं हियां दौड़ा था हियां दौड़ा था अब मंजिल मिलते नहीं
0: मिलते नहीं ना। तो अनुशासन का मतलब देखा सरस्वती यह है कि नियमों का पालन करना, समय का सदुपयोग करना और अपने कर्तव्यों की ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाना।
1: बिल्कुल,
0: जौने व्यक्ति के जीवन में सरस्वती अनुशासन होता ना वह हर कार्य के व्यवस्थित ढंग से करत है और कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से कभी वो विचलित नहीं
1: होते। और देखा जब जीवन में अनुशासन हो जाते है ना तो जीवन व्यवस्थित हो जाता है ना, और ओके अपन मार्ग पता लग जाते कि भैया देखा और सब कुछ समझा थे कि ई काम ऐसे हम कर ले, धीरे धीरे ओके अपने ऊपर विश्वास बढ़े लगत है कि देखा हम पहले भी बहुत सारी चीज के पा चुका है कैसे अनुशासन के माध्यम से।
0: तो देखा अनुशासन देखो सफलता का पहली सीढ़ी होता है।
1: बिल्कुल सही कहा तो।
0: और जौन कोनो भी व्यक्ति अगर अनुशासन में रह के कार्य करत है ना सरस्वती तो निश्चित रूप से अच्छे परिणामों के प्राप्त होते हैं।
1: देखा कई हम देखा थी कई लड़का बच्चा जौन होता है उनके अंदर स्वाभाविक रूप से

0: जोन हा जोन कहा जाता ना कुशलता होता
1: हाँ
0: है,
1: कुशलता
0: और वो स्वाभाविक रूप से उनकर कौशल के अपने आगे बढ़ावत है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन कुछ लड़का ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्वाभाविक गुण नहीं होते कौशलता के,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन वो क्या करते हैं मेहनत करके प्रयास करके
1: हाँ
0: निरंतरता और अनुशासन के बल पे
1: हाँ
0: उहे गुण के अर्जित कर लेते
1: अर्जित
0: हैं।
1: कर लेते हैं। और जानत हो सरस्वती, ये जो ये अनुशासन हम सब बात करत है, ये केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है।
0: बिल्कुल सही
1: हाँ
0: कहा। तो
1: और दूसरों
0: देखा
1: के
0: जे जमुना बहनी जे अनुशासित है वह देश के नाम आगे बढ़ाए
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दूसरों के देखे अधिकारों का भी वो सम्मान करत है
0: बिल्कुल
1: और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखे में भी वो सहयोग करत है। अब
0: बिल्कुल
1: देखा ही है, देख ला है सरस्वती कि प्रकृति हमें अनुशासन का पाठ पढ़ावत है।
0: बिल्कुल
1: देखा
0: पढ़ावत है।
1: सूर्य प्रतिदिन निश्चित समय पर उदय होत है और अस्त होत है। ऋतु जितनी है हमरे हियाँ अपने निर्धारित क्रम से आवत हिन और जात हिन। पृथ्वी के देख लो कि अपने निश्चित समय पे जोन बा वो घूमता है। अब समझ ल, अगर प्रकृति में अनुशासन ना हुए तो का हमार सबका जीवन सही चले ना
0: बिल्कुल
1: चले।
0: सही न चले भाई। देखा प्रकृति से तू बहुत कितना अच्छा बताए हो कि हम सभी के प्रकृति से कितनी सीख लेवे की जरूरत है, और गहराई से प्रकृति के देखे की जरूरत है
1: जी
0: कि कितना कुछ में छिपा बाटे। सब कुछ अपने निर्धारित समय पे होता है ना।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: हम सभी के भी भाई देखा अपने दिनचर्या में एक नियमित समय पे खान पान,
1: हाँ
0: एक नियमित समय पे सोवे के, एक नियमित समय पे उठे के, ये सब जीवन का रोजमर्रा के तो काम भले बा, लेकिन एका एक नियमित निश्चित समय होवे के चाहिए। कि
1: हाँ
0: देखा आजकल हम सब इतना गड़बड़ कर रही ये सब छोटी छोटी चीज में कि यही सब हम सब के बीमारी के कारण बन गया
1: बीमारी का
0: है
1: कारण
0: ना।
1: बना। हाँ
0: और हम सब असफल भी यही कारण होती भाई, समय पे खाई ना हम सब,
1: हाँ हाँ हाँ
0: समय पे सोई ना, बीमार हुई तो जौन काम करे के रहा, स्कूले जाए के रहा, छुट्टी लेवे के
1: छुट्टी ले
0: पड़ी
1: भाई
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: अपने काम पे जाए के रहा, खेते जाए के रहा, चाहे कहीं जाए के रहा, तो भाई वो काम छूट जाए, पीछे
1: तो
0: रहब
1: वो
0: हम,
1: पीछे हो जाता
0: पीछे हो
1: ऐसे।
0: जाए तो
1: हाँ
0: सफलता कहाँ से मिली।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहनी। और देखा ये जोन अनुशासन होता है ये व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करत है और ओके आत्मविश्वासी बनावा था और सफलता के शिखर तक पहुँचावे में बहुत सहायता करत है। और जानो सरस्वती, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीवन में अनुशासन बनाना चाहे, काहे से कि अनुशासित जीवन ही सुखी सफल और सम्मानपूर्ण जीवन का कुंजी है।
0: अजानत हो जमुना बहिनी। देखा हम सभी सोचत ही ना कि काहे हमके इतना शक्ति में रखा गया कि समय से उठा, समय से जागा और सुत्ता है ना, काहे इतना लड़कन के ये अच्छा नहीं लगत कि काहे इतनी पाबंदी बा।
1: हाँ देखिए
0: देखा
1: पाबंदी से ही आदमी उज्जवल भविष्य की ओर
0: अब कई
1: आकर्षित
0: सब
1: हो।
0: कई बार हम सब कहा थी ना, लड़के हमारे लड़का लड़की जब पढ़े जाते थे कहते देखो समय से घर आना चाहिए आपको, हम सब सिखावा थी तो उनका सबके तो नहीं खराब लग जाता है कि ऐसे काहे बोलत हैं,
1: बिल्कुल
0: थोड़ा बहुत
1: बिल्कुल
0: तो इधर उधर हो ही जाता है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन उस सब एक गहराई से ना ही समझते कि देखा आज़ादी तो का मिली है, सब अपन ओकर अच्छे से निर्वाह करा,
1: बिल्कुल
0: लेकिन ओकर मतलब ये नहीं बा कि तू अनुशासन से घबराए जा।
1: जी जी
0: कि
1: जी
0: देखा जैसे नदी जो है किनारे से बंधी
1: हाँ हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ
0: पेड़ मिट्टी से बंधी है,
1: हाँ
0: अगर ना बंधी हो तो है ना
1: बह जाए।
0: बही जाए। तो वैसे ही देखा अनुशासन के जीवन में यही महत्व है कि अगर हम सब घिरा रह एक नियम से
1: हाँ
0: तो जीवन में एक अच्छा जीवन, असाधारण जीवन निश्चित हमारे सामने आई।
1: सामने आए तो देखा जोन बटे सरस्वती बातचीत हमारे सबको होते रही। अब हमारे बहनी हरे भी देखा जोन बटे गीत का इंतजार करत हुई तो चला नीलम शर्मा बहनी से ये दादरा सुनवा दिया जाए।

0: सरस्वती
1: गौनई
0: कैसा लगी?
1: गौनई तो का बताई हम, बहुत बहुत बढ़िया गौनई रही।
0: काहे कि हम देखा कि तू झूमत रहो। अब देखा गाना तो सुन लियो। अब देखा एक अगला कार्यक्रम है एक वार्ता। यह है मानसिक शांति में सकारात्मक सोच की भूमिका और जानकारी देत बटरीन बहनी नम्रता श्रीवास्तव। तो चला सुना जाए
2: सकारात्मक।

मग सोध बनाए रखना जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाने के लिए बेहद जरूरी है। जब हमारा मन शांत होता है तब सकारात्मक विचारों को आकर्षित करना और उन्हें जीवन में उतारना बहुत आसान हो जाता है। इसे विस्तार से समझने के लिए हमें कुछ मुख्य पहलू दैनिक आदतों और मनोवैज्ञानिक तरीकों पर ध्यान देना होगा। हमारा मन अक्सर बीते हुए कल के पछतावे या आने वाले कल की चिंता में भटका रहता है। जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं तो मन की अनावश्यक ऊर्जा बचती है जो सकारात्मकता में बदल जाती है। जब भी मन विचलित हो गहरी और लंबी सांस ले, यह आपके सोच को सकारात्मक में बदल देती है। हमारा मन अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो हमारे पास नहीं है। इसके विपरीत रोज सुबह या रात को सोने से पहले उन 3-5 चीजों की सूची बनाएं जिसके लिए आप भगवान या जीवन के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने से मस्तिष्क का ध्यान कमियों से हटकर प्रचुरता पर केंद्रित होता है जिससे मन में गहरी शांति और सकारात्मकता आती है। अपने विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश ना करें। एक दर्शक की तरह देखें कि आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए जैसे मैं यह नहीं कर पाऊंगा, उसे तुरंत एक सकारात्मक या कठिन है लेकिन मैं सीख सकता हूं और कोशिश कर सकता हूं, जिससे आपकी नकारात्मक सोच घटेगी। हम दिन भर सोशल मीडिया, न्यूज़ या टीवी पर जो देखते हैं उसका सीधा असर हमारी सोच पर पड़ता है। सकारात्मक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें। ऐसे लोगों की संगति से बचें जो हर बात में कमियां निकालते हैं या गॉसिप करते हैं। सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ समय बिताएं जिससे आपकी सोच तथा विचार भी सकारात्मक बनी रहे, जिससे आपका मानसिक संतुलन बना रहता है। हम अक्सर दूसरों के प्रति बहुत दयालु होते हैं लेकिन खुद के प्रति बहुत सख्त। जब आपसे कोई गलती हो तो खुद को कोसने की बजाय एक अच्छे दोस्त की तरह समझाएं, जिससे आपके खुद के प्रति आत्मविश्वास बना रहे। रोज सुबह खुद से कहें, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ और आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन अवसरों से भरा है। मानसिक शांति की स्थिति में सकारात्मक सोच रखने के लिए हमें एक और बात पर ध्यान देना चाहिए जो है शारीरिक तथा मानसिक संतुलन बनाए रखना। कम से कम 7-8 घंटे की नींद ले। थका हुआ दिमाग कभी भी शांत तथा सकारात्मक नहीं हो सकता। थके हुए शरीर में क्रोध अत्यधिक तेजी से विकास होता है जिससे जो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए वह भी हमसे हो जाता है। इसलिए हर एक इंसान को 7-8 घंटे की नींद अत्यधिक आवश्यक होती है जिससे हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है। मानसिक शांति और सकारात्मक को ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में मिल जाए। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करते हैं वैसे ही मन को शांत और सकारात्मक रखने के लिए रोज इन अच्छी आदतों का अभ्यास करना पड़ता है। मन की शांति और सकारात्मक सोच एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक मन में उथल पुथल रहेगी तब तक सकारात्मक विचार टिक नहीं सकते। शांत मन हमारे विचारों को फिल्टर करने की क्षमता रखता है। यह आपको किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर निर्णय लेने की शक्ति देता है। जितने आपके विचार शांत रहेंगे आपके विचार उतने ही सकारात्मक रहेंगे। जब आप शांत मन से लगातार सकारात्मक सोचते हैं तो मस्तिष्क में खुशी और शांति के रासायनिक मार्ग मजबूत होते जाते हैं। मनोविज्ञान में इस तकनीक का उपयोग नकारात्मक सोच के पैटर्न को तोड़ने के लिए किया जाता है। दिन भर हमारे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। इनमें से अधिकांश ऑटोमेटिक होते हैं। शांत बैठकर अपने विचारों पर ध्यान दें। जब भी कोई निराशाजनक विचार आए उसे बीच में ही पकड़े
और उन विचारों को सही तरीके से शांत मन से समझाएं तथा सुलझाएं, जिससे आपका मन स्थिर तथा खुश रहे। सुबह उठते ही और रात को

को सोने से ठीक एक घंटे पहले फोन तथा सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें। सुबह का पहला घंटा आपके अवचेतन मन के लिए सबसे संवेदनशील होता है। ऐसी किताबें, लेख या वीडियो देखें जो आपके ज्ञान, समझ और आत्मबल को बढ़ाए, जिससे यह समझ आए कि महान लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में अपनी सोच तथा विचारों को किस प्रकार सकारात्मक बनाए रखा था। उन गॉसिप, बहसों और चर्चाओं से खुद को दूर कर लें जिनका आपके जीवन या विकास से कोई सीधा संबंध नहीं है। बड़ी सफलताओं के अलावा जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, जैसे सुबह की ताजी हवा, पीने के लिए साफ पानी, इंटरनेट की सुविधा या किसी अजनबी की एक छोटी सी मुस्कान। मानसिक शांति की स्थिति में सकारात्मक सोच के लिए रोज रात को सोने से पहले डायरी में विस्तार से लिखें कि आज आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ और क्यों। जब आप विस्तार से लिखते हैं तो आपका मस्तिष्क उन सकारात्मक पलों को दोबारा जीता है, जिससे मानसिक शांति और गहरी होती जाती है। हम दुनिया से जितना बात करते हैं उससे कहीं ज्यादा खुद से बात करते हैं। हमारी आंतरिक आवाज ही हमारी किस्मत तय करती है। जितना आप खुद से सकारात्मक सोचेंगे उतना ही आपका मन शांत तथा खुश रहेगा। शांत मानसिक स्थिति में बोले गए वाक्य सीधे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें और पूरे विश्वास के साथ दोहराएं, मैं भीतर से शांत, स्थिर और सुरक्षित हूँ। परिस्थिति कैसी भी हो, मेरी मानसिक स्थिति शांति मेरी अपनी जिम्मेदारी है। हर चुनौती में विकास का नया अवसर है। जब भी आपसे कोई गलती हो जाए तो खुद को अपराधी ना माने, खुद से वैसे ही बात करें जैसे आप किसी रोते हुए छोटे बच्चे या अपने सबसे प्रिय मित्र को समझाते वक्त करते हैं। ऐसा करने से भी आपका मन शांत अत्यधिक हो जाता है तथा खुद के प्रति नकारात्मक सोच का भाव उत्पन्न नहीं होता। मन में आने वाले विचारों को अच्छे या बुरे का टैग ना दे, जैसे आकाश में बादल आते और जाते हैं वैसे ही विचारों को आने और जाने दे। लंबे समय तक मन में ना रखें ताकि आपके विचार सकारात्मक ही बनी रहे। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जो शरीर और मन को रिलैक्स करता है। भोजन करते समय शांत रहें, टीवी या फोन ना देखें। सात्विक तथा ताजा भोजन मन में सत्वगुण, शांति और पवित्रता को बढ़ाता है। हफ्ते में कुछ समय पार्क में बिताएं, हरी घास पर नंगे पैर चलें या पौधे की देखभाल करें। प्रकृति की अपनी एक शांत तरंग होती है जो हमारे भीतर सकारात्मकता का विचार करती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब सकारात्मक रहना आसान है। असली परीक्षा तब होती है जब चीजें आपके मुताबिक नहीं होती है। जो स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है उसे स्वीकार कर लें। विरोध करने से मानसिक अशांति बढ़ती है। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को मानकर आगे की रणनीति बनाना है। किसी भी समस्या को दो भागों में बांटें, जो आपके हाथ में है आपका प्रयास, आपका नजरिया, आपकी मेहनत, जो आपके हाथ में नहीं है दूसरों का व्यवहार, परिणाम, भूतकाल और भविष्य। मानसिक शांति की स्थिति में सकारात्मक सोच को गहराई से स्थापित करना एक कला और विज्ञान दोनों है। जब मन शांत होता है तब वह एक उपजाऊ भूमि की तरह होता है। आप उसमें जैसे विचार बोएंगे वैसी ही आपकी मानसिक स्थिति बनती जाएगी। जब तक आपका मन की स्थिति नकारात्मक विचारों से घिरी रहेगी तब तक आप अपने मन की स्थिति, सोच, विचार को सकारात्मक नहीं बना सकते। इसलिए अपने मन को शांत रखने के अच्छी अच्छी किताबें, ज्ञान भरी बातों को स्वयं के अंदर जब आप ग्रहण करते हैं तब आपका मन शांत तथा सकारात्मक विचारों से भर जाता है और आप मानसिक शांति में संतुलन बनाए रखते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से मन की

0: शांति भंग ना होने पाए। जीवन में हर रोज हम ऐसे लोगों से टकराते हैं जो अपने शब्दों या कर्मों से हमें आहत करने की कोशिश करते हैं। कभी अपशब्द, कभी उपेक्षा, कभी जलन भरी नजरें, लेकिन सच्ची शक्ति तब जागृत होती है जब हम इन सबको पार कर शांत रहते हैं। यह मन की वह मजबूती है जो बाहरी तूफानों को अपनी धुन पर नचाती है। मजबूत मन वाला व्यक्ति न केवल खुद खुश रहता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है।
1: हाँ सरस्वती,
2: जमुना बहनी,
1: नम्रता श्रीवास्तव बहनी कितना फरियाए की बताई,
2: देखा कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और हम सब एक शिकायत कर रही थी ना जमुना बहनी की, समय ना आई है, समय ना आई है। देखा समय ना आई रहे तब अच्छा बा, अपने काम में लगे रहा। तो उसे तो बहुत सकारात्मक आया जाता है, कुछ नकारात्मक सोचे के समय ना आई मिलता है।
1: अगर तू काम करत रहू तो तुम्हें कोनो सोचे के
2: जरूरत ना आई, तभी शिकायत बंद कह दे की हमारे पदरे समय कम है या नहीं है।
1: हाँ तो देखा इतना अच्छा वार्ता हम सब सुने, तो अब यही बात पे हम सोचा थे कि एक और गीत हो जाए, दिल ही तो है फिल्मी गीत सुना जाए, मन्ना डे की आवाज़।

0: Dim tana na dir tanu tana dere na dim tana na dir tanu tana dere na dim tana na dir tanu tana dere na dim tana na dir tanu tana dere na dim tana na dir tanu dir ta dir ta
1: सरस्वती
2: जमुना बहनी
1: कितना बढ़िया गाना लगा.
2: हाँ देखा लगा चुनरी में दाग छिपाऊं
1: कैसे
2: कैसे. हाँ, देखा जमुना बहनी कैसे छिपाऊं चुनरी में दाग लग गया तो. और वैसे ही ठीक अगर अच्छा खाए पिए नहीं पौष्टिक ना आहार ले हम सब है ना.
1: हाँ,
2: तो वो भी नहीं छिपाई सकत हम सब
1: बिल्कुल
2: है ना.
1: वो हमारे छिपाई सके कि जो उनका तबियत खराब हो जाए.
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तू. और जो ना आलस आवे लगी है.
1: हाँ,
2: ना
1: हाँ,
2: मन ना करे कुछ काम करे के तो सबका पता लग जाए भाई ये अस्वस्थ है.
1: हाँ, हाँ,
2: है ना.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
2: तो देखा अपने स्वस्थ रहे सब काम अच्छे से करें एकरे बदे बहुत जरूरी है कि हम सब पौष्टिक भोजन करें.
1: बिल्कुल माने तू रसोईया की ओर ही चलत हो.
2: बिल्कुल इतना अच्छा अच्छा गीत सुनवाए है अब तो रसोई में चले के बारी आ गई है.
1: बिल्कुल सही कहा तो कि सरस्वती की खाने में जो पौष्टिकता बहुत जरूरी होती
2: है.
1: देखा सरस्वती स्वस्थ जीवन का आधार संतुलित और पौष्टिक भोजन है. काहे से कि भोजन केवल पेट भरे का साधन नहीं बल्कि यह हमारे शरीर के ऊर्जा शक्ति और रोगों से लड़ाई का क्षमता प्रदान करता है. है ना. और यही लिए तो कहा जाता है ना कि खाने में पौष्टिकता है जरूरी.
2: बिल्कुल. और देखा ऐसे खाए के तो हम सभी कुछ खा सकती. हाँ, बहुत कुछ चीज रहा थे रसोईया में. और गृहिणी अक्सर ऐसे करबो करती. कब उनका थकाई लग जाता है कबो कहती ज्यादा काम हो गया है ना. कबो घर में बहुत सारे रिश्तेदार नात रिश्तेदार आ जाते हैं तो कहती कि भाई आज ऐसे कर लेती आज ऐसे कर लेती आज यही खा ला आज वही खा ला काम चलाए ला. तो देखा काम नहीं चलावे का है अपने काम की जिम्मेदारी से करे का है
1: ना.
2: जौन खाए पौष्टिक खाएं
1: पौष्टिक खाएं. काहे कि देखा सरस्वती जौन पौष्टिक जौन भोजन होत है ना जेमा शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में मौजूद रहे. जैसे तू कहत रहो इमा का होता जैसे कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है वसा है विटामिन है खनिज लवण है. हां
2: सब कर एक निश्चित मात्रा शरीर में जाए के चाहिए.
1: हाँ,
2: है ना. ई ना है कि हम सब अक्सर वसा पे जोर देती है ना कार्बोहाइड्रेट पे जोर देती कि भाई उहे उहे खात रही है ना. देखा जैसे घर में छोटे छोटे लड़का का दिलवा है उनके विकास बदे
1: बिल्कुल
2: है ना. सब चीज के प्रोटीन के बहुत
1: जरूरत हो भी करता. काहे कि देखा जो अभय तो से बतावत रहे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो ये सब जो तत्व होता है ना शरीर के विकास हड्डियों के मजबूती मांसपेशियों के निर्माण में और उस रोगों से सुरक्षा
2: प्रतिरोधक क्षमता जो होता है. और देखा अच्छा खाए से का होता ना जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए तो यहाँ वहाँ अस्पताल हर छोटी चीज में ना दौड़े के पड़ी है ना.
1: बिल्कुल.
2: तो भाई देखा एक जैसे जमुना बहनी एक गमला बांटे हमें एक पौधा उगावे के बाद तो हम का करब अच्छी मिट्टी ले है ना और उसमें खाद डालब थोड़ा बालू मिलाए है ना ओके थोड़ा जो है कीटाणु रहित करे के प्रयास करब है ना. तब तो एक अच्छा पौधा हमें स्वस्थ पौधा जन्मे
1: तो वही तरह था अपन शरीर भी है.
2: हाँ और देखा पेट के एक जैसे कोनो बर्तन समझ लें तो उसमें कुछ ना डालत जाए
1: नहीं
2: है ना. अच्छा अच्छा चुनिंदा चीज डालें.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
2: हाँ. तब तो तोरे ऊर्जा आए काम करे के अच्छा सोचे के. देखा ये खाली काम करे बदे अच्छा खाना जरूरी ना ही बा है ना. अच्छी सोच भी आवत है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
2: और मानसिक शांति की हम सब बात करत रहे.
1: हाँ.
2: अच्छा खाना से दिमाग भी शांत होता
1: है. और देखा जैसे यह समय गर्मी का मौसम चलता है तो ये बहुत बहनी हरे सोचा थी ना कि हाँ उसमें तेल मसाला डाल दे तो खाना बहुत अच्छा बन जाए.
2: हाँ।
1: कि गलत है तो बिना तेल मसाला कभी तू स्वादिष्ट भोजन बना सकते हो और पौष्टिकता ला सकते.
2: और हम सभी अक्सर बतावत रहती जमुना बहनी कि जैसन मौसम चलत है वो हिसाब से खान पान के करें तब आदमी स्वस्थ रहा था.
1: बिल्कुल बिल्कुल. काहे कि देखा कहा जाता है ना सरस्वती कि स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ी संपत्ति है.
2: बिल्कुल होता है.
1: और अगर एमा अगर हमके के बनाए रखे के बाटे तो हमें सबके अपने दैनिक आहार में पौष्टिक तत्वों के शामिल करें और संतुलित भोजन का आदत अपनावें तब हम सब स्वस्थ सक्रिय और खुशहाल जीवन जी सके थे. तो देखा बात कही तो होता ही है. चला हम सोचा था कि हमारा मन फिर दोनों गौने की ओर जाता है तो हम सोचा कि चला तो हैं अपने बहनी हरन के गंगा यमुना फिल्म से ये गाना सुनवाई और गाना मैंने गायिका हैं लता मंगेशकर जी।

0: जब ना बहनी, कितना बढ़िया गीत रहा ना।
1: दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा।
0: जमुना बहनी देखा, हमार बहनी अरन सबे हम सबे के इतना बढ़िया बढ़िया संदेश भेजे थी, पढ़ के तो एकदम मन खुश हो जाता। तो आवा एक बार फिर से बहनी अरन के एक ठे संदेश सुना दी जाए।
2: बनघट जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ई हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमार ईमेल एड्रेस है
1: panghatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMME@gmail.com। panghatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमार व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो सखियन देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
5: बेसब्री से इंतजार रही।
1: हाँ सरस्वती, संदेश तो देखा सुन लिया गया, अब देखा घड़ी इशारा करता है, तो चलो बहनी रन से विदा लीन जाए। राम राम बहनी,
0: राम राम बहनी हरे।

0: over. Back home, the IMD has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat, Madhya Pradesh, remaining parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during next 3 to 4 days. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and in some parts of northeast India today. On to sports. In FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezia was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit. Describes Seychelles as a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar. US Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव

0: और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
5: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि NCDC, IPCO, CRIPCO, NDDB, NABARD, NCEL, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और

0: उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
1: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
2: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय

0: त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं अजय कुमार यादव और साथी। पहले सुनते हैं इनसे देवी गीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं अजय कुमार यादव और साथी। अब इनसे सुनते हैं खेमटा।

लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आपने सुना अजय कुमार यादव और साथियों से खेमटा, व ये सुनते हैं गंगा गीत।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 3 बजने को हैं, हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और सुनते रहिए विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सायंकालीन सभा का आरंभ हम कर रहे हैं कार्यक्रम धरती के गीत के साथ। लीजिए सुनिए सूरज कुशवाहा की आवाज में कहरवा।

सूरज कुशवाहा की आवाज में अभी आपने सुना पूर्वी। इसी के साथ कार्यक्रम धरती के गीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। आज आप इसकी सातवीं कड़ी सुनेंगे। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा संवाद में भाग ले रहे हैं। इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
1: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
2: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वाशिंग होती है, वाशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक पे एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री

0: वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है। बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक ऐसा अलार्म सेंटर है। क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा ऐसा अलार्म सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती हैं। उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है। आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
0: Yes.
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में, या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप।
0: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचड़े को, अन्य सभी कचड़ों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचड़े के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या। तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको यह समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 20-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए मैं इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सकें, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है।
1: ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा। क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे।
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से, मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना चाहता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूँ और अपने परिवार के बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊँ, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है, खासकर जो कचड़े का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में। तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष

0: किया। प्रभाव यह पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं,
1: बिल्कुल है।
0: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
1: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 या 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 संभवतः दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे। वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीज़ों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीज़ों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
0: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
1: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि 1 किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, 1 किलो लोहा और 1 किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। 1 किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया। और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है, इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज़ करें। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंकें ना, आप प्लास्टिक का यूज़ किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, 1 किलो हो गया, गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
0: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
1: नहीं,
0: क्या है,
1: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
0: जैविक है
1: वो, ऑर्गेनिक है वो।
0: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
1: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उस ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
0: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
1: जी,
0: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
1: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज कैफे
0: पड़ा,
1: बिल्कुल असर
0: वृद्धि हुई है,
1: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चलकर।
0: मैं देख रहा हूं कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
1: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को ये मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
0: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब में?
1: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी, तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है,

0: तो 40 रुपए के प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूँ, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहाँ पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था। उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे, तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है, हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20 से 22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20 से 22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया। तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है लाभ का, अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है।
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है। नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
1: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी इन लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता तक कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बोतल में पानी पिए और वो बोतल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी इनिशिएटिव
1: टॉकीज में जाकर फिल्म देख सकें, ये
0: इस तरह की योजना कैसे से बच्चों का, सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं फिर प्रेस करते जाएं डालते जाएं वो एक भर कितना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बोतल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह की चीजों पर भी कुछ,
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके
0: रैपर्स को इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10-15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।
1: मैंने एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचड़ा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: #GarbageCafe सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान कोरिया यहाँ से भी
0: सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी।
0: अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहाँ पे ले रहे हैं, और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों

0: जिस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहाँ से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। युवा श्रोता सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपका दिन प्रोडक्टिव भी रहा होगा और मेमोरेबल भी। शाम का ये वक्त भी कमाल का होता है ना। दिन भर की भाग दौड़ सब धीमे धीमे थम रही होती है। ऑफिस से घर लौटने वाले लोग ट्रैफिक में अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट सुन रहे होते हैं। स्टूडेंट्स कोचिंग और क्लासेस के बाद थोड़ी राहत की सांस ले रहे होते हैं और चाय की टपरी पर देश की इकोनॉमी से लेकर क्रिकेट और बॉलीवुड तक के सारे मसले सॉल्व किए जा रहे होते हैं। और इसी शाम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अपना यूथ प्रोग्राम युववाणी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अंजलि श्रीवास्तव। और अगले कुछ मिनट्स में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो रोज हमारे आसपास होता है, लेकिन अक्सर हम उसकी अहमियत को महसूस ही नहीं कर पाते। सोचिए दोस्तों, आपके दिन की शुरुआत जब होती है तो आँख खुलते ही लगता है ना कि बस हाथ में एक कप चाय मिल जाए या कॉफ़ी मिल जाए और सुबह की एकदम परफेक्ट शुरुआत हो जाए। लेकिन सुबह हम इतने भाग दौड़ में रहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता बनाने का। फिर याद आती है मोहल्ले की वो चाय की टपरी, मोबाइल में कुछ छोटी मोटी दिक्कत आ जाए तो वो कॉर्नर वाली रिपेयर शॉप याद आ जाती है। कहीं दोस्त का बर्थडे हो तो वो लोकल गिफ्ट शॉप जो एकदम फिक्स्ड है वहीं आप जाते हैं। और कपड़े ऑर्डर करवाने हो तो वही टेलर वाले भैया जिनको सब पता है हमारी और पसंद और नापसंद के बारे में। और आजकल तो सोशल मीडिया साइट्स पर भी छोटे ऑनलाइन बिजनेसेस की शॉपिंग भी हो रही है, जिसमें अब शॉपिंग करना बहुत नॉर्मल सी बात है ना। लेकिन एक मिनट सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आप देखें कि ना चाय की टपरी है, ना रिपेयर शॉप है, ना टेलरिंग शॉप है और ना ही वो ऑनलाइन पेज जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचता था, सब गायब, तो पहले लगेगा अरे यार ये सब कहाँ चले गए हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ आएगा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी गहराई से इन लोगों से जुड़ी हुई है। कभी आपने नोटिस किया है, हर बड़े ब्रांड की कहानी अक्सर एक छोटी सी शुरुआत से शुरू होती है। एक रूम, एक टेबल, एक नोटबुक, एक आइडिया और ढेर सारी उम्मीदें, बस बाकी सब तो धीरे धीरे जुड़ता चला जाता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, सपने बड़े रखो, शुरुआत छोटी हो तो भी चलेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं आते, लेकिन देश की प्रगति की कहानी में उनका रोल बहुत आगे होता है। उन लोगों की जो सिर्फ जॉब्स नहीं

सुनते बल्कि क्रिएट भी करते हैं, उन लोगों की जो छोटी शुरुआत करते हैं लेकिन बड़े बदलाव लेकर आते हैं। आज का हमारा विषय उन्हीं से जुड़ा है। दोस्तों, आज 27 जून है और आज पूरी दुनिया मना रही है इंटरनेशनल MSME डे, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे। ये दिन दुनिया को याद दिलाता है कि बड़े बड़े इकोनॉमिक नंबर्स के पीछे अक्सर छोटे छोटे बिजनेसेस और बड़े हौसले होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये MSME का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं तो आपके एरिया की जो बेकरी है, लोकल प्रिंटिंग शॉप है, फर्नीचर यूनिट है, हैंडलूम बिजनेस है, होम बेस्ड फूड बिजनेस है, या ऑनलाइन हैंडमेड प्रोडक्ट्स वाले स्टार्टअप, ये सब MSME इकोसिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। यानी ऐसे एंटरप्राइजेस जो छोटे या मीडियम लेवल पर काम करते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं ना कि दुनिया की इकोनॉमी सिर्फ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज चलाती होंगी, लेकिन सच कुछ और ही है। दुनिया भर में लगभग 90% बिजनेसेस MSMEs के हैं। और जी हाँ, ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। ग्लोबल लेवल पर जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है ना, उसमें करीब 60-70% रोज़गार जो है वो MSMEs ही प्रोवाइड करती हैं। और GDP, उसमें भी लगभग 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इसी सेक्टर का है। मतलब जिन बिजनेस को हम कभी कभी स्मॉल बिजनेस कह देते हैं ना, वही बिजनेसेस दुनिया की इकोनॉमी को चलाने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए MSMEs को अक्सर इकोनॉमी का बैकबोन भी कहा जाता है। और सबसे खास बात, MSMEs सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ही नहीं बनाते, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। किसी युवा को पहली नौकरी मिलती है, किसी महिला को अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है, किसी गांव को विकास की नई राह मिलती है। यानी MSME सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं चलाते, ये सपने चलाते हैं, घर चलाते हैं और ये उम्मीदें चलाते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर इस दिन का मनाया क्यों जाता है आखिरकार? दोस्तों, MSMEs की इसी असाधारण योगदान को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 27 जून को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे के रूप में मनाने का डिसीजन लिया। इसका उद्देश्य था दुनिया भर के लोगों को MSMEs के योगदान के बारे में जागरूक करना, खासकर उनकी भूमिका को समझना जो रोजगार सृजन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में नज़र आती है। जब भी दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करती है, गरीबी कम करने की, रोजगार बढ़ाने की, महिला सशक्तिकरण की, इंक्लूसिव ग्रोथ की, तो MSMEs इन सब लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, ये बात हम सब यंग लिसनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का यूथ पहले से ज़्यादा इनोवेटिव है। कोई कॉन्टेंट क्रिएटर है, कोई ऐप डेवलपर है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई होममेड और हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है और कोई स्टार्टअप लॉन्च करने का सपना देख रहा है। आज करियर का मतलब है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, और MSME सेक्टर इसी अपॉर्चुनिटी को प्लेटफॉर्म देता है। दोस्तों, आज के इंटरनेशनल MSME डे पर एक बात याद रखिए कि हर सक्सेसफुल बिजनेस कभी ना कभी एक सिंपल आइडिया ही था, और अगर हर बिजनेस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कभी ना कभी एक जगह से उसने शुरू किया होगा, वो भी बिगनर ही था। इसलिए अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई हॉबी है, कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो सिर्फ सोचिए मत, उस पर काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि हो सकता है आज जो आइडिया आप अपनी डायरी में लिख रहे हैं, कल वही किसी और के लिए रोजगार का जरिया बन जाए। क्योंकि बड़ा बनने के लिए शुरुआत बड़ी होना ज़रूरी नहीं है, हौसला बड़ा होना चाहिए। सो सैल्यूट टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिसंस, इनोवेटर्स एंड ड्रीम्स, जो हर रोज़ ये साबित करते हैं। So with this positive thought, let's take a musical break.

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
4: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
6: दोस्तों, अब वक्त आ गया है प्रेरणापुंज सेगमेंट का, और आज के सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शासक की जिसके बारे में एक बार किसी विदेशी यात्री ने लिखा था, पंजाब में एक ऐसा राजा है जिसके सामने लोग डर से नहीं, सम्मान से झुकते हैं। और शायद यही किसी भी महान नेता या राजा की सबसे बड़ी पहचान होती है। हम बात कर रहे हैं महाराजा रंजीत सिंह की, जिनको इतिहास शेरे पंजाब के नाम से याद करता है। 13 नवंबर 1780 पंजाब के गुजरनवाला में एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा गया

रंजीत सिंह। सिर्फ 12 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने नेतृत्व की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। सोचिए, इतनी कम उम्र में सेना की चुनौतियों का सामना करना। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में पंजाब कई छोटी छोटी सिख मिसल में विभाजित था। सबके अपने नेता थे, अपने हित थे, और इसी वजह से एकता की कमी थी। रंजीत सिंह ने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया और 1799 में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया और फिर 1801 में लाहौर में उनका राज्याभिषेक हुआ। इसी के साथ सिख एम्पायर की आधिकारिक स्थापना भी हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने आप को बादशाह के रूप में प्रचारित नहीं करने बल्कि महाराजा के रूप में स्थापित किया और अपनी मुद्रा गुरु नानक देव और सिख गुरुओं के नाम पर भी चलवाई। ये उनकी विनम्रता और धार्मिक आस्था दोनों को ही दर्शाता है। दोस्तों, महाराजा का साम्राज्य धीरे धीरे इतना विशाल हो गया कि उसमें आज के पंजाब के अलावा कश्मीर, पेशावर और मुल्तान जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। 1818 में मुल्तान पर विजय, 1819 में कश्मीर पर अधिकार और 1834 में पेशावर पर नियंत्रण। ये उपलब्धियाँ उस समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सफलताओं में गिनी जाती थी। और सबसे खास बात, उनके जीवन काल में कोई भी विदेशी शक्ति पंजाब पर कब्जा नहीं कर सकी। एक बात और गौर करने वाली ये है कि इनके दरबार में सिख, हिंदू, मुस्लिम सभी को महत्वपूर्ण स्थान मिला, यानी कि उनके लिए धर्म से पहले योग्यता मायने रखती थी। रंजीत सिंह समझते थे कि बदलाव जरूरी है, बदलते समय के साथ साथ बदलना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक रूप दिया, फ्रेंच और इटालियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स को नियुक्त किया, यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग शुरू करी, आर्टिलरी को मजबूत बनाया और डिसिप्लिन को बढ़ावा दिया। और इसी वजह से उनकी सेना उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक मानी जाती थी। दोस्तों, जब भी कोहिनूर हीरा का जिक्र होता है, महाराजा रंजीत सिंह का नाम ज़रूर नज़र आता है। 1813 में कोहिनूर उनके अधिकार में आया और वहीं प्रसिद्ध हीरा है ये, जो आज भी दुनिया को सबसे चर्चित हीरों में से एक माना जाता है। और इसके अलावा पंजाब की बात हो और गोल्डन टेंपल का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महाराजा रंजीत सिंह ने हरमंदिर साहिब के सौंदर्यीकरण के लिए बहुत योगदान दिए। मंदिर के ऊपर सोने की परत चढ़वाई गई, जिसके बाद इसे गोल्डन टेंपल के रूप में विशेष पहचान मिली। दोस्तों, महाराजा रंजीत सिंह सिर्फ पंजाब के शासक नहीं थे, वो एक विजन थे, एक लीडरशिप मॉडल थे, एक ऐसा नाम जो हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति, साहस और समावेशी सोच से इतिहास की दिशा बदल सकता है। इसीलिए आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो सम्मान के साथ कहा जाता है, शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। दोस्तों, ये था हमारा प्रेरणापुंज सेगमेंट। और आपको जैसा कि पता है कि आज सैटरडे है, सैटरडे यानी आज की शाम आपके नाम सेगमेंट, तो हम आज इसमें किसकी बात करेंगे, ये थोड़ा सा आप गेस करिए इस गाने की मदद से।

0: दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है, बॉलीवुड में हर जनरेशन की अपनी एक फेवरेट एक्ट्रेस होती है। किसी जनरेशन के लिए वो थी मधुबाला, किसी के लिए श्रीदेवी, किसी के लिए काजोल और किसी के लिए दीपिका पादुकोण। और आज की जेंजी ऑडियंस की बात करें तो एक नाम जो अक्सर सोशल मीडिया फीड्स, मूवी डिस्कशंस और फैशन ट्रेंड्स में नज़र आता है, वो है अनन्या पांडे का। जी हाँ, आज की शाम आपके नाम सेगमेंट हम डेडिकेट कर रहे हैं इसी यंग, एनर्जेटिक और रिलेटेबल बॉलीवुड स्टार को।
1: Let's go crazy.

दोस्तों आपको याद है अनन्या पांडे ने बॉलीवुड डेब्यू किया था 2019 की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, और तब से उनका सफ़र लगातार चर्चा में रहा है। वैसे दोस्तों जैसे ही अनन्या पांडे का नाम आता है ना, लोगों को याद आता है कि वो एक्टर चंकी पांडे की बेटी हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉलीवुड में एंट्री तो मिल सकती है, लेकिन ऑडियंस का प्यार और एक्सेप्टेंस अर्न करना पड़ता है, और ये काम हर एक्टर को खुद करना पड़ता है। अनन्या ने भी क्रिटिसिज्म देखा, मीम्स देखे, सोशल मीडिया ट्रोलिंग देखी, लेकिन उन्होंने कभी काम करना नहीं छोड़ा, और शायद इसी वजह से आज उनकी जर्नी

कई यंग लिसनर्स को रिलेटेबल लगती है। दोस्तों, एक एक्टर की जर्नी को समझना हो तो उसकी फिल्मोग्राफी पर नज़र डाल सकते हैं आप। और अनन्या पांडे का बॉलीवुड का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। उन्होंने 2019 में डेब्यू किया और तब से रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर और यूथ सेंट्रिक फिल्म्स में नज़र आईं। चलिए एक क्विक रिवाइंड करते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2019, पति पत्नी और वो 2019, खाली पीली 2020, गहराइयाँ 2022, लिगर 2022, ड्रीम गर्ल 2023, खो गए हम कहाँ, CTRL, केसरी चैप्टर 2, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियावाला बाग, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी और चांद मेरा दिल। हर फिल्म के साथ एक नए एक्टर को अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है और ऑडियंस उस सफ़र का हिस्सा बन जाती है।

दोस्तों एक बात माननी पड़ेगी, अनन्या पांडे का जेंजी ऑडियंस के साथ कनेक्ट काफ़ी स्ट्रांग है। फैशन ट्रेंड्स, ट्रैवल पोस्ट, बिहाइंड द सीन्स मोमेंट्स, फन रील्स, ये सब उन्हें यंग ऑडियंस के साथ और करीब ले आती है, और इसी वजह से कई यंगस्टर्स उन्हें सिर्फ एक्टर्स के रूप में नहीं बल्कि एक यूथ आइकन के रूप में भी देखते हैं। और आज के ज़माने में तो सेलिब्रिटी होना मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं, आपको सोशल मीडिया पर भी हैंडल करना है, पब्लिक अपीयरेंसेस भी, ब्रांड कोलैबोरेशंस भी, इंटरव्यूज़ भी, और कभी कभी ट्रोल्स भी, मतलब एक्टर मतलब मल्टीटास्किंग। और इसी वजह से आज की जो जनरेशन है ना, उनके एक्टर्स वो जो हैं उनको सफ़र उनका जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है पहले के एक्टर्स के मुकाबले। और दोस्तों चाहे आप अनन्या पांडे के फ़ैन हो या ना हो, लेकिन एक बात हर यंग लिसनर्स उनकी जर्नी से सीख सकता है, आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर किसी को ओपिनियंस का सामना करना पड़ता है। कभी लाइक्स मिलेंगे, कभी क्रिटिसिज्म, कभी अप्रिसिएशन, कभी ट्रोलिंग, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना काम करते रहें, अपनी ग्रोथ पर फोकस करें और हर नए दिन को नई शुरुआत के साथ शुरू करें और थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाते रहें। हंसी, ग्लैमर, फिल्म्स, फैशन और जेंजी वाइब से भरी ये शाम हमने डेडिकेट की अनन्या पांडे के नाम। तो दोस्तों ये था हमारा आज की शाम आपके नाम सेगमेंट, और जैसा कि आपको पता है कि हम प्रोग्राम के एंड में आपके लिए लाते हैं Q&A सेशन। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां दिन और रात की लंबाई हमेशा बराबर होती है? इसका आंसर है इक्वेटर। और आज का हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा है? आप हमें अपना जवाब दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी yuvvaniald@gmail.com पर, और हमारे फ़ोन नंबर 8004926250। इसी नंबर पे आप हमें आज के प्रोग्राम का रिव्यू भी दे सकते हैं। ये था हमारा आज का कार्यक्रम, मिलेंगे फिर आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है, वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

0: को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरला में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4

0: गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे अजय कुमार यादव और साथियों से लोकगीत और परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत। डॉक्टर उमर हसन से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत सुनिएगा बदलते जलवायु में हृदय का कैसे रखें ध्यान। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत 7:31 पर डॉक्टर चितरंजन सिंह की वार्ता होगी डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सात्विक मिश्रा से भजन सुनिएगा। 8 बजे चित्रपट संगीत। रात 8:30 पर सबरस। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब एक नजर कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल दिन में 11 बजे आप सुनेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रेडियो प्रसारण मन की बात। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल शाम 6:30 बजे से आप सुनेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ओल्ड लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ये हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर राम लखन पाल से की गई बातचीत सुनिएगा, कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर असी पटेल की वार्ता, हृदय को स्वस्थ कैसे रखें। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर पंडित उल्लास बापट से संतूर वादन और दिन में 12:15 पर सुश्री पद्मा तलवलकर का ख्याल गायन। सुबह 8:45 पर सुनिएगा नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की। 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में ज्योति आनंद से गीत और भजन सुनिएगा। 10:05 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में लोकगीत सुनिएगा शोभा लाल, राजू सिंह और साथियों से। दिन में 1:15 पर हेलो अनुरोध, प्रस्तुति मधु कुमार की। 2:30 पर राजू सिंह और साथियों से लोकगीत सुनिएगा। कल शाम 5:00 बाल गोपाल कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे समर प्रताप सिंह की कहानी मूर्ख चोर। शाम 5:15 युव वाणी। ये थी कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब हम आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में जानकारी दे दें। सुशील कुमार सूचित करते हैं कि इनकी पत्नी सुमन देवी उम्र 35 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, दोहरा बदन, चेहरा गोल, आंखें सामान्य हैं, इनके बाल काले व लंबे हैं। ये 26 मई 2026 दिन में दोपहर 12 बजे से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने साड़ी, हाथ में लाल धागा, गले में काला धागा और हवाई चप्पल पहना हुआ था। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया भेलखा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी को सूचित करें। इनसे मिलने पर अगर कोई सूचना मिलती है तो कृपया इस नंबर पर भी आप सूचित कर सकते हैं, 7755847929। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 7755847929। एक और सूचना सुनिए, बसंतलाल पुत्र मुन्ना निवासी सैबनसा थाना करारी जनपद कौशाम्बी उम्र 17 वर्ष। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया पुलिस अधीक्षक राज्य अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचना करें। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। ग्रामीण भाई सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम
1: राम।
0: हम कहा मोती भैया।
1: हाँ भैया,
0: देखा भाई दयु राजा ते समय में जोन का करी गर्मी दिए तहाँ घाम दिए तहाँ। तो भाई कहा कि मतलब बार मौसम का ताव तरक होत है, मिजाज होत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: कभो दुई दिन हमूर की उमूर, तो इसे घबराए की जरूरत ना बा। बस जरूरत यह बात का बा कि थोड़ा सावधानी बरते पंचहरी।
1: बिल्कुल भाई, सावधानी बरतें कहें से कि धूप इतना तेज होत बहु न।
0: हाँ।
1: कि खेती किसानी काम भैया साझे सवेरे निपटाए।
0: बस कह गया। हाँ, जब तनी गर्मी कम रहा, घाम कम रहा,
1: बिल्कुल
0: तो ई करें। दूसरी बात यह है भाई कि जे पंच हरे नर्सरी डाये यहाँ, तो नर्सरी का तनी देखे रहा है भाई कि यहाँ गर्मी में पानी बहुत जल्दी झुराई जात है। धान पान और केरा ये पानी का चेहरा, तो भाई देखे रहा है कि छप छपे पानी रोज या दूसरे रोज नर्सरी का देत रहा है। और पानी देत हैं तो साथ ही साथ ओकरे मोथा या यहाँ तरीके का घास भी नहीं करत है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो कहीं देखे सवाचे रहा है, अगर नजर आवे तो ओका निकाले जाए। नहीं तो होत का कि भाई नर्सरी का ताकत खींचत है, खेत को उर्वरा शक्ति खींचत है, फसल का नुकसान करत है। तो यह कुल बातन पर ध्यान देखा है। साथ ही साथ बहुत पंचहरी यहाँ जो लतेर वाली सब्जी भाई, चाहे देखा नेनुआ हो, चाहे तो तरोई हो, चाहे तो लौकी हो, कोहड़ा हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: एका बो यहाँ। तो तनी भाई हम कहते देखा बारिश कोनो भी समय कोनो भी दिन शुरू हो सकता था।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो तनी भाई टटिया उटिया बांध लें, नहीं तो होत का लतेर वाली सब्जी में अगर पानी लगा, पानी में डूबा, तो भाई सर जात या खराब हो जात, तो बाजार को ओकर अच्छा भाव ना मिलत।
1: बिल्कुल,
0: एक बात पंचस यो कहा कि भाई बारिश शुरू होए के इंतजार न करें, बल्कि मेड़बंदी मजबूत कर लें।
1: बिल्कुल, मेड़बंदी कर लें, नहीं तो भाई जोन उपजाऊ मिट्टी ऊपर का बायन हो भाई पानी के साथे बह जात है।
0: ए भैया हम कहते देखा कयो साल कत कमाई माटी रहत है।
1: बिल्कुल
0: अब
1: बिल्कुल
0: बह के
1: बिल्कुल,
0: भाई गढ़ही तलाव में चला गया तो बेकार जात है। तो यह कुल बात पंचन के गौर करे का। एक बात और भाई कि जे पंचहरी अगर चूक गो कि पेड़ पालो लगावे के बाटे, चाहे इमारती लकड़ी के चाहे फलदार पेड़, और रेखांकन ना कह पाए यहाँ, वो गढ़ा ना खोद पाए यहाँ, तब ऐसे समय बाटे हम कहते भाई गढ़ा वढ़ा खोद लें और का पूरा ब्यौरा व्यवस्था बना लें, मतलब वहाँ सूखी खाद गोबरे का मिला के
1: बिल्कुल
0: ढेरी बना लें, जब बारिश शुरू हो तो भाई वृक्षारोपण कई दें।
1: कई दें हो। एक बात और हो सुमेर भैया,
0: हो
1: देखा हो आज के जोन दिन बने वो भाई एक कार्यक्रम जोन मनावा जाता है, चलावा जाता है MSME योजना।
0: हे भैया लघु उद्योग है ना।
1: हाँ, लघु उद्योग वाला।
0: हाँ, हाँ।
1: जोन भाई देखा हो राज्य सरकार के माध्यम से भाई जोन मंत्रालय है, जोन मंत्रालय से ई काम होत है।
0: हाँ।
1: जोन भैया लघु उद्योग हैं उन्हें भैया मदद भी किया जाता है, और उसे जोन उत्पादन होत है ओका बढ़ावा देवे बदे भाई सरकार उनमें सहायता भी करत है।
0: बहुत बढ़िया बात। हम कहते भाई देखा खेती किसानी के साथ ही साथ अच्छा तमाम रोजगार धंधा ऐसा ना है मोती जोन की सीधे खेती किसानी से जुड़ा है।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सबसे बड़ी बात ये बाटे भाई कि जोन तोहरे सुविधा का काम हो, जोन तोहरे समझ का काम हो,
1: बिल्कुल,
0: और जोन तोहरे उपयोग का काम हो, समझता है ना। उपयोग का मतलब बा भाई बाजारों हो चाहिए ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: वहाँ काम का अपनावा ही ओकरे बड़े सरकार की तरफ से देखा तो समय समय पर ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर भाई एकर तो प्रशिक्षण भी दिन जात है।
1: बिल्कुल दिया जात हो। हम तो कहब कि ने देखा गांव घर में भैया अपन खादी ग्राम उद्योग भी है।
0: हाँ,
1: तहत तमाम काम होत है,
0: तमाम काम होत है।

0: कढ़ाई है, बुनाई है, हथकरघा वाला काम है, और जोन कपड़ा वाला काम होत है बुनाई वाला, ओकरे तहत भी भैया देखा सरकार मदद करे तैयार है और मदद भी करत है।
1: ये भैया देखा बनारस बाटे, मऊ बाटे, आजमगढ़ बाटे, यहाँ बहुत व्यापक पैमाने पर काम
0: बिल्कुल,
1: हो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: या तोरे वहाँ खेती कर लिया परियामा
0: देखा
1: है तो व्यापक पैमाने पर काम हो रहा बाटे। तो हम कहा कि पंच छन के यहाँ कुल बातन पर भी गौर विचार करे के चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जब सरकार की तरफ से सुविधा मिल रहा बा, प्रशिक्षण मिल रहा बाटे, आर्थिक सहायता भी मिल रही बाटे,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो भाई
0: बिल्कुल
1: बाजार के देख लें कि बाजार आसपास इकर कथा के बाटे। सबसे जरूरत यह बात खो था कि उनका रुचि कौन है काम में बाटे, वहाँ तरीके से काम का अपनावें। और हम कहते भाई देखा अपन उज्जवल भविष्य बनावें,
0: बिल्कुल
1: चार
0: बिल्कुल
1: जने का और काम दें तो इससे बढ़िया तो कुछ ना हो सकते। और मोती एक बात देखा पंचायत से यह कहा गया है कि भाई हमरे तोहरे पीछे गोरु बछेरू भी बन्हा नहाए,
0: बिल्कुल
1: उन्हों को
0: बिल्कुल
1: गर्मी सर्दी बरसात लागत है, तो उनका भी ख्याल रखें, ताज़ा भोजन दें, उनका ताज़ा रातिब दें, ताज़ा पानी पियावें। सवेरे संझा जब घाम न रहे, गर्मी न रहे, तब उनका तरीब बाहरी निकाल के टहरावें भी, नहवावें भी।
0: ना बिल्कुल भाई देखा हो, अब एक बार और कहा एक बात है, देखा हो अपने कार्यक्रम में ने आज भैया परिवार कल्याण के बात बाटे तो एक ठी बातचीत सुनवाई भो।
1: हाँ हाँ
0: परिवार कल्याण की बात के तहत बदलते जलवायु में हृदय का कैसे रखें ध्यान, तो
1: अच्छा
0: यह विषय पे डॉक्टर उमर हसन से अभिनव प्रज्ञ पांडे भैया बातचीत किए हैं, एका सुनवा जाए। मुला कहता भाई ढोल मजीरा बजवाए दे।
1: बिल्कुल भाई पंचायती स्वागत हो चाहिए। हम कहते देखा गवने ही सुनवा तो अजय कुमार यादव संघातिन के गावा गवने ही बाटे पंचे सुन ले फिर बत कही हुई
0: सुनवाद भाई।

0: हाँ भैया
1: इतना गौन ही रही विकास गीत पंचरे सुनन
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अजय कुमार यादव संघातिन का। अब जो बात कही बतावत रहे भैया की परिवार कल्याण की बात में
0: तो
1: हृदय
0: भैया
1: से जुड़ी हुई जो समस्या बाटे जो सावधानी बाटे तो बताओ भैया के।
0: भैया ने कि देखा हो बदलते जलवायु में हृदय का कैसे रखें ध्यान,
1: हाँ
0: यह विषय पे डॉक्टर उमर हसन से अभिनव प्रज्ञ पांडे भैया बातचीत किए हैं, तो एक आवता सुन लिया जात और पंचो भाव सुन लेतन।
1: सुनवा दे भैया।
2: श्रोताओं नमस्कार, पंचो राम राम। ग्रामीण भाइयों और बहनों को ढेर सारा प्रेम, हमारा हार्दिक धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमेशा की तरह, और एक अनुग्रह है, एक रिक्वेस्ट कि ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, और हम वादा करते हैं कि ऐसे ही ज्ञानपरक मनोरंजनपरक कार्यक्रम लेकर आप तक उपस्थित होते रहेंगे। श्रोताओं आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि वो हमारे दिल से जुड़ी हुई है, जिसे हम हार्ट भी कहते हैं, हृदय भी कहते हैं, और दिल एक ऐसी चीज़ जो अंतिम सांस तक हमारे साथ काम करता है, जो तब तक जिंदा रहता है जब तक हम जिंदा रहते हैं, या यूँ कहें जब तक वो जिंदा रहता है तब तक हम जिंदा रहते हैं। गालिब ने यूं ही नहीं कहा कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज़ की दवा क्या है। तो दिल को मर्ज़ होने ही क्यों दिया जाए, दिल को बीमार बनाया ही क्यों जाए। आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे, और बात करेंगे खासकर हमारे युवाओं के ऊपर, क्योंकि आजकल ऐसा देखने में भी आ रहा है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी, ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में और युवाओं में, कि अचानक से वो कोलैप्स कर जा रहे हैं। कोई व्यायाम करके निकल रहा है, कोई जिम से निकल रहा है, कोई दौड़ते दौड़ते, कोई बैठे बैठे अचानक से कुछ हो जा रहा है, और फिर ये पता चलता है कि फला व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ये सारी चीज़ें क्या है, हम अपने दिल को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे कैसे हम एक अच्छी जीवन शैली के साथ, अच्छी लाइफस्टाइल के साथ एक अच्छी जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, और इन सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रयागराज के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमर हसन। डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जो पॉइंट्स आपने अभी बोले हैं वो बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं, और मैं अपने प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि सडनली हार्ट की दिक्कत किसी को हो रही है, बिल्कुल स्वस्थ इंसान को जो कि देखने में स्वस्थ लगता है, और उम्र कोई नहीं रह गई है,

0: हर उम्र पे हो रहा है,
1: बिल्कुल
0: 25 साल से लेकर 75 साल तक के बीच में हो रहा है, तो ये अपने देश के लिए गंभीरता का विषय है। और कुछ एक युवाओं में और बहुत लोग मेरे पास आते हैं, उनमें एक डर सा बैठ गया है, क्योंकि जिनके परिवार में ये हादसा हो गया और पूरा परिवार डरा हुआ है कि क्या करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए या एक्सरसाइज छोड़ देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना तेल लेना चाहिए। तो एक तरह से पूरे परिवार में एक गंभीरता का माहौल बन जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं।
1: जी
0: तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे आपने जो पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो आपने टर्म यूज़ करा कार्डियक अरेस्ट, ये एक जनरल टर्म है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट बंद होना, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद भी हो सकता है, हार्ट अटैक के बाद भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी हो सकता है, पेट में अल्सर फटने से, ब्लड लॉस से भी हो सकता है,
1: तनाव से भी हो
0: तनाव
1: सकता
0: से बीमारियां हो सकती जिससे ये हो सकता है।
1: है।
0: तो कार्डियक अरेस्ट एक जनरल टर्म है, उसको अगर हम लोग एकदम हिंदी में उसका सीधा ट्रांसलेशन
1: जी
0: करें तो मतलब हार्ट बंद होना। हार्ट बंद होने के बहुत वजह होती है, और सबसे कॉमन वजह जो है वो है हार्ट की नस ब्लॉक होना, उससे हार्ट का पंपिंग ख़त्म होना और हार्ट बंद हो जाना।
1: जी
0: अब ये किसमें ज़्यादा होता है? ये जनरली हमारे जो स्मोकिंग करते हैं, टबैको इनटेक करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ऑफिस में बैठने का काम, 9 से 5 बैठ गए, घर जाया, खाना खाया, टीवी देखा, सो गए, ऑयली चीज़ें खाना,
1: जी
0: फैटी फूड खाना, ये सारी चीज़ें से आप एक कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको हार्ट की तकलीफ हो सकती है।
1: जी
0: और जो मैं समझता हूँ ये अवॉइडेबल चीज़ें हैं, और क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम सब ये कहते हैं, इनफैक्ट मैंने भी जब प्रैक्टिस शुरू करी तो मैं यही बहाना देता था ना एक्सरसाइज करने का कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैंने रियलाइज़ करा कि ये हमारा पास एक बहुत ईजी बहाना है अपने आप को समझाने का, बुझलाने का कि भाई हमारे पास समय नहीं है, तो ये सारे बड़े कॉमन फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड को गाढ़ा करते हैं। स्मोक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अल्कोहल हाई डोज में बहुत, खाने में अलग अलग रिफाइंड तली हुई चीज़ें खाना, ये सब हमारे ब्लड को स्लो करते हैं। स्लो मतलब हमारा ब्लड गाढ़ा जब होता है, जब हमारा ब्लड स्लो होता है ना तो उसमें क्लॉट बनने की क्षमता ज़्यादा होती है, और फिर अटैक आता है
1: क्लॉट मतलब थक के।
0: थक्के बनने की, बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट के जो नसें हैं और बॉडी की नसों को भी और हार्ट की नसों की दीवारों में खुदरापन लाती हैं। जब दीवारों में खुदरापन आता है तो दीवार में क्रैक आने की, ये मैं हार्ट की आर्टरीज़ की दीवारों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्रैक आने के चांस होती है। जब क्रैक आता है और हमारा ब्लड गाढ़ा होता है तो उसमें क्लॉट जमता है। तो अगर उसमें ब्लॉकेज आया किसी भी वजह से, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लॉकेज का चांस बढ़ता है, एज इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, तो उसमें क्या होता है कि आप वॉक कर रहे हैं तो आपके सीने में भारीपन आया, आप बैठ गए, ठीक हो गया, तो आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, आपने टेस्ट कराए, ब्लॉकेज निकला, जिस तरह का ब्लॉकेज निकला आपने वैसा इलाज करा लिया। अब एक व्यक्ति जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता है, बिल्कुल नहीं चलता है, बिल्कुल वॉक नहीं करता है, उसमें अगर क्लॉट आया तो वो ग्रेजुअली नहीं आएगा, वो एकदम से आएगा। जब एकदम से आता है तो सडन हार्ट बंद होने का चांस होता है। जैसे जो स्मोक कर रहा है उसके अंदर गाढ़ा ब्लड है, उसने सडनली जिम जाकर आज मैं 1 किलोमीटर भागूंगा या 2 किलोमीटर भागूंगा तेज, तो वहां पे क्रैक में क्लॉट आया और वहां पे क्लॉट जम गया और आप जिम से बाहर निकले और एकदम से कोलैप्स कर गए। तो ये जो हम सुनते हैं, तो ये सब एक हमारा अंग्रेजी वर्ड है, अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज, मतलब जब आप एक्सरसाइज नहीं करते और अपने सडनली आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है, या ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया आपने और आपके पास रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आप स्मोक करते हैं, लैक ऑफ स्लीप, सोते नहीं हैं, स्ट्रेस रहता है आपको काम का, वो सारी चीज़ें इसको प्रमोट करती हैं। बीच में एक बात आई थी कि वैक्सीन की वजह से तो नहीं हो रहा कोरोना की, तो उससे कुछ नहीं, जो वैक्सीन के प्रॉब्लम हुए वो पहले 2-3 महीने में हुए, 2-3 महीने आपके निकल गए तो वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो जो हम इससे ये पूछता है, डॉक्टर साहब वैक्सीन से तो नहीं हो रहा, मैं पूछता हूँ आप स्मोक करते हैं, कहते जी डॉक्टर साहब, आप कम सोते हैं, जी डॉक्टर साहब, आप क्या खान पान खाते हैं, डॉक्टर साहब खान पान का टाइम ही नहीं है, रात के 12 बजे काम करके आते तो खाना खाते हैं, ये सारे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं। तो मैंने
1: जी
0: उनसे कहा कि आप वैक्सीन को ना ब्लेम करें और इन फैक्टर्स पर
1: डॉक्टर साहब,
0: ध्यान दें।
1: इसमें एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि आज का जो हमारा स्क्रीन टाइम है बहुत ज़्यादा है, कई बार मजबूरी में, कई बार शौकिया, कई बार आदतन, क्या ये भी एक रिस्क फैक्टर या खतरे की घंटी है?
0: बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, ये रिस्क फैक्टर नहीं है बट ये हमको एक्टिविटी करने से रोक रहा है, तो एक तरह से इनडायरेक्ट रिस्क फैक्टर है ये। अब हमारी आदत हो गई थक के बैठे हुए हैं, 15 मिनट वॉक करने के बजाय हम मोबाइल देख रहे हैं, और आजकल तो AI का ज़माना है जो

0: आप सोचते हैं वही आने लगता है 2 रील या 3 रील के बाद। जो मन में होता है वो दिखने लगता है।
1: सही
0: आप
1: बोला
0: पॉलिटिक्स सोच रहे हैं तो पॉलिटिक्स दिखेगा, आप स्पोर्ट्स सोच रहे हैं तो स्पोर्ट्स दिखेगा।
1: जी। कुछ लक्षण तो शरीर देता होगा अचानक से कोलैप्स करने से पहले, या ये बताने के लिए कि नहीं अब तुम्हारे दिल में कोई दिक्कत हो रही है, तुम्हारे हार्ट में कोई समस्या हो रही है, जाकर के अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से संपर्क करो, ऐसे क्या लक्षण होते हैं?
0: तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले मैं जो लोगों को बताता हूँ या चाहता हूँ लोग अवेयर रहें आपके माध्यम से, कि सबसे पहले आपके नाभि के ऊपर से लेकर पूरा ऊपर गले तक इस हिस्से में भारीपन या आपको एक अजीब फीलिंग आ रही जो आपको कभी नहीं आई, आप थोड़ा सा चले आपको लगा कि मुझे रुक जाना चाहिए, या दर्द, या दोनों बांह में एकदम से दर्द आना शुरू हो गया
1: जी
0: या जबड़े में दर्द आना शुरू हो गया, तो ये सारे लक्षण हैं हार्ट के ब्लॉकेज होने के। तो जब भी ये लक्षण हो, और जरूरी नहीं है कि जिसको ये लक्षण हो उसको ब्लॉकेज निकले, लेकिन जब भी ऐसी चीजें महसूस हो आप फौरन अपने सबसे करीबी चिकित्सक से मिलें
1: जी
0: और उससे राय लें।
1: अच्छा, अगर जांघों और पिंडलियों में भी अचानक से दर्द शुरू होता है तो क्या ये भी हृदय की समस्या का
0: नहीं
1: एक,
0: नहीं
1: या
0: हाँ
1: पीठ के पिछले हिस्से
0: हाँ
1: में?
0: तो देखिए जहां नाभि है
1: जी
0: उसके ऊपर वाले हिस्से में जो भी तकलीफ हो रही है, पीठ के बीचों बीच तकलीफ हो रही है, ऊपर
1: जी
0: वाले नीचे वाले हिस्से में नहीं, बीच पीठ जिसको कहते हैं हम,
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: तक
1: जी
0: तो हार्ट का रूल आउट करना बहुत जरूरी है।
1: मतलब अगर ये इन लक्षणों में से कोई भी या सारे आपको हो रहे हैं तो आप बिना देर किए अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से संपर्क
0: बिल्कुल राय ले
1: करिए।
0: लें आप,
1: जी
0: और जरूरी नहीं कि निकले
1: जी
0: बट राय ले लें, क्योंकि
1: राय
0: अगर निकला तो आप फौरन इलाज करा सकते
1: बिल्कुल। डॉक्टर उमर हसन हमेशा से ही दिल के डॉक्टर बनना चाहते थे।
0: हैं। वह आप मुझे मेरे टीनेजर और बचपने में ले गए।
1: जी
0: तो हाँ मुझे बायोलॉजी बहुत इंटरेस्ट करता था, तो मैं डॉक्टर की तरफ ज़्यादा खिंचा था क्योंकि मैथमेटिक्स मेरी बहुत अच्छी नहीं थी।
1: जी
0: और मैं जब 16 साल का था तो मेरी नानी को हार्ट अटैक आया, तो जब उनको हार्ट अटैक आया और मैं उनको मेडिकल कॉलेज ले गया उस समय के मेडिकल कॉलेज में, ये मैं आपको आई थिंक अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी फैसिलिटी मुझे अपने शहर में नहीं दिखी कि अगर ये फैसिलिटी होती और ये फैसिलिटी होती तो शायद और बेहतर होता। और उस दिन मुझे लगा कि हाँ जो डॉक्टर बनने का पुश मुझे चाहिए था और स्पेशली हार्ट का, वो मुझे
1: जी
0: उस दिन मिला। तो डॉक्टरी का जिसको अगर आप कहेंगे इंटरेस्ट मुझे था शुरू से, लेकिन जो एक पुश होता है
1: जी
0: वो उस वक्त मिला मुझे।
1: अगर मैं तब की एक युवापन की बात करूं और आज की बात करूं तो हमारे पास सुविधाएं बहुत हो गई हैं, साधन बहुत हो गए हैं, सब कुछ मौजूद रहता है एक क्लिक पर। उस समय इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज के युवाओं में अगर देखा जाए तो मैं जानबूझ करके ये प्रश्न जोड़ रहा हूँ, अवसाद की, डिप्रेशन की, तनाव की, अलग अलग इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो जो आप कह रहे हैं स्मोकिंग, धूम्रपान या नशे के चंगुल में जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनको दिल की बीमारियों तक धकेल रहा है।
0: बिल्कुल
1: और गालिब का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर भी है, मैं फिर कोट करना चाहूँगा कि रहता है दिल में तेरे ख्यालों का एक हुजूम, जैसे किसी मकाम में किराएदार बहुत हों।
0: क्या बात
1: इतनी सारी चीज़ें हम दिल में लेकर के चल रहे हैं, अपने हार्ट में ले। पहले बातें कर लेते थे हम, हमारा संयुक्त तो परिवार हुआ करता था, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो मॉनिटर कर लेता था कि कुछ समस्या तो है। आज परिवार एकाकी हो गए हैं, बच्चे अलग रह करके पढ़ रहे हैं, ऐसे में बात करने के लिए कई बार उनके पास कोई नहीं होता है। आपको क्या लगता है, क्या जो दिल की समस्या है वो सारी सारी इन सारी चीज़ों को जोड़ करके अगर देखा जाए तो इन चीज़ों से भी शुरू हो रही है?
0: तो बेसिकली मैं ये मानता हूँ किसी एक चीज़ की वजह से हार्ट की समस्या नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जुड़ जुड़ जुड़ के एक समस्या बनाते हैं। जैसे आपने कहा कि बात करना, स्ट्रेस
1: जी
0: कम करना, कोई ऐसा मिल जाए जिसको अपनी दिल की बात बताना, अपने लिए समय निकालना, इतनी सारी चीज़ें इतने छोटे समय में करनी है, ये ख्याल को दिल से निकाल देना, और जिसको कहते हैं समय के साथ आप अपने आप को मॉडिफाई करिए, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि पहले हमारे पास इतने गैजेट्स नहीं थे, इतनी चीज़ें नहीं थी, हमारे पास मोबाइल नहीं था, इतने इंटरनेट और टीवी चैनल्स नहीं थे, तो हम एक दूसरे के घर जाकर या एक दूसरे से मिल के बातें करा करते थे,
1: बिल्कुल
0: और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि
1: जी
0: अगर कोई बात करने वाला होता है और
1: जी
0: दिल में कुछ तकलीफ़ है, स्ट्रेस है,
1: बिल्कुल
0: उससे फ़ौरन निकल जाता है वो।
1: बिल्कुल
0: अगर आप किसी पे गुस्सा भी हैं और आपका बीपी बढ़ रहा है और आपका कोई दोस्त वहाँ से चला आया और आपने उसको अपना हाले दिल बयां कर दिया, तो आपका फट से बीपी घट जाएगा।
1: बिल्कुल सही बात।
0: तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आप अपना लाइफ में स्ट्रेस कैसे कम करिए, क्योंकि मेरे पास जितने भी यंग लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल अपने लिए समय नहीं दे रहे हैं, उनके पास सोने का टाइम नहीं, डिनर का टाइम नहीं।

0: में समोसे खा लिए, मतलब कोई प्रॉपर मील का टाइम नहीं। और जब ये सारी चीज़ें आती हैं और कोई होता नहीं आपके पास, तब तंबाकू, स्मोकिंग,
1: जी
0: अल्कोहल, शराब, तो ये सारी चीज़ों की आदत बनती है और हम एक जिसको कहते हैं चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, वो साइकिल ऐसी बन जाती है जिससे फिर आप उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो
1: डॉक्टर
0: जाता
1: साहब,
0: है।
1: हमारा जो ट्रेडिशनल खाना हुआ करता था, तो थाली हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं आज है तो, लेकिन उसमें जो चीज़ें आ रही हैं, ज़्यादातर चीज़ें अब डिब्बा बंद हो गई हैं, पैकेज्ड हो गई हैं। कई बार कई सारे लोग जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, या जिनके पास समय नहीं होता है, या हमारे अब तो गाँवों में भी पैकेज चीज़ों का चलन हो गया है, सारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं रह गई हैं, या हमारे दिल के हिसाब से नहीं रह गई हैं। ऐसे में जो प्रॉपर डाइट, जो एक समुचित खाने की आप बात कर रहे हैं, वो क्या हो सकता है?
0: देखिए डाइट हम लोग का प्रॉपर जो पहले होता था वो अभी भी है, इन द सेंस कि दाल, सब्जी, रोटी, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो चावल, आलू, लोग दही खाते हैं। ये तो एक आप अगर कहीं घर में रहते हैं या आपकी वर्क प्लेस और घर में बहुत फर्क नहीं है तो आप खा सकते। तो अब जैसे आप कहीं बाहर गए, अब आपका घर बहुत दूर है, आप अकेले रहते हैं, आप ना टिफिन अपने साथ नहीं ले जा सकते, आपके घर में कोई है नहीं, तो आप जहाँ गए जो वहाँ पे कैंटीन है आप वहाँ से खा रहे हैं। अब वहाँ पे क्या ऑयल यूज़ हो रहा है, अनाज कहाँ से आ रहा है, पॉलिश्ड है नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं अपने पेशेंट्स को और उनके रिश्तेदारों को यही बताता हूँ, जो खाना आप खा रहे हैं वो किस तरह से बन रहा है, किस तरह से उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, कैसे ऑयल, आपने सुबह समोसा खाया उसी ऑयल में समोसा शाम में भी तल दिया गया, वर्स्ट चीज़। तो समोसा ख़राब नहीं करेगा आपकी तकलीफ,
1: तेल
0: उसका
1: खराब कर
0: माध्यम
1: देगा।
0: ख़राब करेगा। ये हम नहीं देख रहे, हम देखते नहीं कि जहाँ हम चाट खाते हैं वहाँ का ऑयल क्या है, वहाँ का जो सब्जी आई है कितने दिन पुरानी क्या है, हम कभी नहीं देखते। मैं जब MD कर रहा था तो मेरी ड्यूटी थी, मैंने MD रांची से किया अपना, और वहाँ पे लाइन से एक एक करके फूड पॉइजनिंग के पेशेंट आते रहे, 1 घंटे में 40 फूड पॉइजनिंग के पेशेंट आ गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे तो हमने उनके लिए गद्दे लगाए और मैनेज करा, हॉस्टल से भी और डॉक्टर्स बुला लिए। तो एक से पूछा तो वो लोग बेचारे किसी की तरई में खाने गए थे, और जो तरई में खाने का जो माध्यम था या ऑयल था या जो उसका पतीला था जिसमें खाना बनता है, या तो वो उसका मेटल था, क्या था हम लोग किसी को नहीं पता चल पाया, बट सारे लोग जिन्होंने वहां खाया था आ गए, और आखिरी में जिन्होंने खाना बनाया था क्योंकि आखिरी में उन्होंने खाया तो वो भी आ गए। और हम लोग 45 में शायद 44 को बचा पाए थे, एक बहुत सीनियर 70 ईयर्स का था उसको नहीं बचा पाए थे, बाकी 5 साल से बच्चों को लेकर सबको पूरा अखबार में ये एपिसोड निकला था, मैं आपको 2003 की बात बता रहा हूँ रांची में। तो माध्यम क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हम खा रहे हैं। जैसे लोग कहें डॉक्टर साहब कोई नॉन वेजिटेरियंस मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब रेड मीट तो बिल्कुल नहीं खा सकते। मैंने कहा रेड मीट आप कितना खाएंगे, अगर आप उसको हफ्ते में एक बार खा रहे हैं और घर पे बनाकर खा रहे हैं, आपको पता है क्या कुकिंग मीडियम है, तो सही है। वही चीज़ आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, कितना पुराना मीट है, किस
1: बिल्कुल
0: माध्यम से बना, वो ज़्यादा डैमेजिंग है। तो मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ 4 M याद रखिए,
1: जी
0: मलाई, मक्खन, मिठाई और जो नॉन वेज है उनके लिए मटन, इनका परहेज़ करना है आपको, बंद नहीं कर सकते आप, परहेज़ करना है। आप कैसे
1: जी
0: परहेज़ करें, आप दिन में 4 कप चाय पीते हैं, आप उसको बिना चीनी के पीजिए, और अगर आप गुलाब जामुन खाने के शौकीन हैं तो एक गुलाब जामुन खा लीजिए लेकिन 4 चाय विद 4 चम्मच चीनी और साथ में गुलाब जामुन इज बैड,
1: जी
0: तो आप सोच लीजिए आपको क्या ज़्यादा पसंद है।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: बात
0: उस
1: है।
0: हिसाब से आपको बैलेंस करना है, कोई चीज़ मेरे हिसाब से मना नहीं है। हाँ ऑफकोर्स डायबिटीज़ है, शुगर है, जो कंट्रोल नहीं हो रहा तब तो बंद हो, बट एक मैं आम बात कर रहा हूँ कि
1: जी
0: कोई चीज़ मना नहीं है, आप एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए, तनाव कम लीजिए, जो बुरी आदतें हैं उनको हटाइए कोशिश करके,
1: जी
0: और मनपसंद चीज़ें खाइए बट लिमिटेशन में।
1: डॉक्टर साहब, एक भ्रांति भी है, मिथ है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर परिवार में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम या दिल की कोई प्रॉब्लम रही है, तो वो उनको भी, उनके बच्चों को भी हो सकती है, या गर्भवती महिला से उसके बच्चे को हो सकती है, ऐसा कुछ है क्या?
0: गर्भवती महिला से बच्चे को नहीं हो सकता, नंबर एक, ठीक है, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकेजेस है तो वो होता है। मैंने एक फैमिली के 5 भाई, उसमें से 4 की एंजियोप्लास्टी करी और उनके उसी नस के में 4ों को ब्लॉकेज निकला, तो इसका मतलब फैमिली हिस्ट्री होती है, लेकिन एक भाई को कुछ नहीं हुआ। तो फैमिली में आता है बट ये 100% श्योरिटी नहीं है कि सब फैमिली मेंबर्स
1: सबको
0: में
1: हो
0: आएगा,
1: जाए।
0: हाँ, बट ये बिल्कुल है, फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे, बिकॉज इस पॉइंट को टच करना बहुत ज़रूरी था कि जिसके फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है उसको जितनी बातें हमने अभी करी उसका ज़्यादा ख्याल रखना है, ज़्यादा रिस्क फैक्टर कम रखने हैं।
1: कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, संक्षेप में बताएं, और इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?
0: सो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक फैट

0: होता है ना, मैं एकदम आम पब्लिक के लिए बता रहा हूँ, मेडिकल चीज़ इसमें कुछ नहीं,
1: जी
0: एक फैट है जो कि आपके नसों में डिपॉजिट होता है। नॉर्मल मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के सेल्स के लिए, हमारी खाल के लिए, हमारे बॉडी के एग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी
1: जी
0: होता है। लेकिन जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज की तरह
1: जब
0: डिपॉजिट होने लगता
1: जी
0: है। हमारा लिवर उसे हटाता है, तो अगर हमारा लिवर हेल्दी है तो वो उसको हटा देता है।
1: जी
0: बट अगर हमारी इनटेक की मात्रा हमारे हटाने की मात्रा की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है तो वो जमने लगता है। तो वो बहुत सिंपल है, जितने चीज़ें हमने आपको बताई, एक्सरसाइज, वॉकिंग, खान पान पे ध्यान देना, बुरी आदतें ना होना, अच्छी स्लीप करना, स्ट्रेस हटा देना, वो सबसे वो मेंटेन रहता है। कुछ फैमिलीज़ में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की टेंडेंसी होती है, ये सब करने के बावजूद भी उनके लिए वो कोलेस्ट्रॉल की दवा आती है।
1: जी ऐसा है क्या कि एक बार अगर आपकी हार्ट की दवा शुरू हो जाए खून पतला करने की या किसी भी चीज़ की, तो वो ताउम्र जिंदगी भर चलती ही रहती है?
0: अभी तक ये होता था कि 40-45 के हो गए हैं, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो एक खून पतला करने की दवा चला दो, ये बिल्कुल डेटा ख़त्म हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इस सब चीज़ों से जो ग्रामीण लेवल पे या शहर के बाहर वाले डॉक्टर्स हैं वो अपडेटेड नहीं है। वो जैसे ही डायबिटीज़ देखते हैं या ब्लड प्रेशर देखते हैं या देखते हैं कि अरे भाई उम्र ज़्यादा होगी, तो ये खून पतला करने ब्लड गाढ़ा ना हो, तो ये फैट खत्म हो गया है। इस पर बहुत ट्रायल्स आ गए हैं, 5-5 लाख लोगों पर डेटा आ गया है कि प्रिवेंटिव मतलब रोकने के लिए खून पतला करने की दवा का कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। अब हम आपके सवाल पे आए कि एक बार जब दवा स्टार्ट हो जाए खून पतला करने की, तो अगर एक बार आप किसी का ब्लॉकेज डॉक्यूमेंट कर दें, बिना डॉक्यूमेंटेशन नहीं, बिना प्रूफ करे नहीं, अगर आपने एंजियोग्राफी करी या आपने कोई भी टेस्ट करे जिससे आपने प्रूफ कर लिया कि इसके 30-40% का ब्लॉकेज है, तो फिर खून पतला करने की दवा पूरी ज़िंदगी चलती है। बट क्योंकि उसको डायबिटीज़ है, क्योंकि उसके खानदान में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तो खून पतला करने की दवा पहले से दो, इसमें कोई डेटा नहीं है। तो खून पतला करने की दवा तभी यूज़ करनी है, ब्लड कम गाढ़ा करने की दवा तभी यूज़ करनी है जब हमारे पास प्रूफ हो कि ब्लॉकेज है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करनी।
1: एक बार ब्लॉकेज अगर पता चल गया कि है, तो उसका जो अंतिम निदान है, क्या ये होना ही है कि आपको स्टेंट लगेगा या एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी होगी, या आप अपनी लाइफस्टाइल से उसको जिंदगी भर तक के लिए टाल सकते हैं?
0: ब्लॉकेज का एक परसेंटेज है,
1: जी
0: अगर 70% के नीचे है ब्लॉकेज तो कोई स्टेंट लगने की ज़रूरत नहीं है। 70, 60, 50 जो भी है, आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए, खून पतला करने की दवा खाइए, एक एंटी कोलेस्ट्रॉल दवा खाइए, वो ब्लॉकेज वहीं रुक जाता है।
1: जी
0: और जो ब्लॉकेज 80-90 है उसको आपको एंजियोप्लास्टी के ज़रिए या बहुत सारे ब्लॉकेज हैं तो बाईपास के ज़रिए ठीक करने की ज़रूरत है। बट 70% के जो जो नीचे, 70% इज़ द कट ऑफ, और आपके पास बहुत टेस्ट होते हैं जब आप 70% ब्लॉकेज देखते हैं, देखने के लिए कि एक्चुअली आपके दर्द कर रहा है या नहीं,
1: जी
0: तो वो सारे टेस्ट अगर नेगेटिव आते हैं, हमारे हार्ट में नेगेटिव मतलब अच्छा
1: जी
0: ब्लॉकेज नहीं है, नेगेटिव है ना,
1: अच्छी बात है।
0: हाँ, तो अगर वो टेस्ट दिखाते हैं कि वो 70% ब्लॉकेज आपको तकलीफ नहीं दे रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना।
1: कई लोग ये भी कहते हैं, खासकर जो मांसाहार का प्रयोग करते हैं, कि शाकाहारियों के पास बहुत अधिक माध्यम नहीं है अपने हृदय के लिए स्वस्थ खान पान लेने के लिए। जैसे कॉड लीवर ऑयल या फिश की हम बात करते हैं कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो क्या वास्तव में ऐसा है? अगर है, तो क्या शाकाहारियों को कुछ इसके पूरक के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में कुछ ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए, या शाकाहार में भी ऐसी चीज़ें हैं?
0: नहीं, देखिए शाकाहार में आपके पास फ्रूट्स हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं हार्ट के लिए। किसी को कोई बहुत लैक ऑफ सप्लीमेंट है, उसको मजबूरी में एक दवा के तौर पर खानी पड़ रही है, उसको कॉड लिवर ऑयल की एक गोली खानी पड़ रही है, लेकिन अगर वो भी नहीं खाना चाहता है या वो नहीं लेना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको लें।
1: जी
0: हम लोग अपना भिन्न प्रकार के फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, और स्किम मिल्क प्रोडक्ट्स हैं,
1: जी
0: नॉट फुल
1: फुल
0: क्रीम,
1: फुल क्रीम
0: हाँ
1: नहीं।
0: नहीं,
1: जी
0: स्किम मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, आप सब ले सकते हैं। आपके प्रोटीन के माध्यम से दाल हैं, बीन्स हैं, ये सब आप ले सकते हैं। हाँ, 2-3 चीज़ें तो एक्स्ट्रा होती हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत डिफरेंस है कि आपको नहीं वो फिश लेनी ही पड़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, और ये ऐसा विषय है और आप इस तरह से बोल रहे हैं कि इस पर दिन भर बात की जा सकती है। हमारे पास समय अब लगभग खत्म होने को है। एक छोटा सा प्रश्न मन में आ रहा है, आजकल युवा हेडफोन का प्रयोग बहुत करते हैं, तो और फुल वॉल्यूम पर करते हैं, तो क्या ये भी कुछ धमक जो जाती है, ये भी नुकसान करती है क्या? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें तेज़ आवाज़ से या धमक से दिक्कत होती है।
0: इससे हार्ट में तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, कान के
1: जी
0: पर्दे खराब हो सकते हैं और बाइक पे एक्सीडेंट जरूर हो सकता है।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमर हसन, और चलते चलते

0: इतनी अच्छी बातचीत में अगर हमसे कुछ पूछना बचा रह गया हो, या आप हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं को कुछ और जानकारी देना चाहें या अपील करना चाहें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मैं अपने देश के लोगों से यही अपील करूँगा कि फैक्ट्स माने, जो इस प्रोफेशन के लोग हैं उनसे जानकारी लें, और जो फ्री की राय मिलती है या आप मोबाइल पे पढ़ लेते हैं उसको आंख बंद करके ना फॉलो
0: खुद
1: करें,
0: से डॉक्टर ना बने,
1: खुद से ना बने। अगर आपको वो दिखता है तो आकर उसको कंफर्म करें।
0: बड़ी लंबी पढ़ाई करनी होती है डॉक्टर बनने के लिए।
1: तो
0: जी
1: आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसको आंख बंद करके ना मान लें कि ये
0: बिल्कुल।
1: चार चीज़ खाने से ठीक हो जाते हैं, इससे ये हो जाते हैं। सिर्फ आपको अगर कोई डाउट हो तो आप
0: जी
1: आकर
0: जी
1: कंफर्म
0: अपने
1: कर लें।
0: चिकित्सक से संपर्क करें।
1: बिल्कुल
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमर हसन आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए। और श्रोताओं, तो सुना आपने कि कितनी अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब ने। बहुत कठिन नहीं है अपने दिल को स्वस्थ रखना, और ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दिल ही ऐसी चीज़ है जो लगातार आपके साथ चलता रहता है अंत तक। मैं फिर से ये कहूँगा, और अपने दिल में हमेशा एक बच्चा रखिए।

0: या आप मोबाइल पे पढ़ लेते हैं, उसको आंख बंद करके ना फॉलो
1: खुद
0: करें,
1: से डॉक्टर ना बने,
0: खुद से ना बने। अगर आपको वो दिखता है तो आकर उसको कंफर्म करें।
1: बड़ी लंबी पढ़ाई करनी होती है डॉक्टर बनने के लिए।
0: तो
1: जी
0: आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसको आंख बंद करके ना मान लें कि ये
1: बिल्कुल,
0: चार चीज़ खाने से ठीक हो जाते हैं, इससे ये हो जाते हैं। सिर्फ आपको अगर कोई डाउट हो तो आप आकर
1: जी जी
0: कंफर्म
1: अपने
0: कर लें।
1: चिकित्सक से संपर्क करें।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमर हसन आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए। और श्रोताओं, तो सुना आपने कि कितनी अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब ने। बहुत कठिन नहीं है अपने दिल को स्वस्थ रखना, और ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दिल ही ऐसी चीज़ है जो लगातार आपके साथ चलता रहता है अंत तक। मैं फिर से ये कहूँगा, और अपने दिल में हमेशा एक बच्चा रखिए, तनाव कम रखिए। फिर से एक शेर मीर साहब का कहना चाहूँगा कि अगर ये दिल मेरा बच्चा ना होता तो दुनिया के तमाशे देखता क्या। तो दुनिया के तमाशे देखते रहिए, दिल में एक बच्चा रखिए, तनाव कम रखिए, अच्छी चीज़ें खाइए, बुरी आदतों से दूर रहिए, और यकीन मानिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, आपका दिल हमेशा स्वस्थ रहेगा और आप एक अच्छी जीवन शैली जी पाएंगे। हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी विशेष हस्ती के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञा पांडे को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए पंचायत घर। नमस्कार।
2: हाँ भैया,
0: हाँ
2: देखा हो
0: भैया,
2: परिवार कल्याण की बात के तहत बदलते जलवायु में हृदय का कैसे करें रखें ख्याल या ध्यान।
3: अरे भैया, मोती दिखा एक बात और कहे कहे पंचन से कि भाई बासी तेवासी खाना खाए से भी ना, तो देखा तो डॉक्टर भैया रे बतावा थे कि हृदय का बेरामी हो के डर रहा था।
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: दूसर
2: बिल्कुल।
3: बात यह है भाई कि बहुत तला भुना, जैसे कुछ लोगों का आदत रहा था ना कि जब तक पकौड़ी ना मिले तब तक उनका बात ना बना, तो कभों कभों ठीक बा भाई, मुझे रोज अगर खाबा तो नुकसान कैसे करता। और साथ ही साथ एक बात पंचन सौर अरदास करे का है कि भाई तंबाकू बाटे, बीड़ी बाटे, सिगरेट बाटे, यहाँ तरीके जो नशा बाटे ना, ऐसे भी तमाम बेरामी दिल का होत है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो अपन जीवनचर्या अच्छी रखें, आदत अच्छी रखें। डॉक्टर भैया कितना अर्थ है समझक बताओत रहन कि आदत अच्छी रहे तो सब बेरामी से दूर रह गया
2: दूर रह गया हो। एक बात भैया जोन बतान है कि भैया कुछ एक्सरसाइज जरूर करें ताकि इससे भाई तुहार दिल भी मजबूत रही, और शरीर में जब भाई गर्मी पसीना निकली तो अपने आप बेरामी दूर भागत है।
3: तो भाई देखा किसान तो मेहनत कर भी करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: हाँ, काते के साथे साथे भाई थोड़ा सा योगा बाटे, ध्यान बाटे, एका करें।
2: बिल्कुल।
3: और थोड़ का भाई जो कहा था कि अब एक्सरसाइज करें, कहा ना अभ्यास करें।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो इस कुल मिला के शरीर का स्वस्थ रखा था। एक बात देखा मोती पंचन से यो कहा कि भाई हम सब तो बेहतरी के बरे कि उनकर का जरूरत बाटे, खेती किसानी, सेहत स्वास्थ्य या और जो तमाम पहलू वहाँ समाज का, घर का, परिवार का,
2: बिल्कुल
3: ओका तो छुए कोशिश करी था। उनकर का कुछ जरूरत बाटे, का कुछ और चाहत है नो कि यो कार्यक्रम बनाए, यो शामिल हो ताकि ज़्यादा फायदा पंच भैया इनके बहन का मिल सके। तो एक बड़े भाई देखा उनकर व्हाट्सएप से प्रतिक्रिया या फेसबुक से प्रतिक्रिया उनका लीन जा सकत है, और वह तरीके से कार्यक्रम का रूपरेखा बनावे में आसानी रहे। तो भाई देखा नंबर बाटे 800-492-6250, समझता है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल भाई, कार्यक्रम सुन के गुने अगर कोनो सुझाव बात बाटे तो यहाँ पे भाई जानकारी दें, और अपन प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि कार्यक्रम कैसन लागत बाटे और काओ प्रोग्राम और भाई सुनवावा जाए ताकि लाभदायक हो।
3: ए भाई देखा ये कार्यक्रम उन्हीं के बारे बनत बाटे, उनके जरूरत के बारे बनत बाटे।
2: बिल्कुल।
3: तो उनकर भागीदारी जरूरी बाटे ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: हम कहते भाई यहाँ तरीके से जुड़ सकते हैं पंचायत घर कार्यक्रम से सीधे, और उनके बात का, उनके प्रतिक्रिया का कार्यक्रम बनावत समय में ख्याल रखा जाए।
2: बिल्कुल।
3: एक बात मोती देखा पंचन सिंह कहा है कि भाई खरीफ का तूर देखा कपारे बाटे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो खेते के तैयारी से लेके, खेते के तैयारी में भाई खेत का जोताई भया है कि नहीं, समझता ना।
2: हाँ हाँ हाँ, खेत के भाई जोताई कर लें, और जोताई करके हम तो कहब कि कुछ दिनों में भाई देखा हो धान बैठावे लायक हो जाए।
3: तब
2: और पानी बरसत बाय तो ठीक, नहीं बरसत भाई जोन साधन बाटे ओकर प्रयोग कैके समय से धाने कर रुपाई जरूर कर।
3: हाँ, नहीं तो नर्सरी जब रुढ़ाई जाता ना भैया, बेहन रुढ़ाई जाता तो ओकर बियास ना होते।
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: ना।

0: तो कहे के मतलब ये बाटे भाई कि एक तो खेत का तैयारी बढ़िया कैले, खाद पांच डाई के
1: बिल्कुल
0: हाँ, ओकरे पहले माटी के जांच करा लें, अगर बूला भटका हो तो
1: बिल्कुल
0: पता
1: बिल्कुल
0: चल जाए कि का कुछ संतुलन रखे के बात है, तो एक सबका जांच पड़ताल करा लें। साथ ही साथ भाई बिहन लगाओ समय एक सावधानी बढ़ते हैं, पंछरे करत हैं का कि दो तीन रकम का दो तीन किस्म का तो बेहन डावत हैं,
1: बिल्कुल
0: तब बेहन मिले के ना चाहिए, नहीं तो होत का कि आधा खेत तो भैया झुराई के बा पकी के बाटे काटे लाए, आधा खेत हरियर ही बाटे, ओमा दिक्कत होत है। तो एकर कुल का ख्याल रखें, और सबसे जरूरत यह बात के बाटे कि भाई मेड़बंदी मजबूत रखें।
1: बिल्कुल भाई, बरसात के पहले मेड़ बढ़िया तरीके से बांध लें। और दूसरा एक बात और हो,
0: का हो?
1: देखा हम तो भाई मनई है, हमरे तोहरे भाई भूख प्यास लागत है, तो भैया बहन जोन बताया न जोन पशु प्राणी हैं हैं, तो उन्हें भाई छाहे भान है, और लूह का मौसम चलत बाटे, और लूह में भाई उनके गर्म बया शरीर में न लागे पावे, एकरे बदे उन्हें भाई छाहे ऐसा जगह बांधे जहाँ गर्म बयार न जाए।
0: ये भैया देखा अब तक गांव गांव बिजली आवत बा, सचरी बाटे,
1: हाँ,
0: हम तक कहा था भाई अगर पक्का बाटे
1: बिल्कुल
0: या कोनो ऐसा व्यवस्था बाटे तो पंखा भी टांग दे ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल पंखा टांग दे, हवा चलत रही भाई। और दूसरा एक बात यो भाई,
0: का हो?
1: देखा आमे का सीजन भी चलत बा, और लड़का गदेला आमे के ललची में दुपहरिया भर दौड़त रहा है,
0: दुपहरिया में राती में
1: हाँ, तो सजगता हमें बांटे कि भाई लड़का गदेला के धूपे में जाए से मना कर रहे हैं, कहें से कि उनके मन ललचाई तो दौड़िए, तो हमार तोहार फर्ज बाय कि भाई उन्हें साझे सवेरे अगर जाए चाहे बागी में तो घूम के आवें, और दोपहरिया में घूमे न जाए दें।
0: दोपहरिया में जाए दें, एक बात और ख्याल रखे ना,
1: हाँ,
0: कि पेड़े पर चढ़े ना भाई,
1: बिल्कुल
0: तो हो तो का कि कतहूँ हाथ गोर सरका तो कहूँ बड़ी दुर्घटना हो जात है।
1: बिल्कुल,
0: और एक बात यो कहे का है कि भाई देखा अगर आम तोड़ब जरूरी बाटे तो आमे तोड़ा, ये ना है कि ओकर पाती डांट कुल तोड़त है
1: ए भाई, अब तो लग्गी बनाई के अपन आम तोड़ ही लिया। और एक बात भाई बहुत जरूरी बन हो कि अभी कच्चा आम बहुत मिल जाई हैं, और यह हमें भाई यह मौसम में अगर पन्ना बनाए पियत है या ये तोहरे स्वास्थ्य बदे
0: अमृत
1: बहुत
0: है भैया, अमृत है,
1: लाभदायक है, हाँ अमृत है,
0: ये लोग से ताप से गर्मी से बचाव करत है। और साथ ही साथ शरीर में जो हम पानी का कमी रहा था ना भाई, जिसे तमाम तरीके से रोग याद होता है,
1: बिल्कुल
0: उससे बचाव हो सकता है। और साथ ही साथ भाई एक बात यह हुआ है कि देखा आजकल रोग याद का एक बहुत बड़ा कारण होता पानी का गड़बड़ी,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर अशुद्ध पानी बाटे वो का खाए पी ले है तो तमाम तरीके के बीरामी हो जाए, था पानी से बहुत ज़्यादा बीरामी होता, तो अगर कोनो ऐसा अंदेशा हो तो हम तो कहते हैं भाई पानी का शोधित कर लिए, शोधन का मतलब यह है वो ला के उबाल के ठंडा हो जाए तो छान के गगरी लोटा बाल्टी में जहाँ रखत हुआ
1: बिल्कुल
0: ओमा भर ले भाई, पानी खत्म हो जाए फिर ओकर बाद दूसरा पानी यही तरीके से बना लिया।
1: बिल्कुल, एक बात भाई सुमेर भैया,
0: हाँ
1: देखा हो जोन गगरी में पानी रख जाता है वो तो भाई गर्मी में ठंडा हो रहा था, और भैया वो हम तो कहा स्वाद भी ओकर बढ़िया होता है।
0: हाँ,
1: और भैया लोगन बतावत हैं जानकार कि भैया वो कीटाणु रहित होता है।
0: तब हम कहते भाई यह तरीके से अगर पंचहरे सावधानी बरती हैं, देखा भैया सावधानी हमेशा इलाज से बेहतर हो,
1: बेहतर होता
0: ना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: सावधानी बरतें, स्वस्थ रहें, परिवार का स्वस्थ रखें, जानवर गोरु को स्वस्थ रखें, तो यहीं अरदास पंचन विदाल जा, अच्छा पंचो
1: राम
0: राम।
1: राम।

ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब हम आपको हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे प्रवीण शेखर की वार्ता, डिजिटल दौर में रंगमंच के समक्ष चुनौतियां। 7:45 पर सुगम संगीत, सात्विक मिश्रा से भजन सुनिएगा। 8:00 चित्रलोक, क्षमा कीजिएगा, 8:00 आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। 8:30 पर सबरस,

रात 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में दो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में सम्मिलित हुए, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतमबुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 96 में बने नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्य प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में आज प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमी कंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहां बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीसीबी सर्किट के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा कि पहले इसे भारत आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए, तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और उद्यमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आज नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ग्रेट ट्रेड शो के चौथे संस्करण के कर्टन रेजर सेरेमनी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
3: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
0: कार्यक्रम को प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी संबोधित किए कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों आदर्शों की राजनीति अपनाकर शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की यात्रा सत्ता प्राप्त की यात्रा नहीं है, बल्कि सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और समन्वय की बेहतरीन यात्रा है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में

0: लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श ये संस्कार समाहित हो सके इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित दो आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस दौरान बच्चों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला बनते हैं। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में आज उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी के सघन चेकिंग जारी हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कल प्रयागराज में ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बिजली से संबंधित किसी भी समस्या अथवा शिकायत का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि वर्षा काल को देखते हुए सभी नालों के समयबद्ध सफाई कर जल भराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाई जाए। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉ सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग से प्रतिवर्ष 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का वार्षिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2478 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात।

0: मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए सम्मिलित, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या, नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन, अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए प्रवीण शेखर की वार्ता, डिजिटल दौर में रंगमंच के समक्ष चुनौतियां।
2: वार्ता की शुरुआत में एक घटना साझा करने का जी चाहता है। बात उन दिनों की है जब वियतनाम युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन के लोग खुद को अलग थलग, उदासीन, कटे हुए अनुभव कर रहे थे। उन दिनों विश्वख्यात नाट्य निर्देशक पीटर ब्रुक, जो बीती शताब्दी के 90वें दशक में महाभारत नाटक के लिए दुनिया भर में बहुत चर्चित रहे हैं, उन्होंने ब्रिटेन के लोगों को वियतनाम पर आधारित एक नाटक दिखाया। किसी उद्देश्य को जाहिर किए और बिना किसी उत्तेजना के, एकदम खामोशी से। नाटक के अंत में एक दृश्य था जिसमें एक पात्र सेंटर स्टेज पर आता है और एक बॉक्स खोलता है। उस बॉक्स में से अचानक ढेरों रंग बिरंगी तितलियां निकल निकल कर पूरे प्रेक्षागृह में इधर उधर उड़ने लगती हैं। पूरे प्रेक्षागृह में दर्शकों की खुशी और हंसी तैर जाती है। तभी अचानक वो अभिनेता एक हाथ में एक तितली के पंखों को पकड़कर खड़ा हो जाता है और दूसरे हाथ से जेब में रखा लाइटर निकालता है। उजलता हुआ लाइटर तितली के नज़दीक ले जाने लगता है। दर्शक खामोश हो जाते हैं, ज़रा भी आवाज़ नहीं। लोग चुपचाप तितली को जलता हुआ देखकर हतप्रभ रह जाते हैं और धीरे धीरे प्रेक्षागृह से बाहर निकल जाते हैं, मन पर न जाने कितना बोझ और अवसाद लिए। ये दृश्य कई प्रदर्शनों में दोहराया जाता रहा, लेकिन एक दिन अचानक वहाँ विचित्र घटना घटी। ये दृश्य चल ही रहा था कि दर्शकों के बीच से एक महिला तेजी से निकली और तितली को मंच पर खड़े अभिनेता के हाथों से मुक्त कराते हुए बोली, आपने देखा, खराब से खराब हालात में भी कुछ न कुछ तो किया ही जा सकता है। थिएटर की भाषा और समाज की संवेदनशीलता को लेकर इस घटना के कई मायने हैं, लेकिन उस महिला का लाइटर की आग से तितली को बचा लेने की पहल क्या रोशनी की एक लकीर खींच देना नहीं है? बेरुखे और बेजान होते जा रहे समय में रंगमंच ऐसे ही जीवंत और धड़कती हुई उम्मीद देता है। यही रंगमंच की सजीवता, जीवंतता और शक्ति है। रंगमंच में ऐसा क्या है जो इस अनूठे कला माध्यम को दूसरे कला अनुशासन या माध्यमों से अलग करता है? थिएटर या रंगमंच एक करियर, टेलीविज़न या सिनेमा की ओर जाने का एक रास्ता, सीढ़ी, किसी भी तरह स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन आत्मविस्तार, अपनी खोज, खुद को समृद्ध करने और मनुष्य का मनुष्य से जीवंत संवाद कायम करने की इच्छाएं किसी इंसान में कभी नहीं मरती। रंगमंच में ये विस्तार और तलाश संभव है। ये इस मीडियम की ब्रांडिंग या प्रोपोगंडा या प्रचार नहीं है। किसी को एक्टर या डायरेक्टर बनाने की कोशिश भी नहीं है, बल्कि इस मीडियम को लेकर जिस संवेदनशीलता, सेंसिटाइजेशन या अनुभूति और समानुभूति की ज़रूरत है और होनी चाहिए, उसकी ओर एक इशारा ही है। रंगमंच या नाटकों की सृजनात्मक दुनिया किसी भी व्यक्ति को मॉडर्न होने का अवसर देता है और कंप्लीट होने के रास्ते पर ले जाता है। रंगमंच और इंसान के संबंध, कला माध्यमों से मानवीय रिश्तों के इतिहास और सभ्यता के इतिहास में अगर पीछे मुड़कर देखें तो ये बहुत साफ ढंग से दिखता है कि आदिम युग से ही अभिव्यक्ति के लिए किसी घटना या आपबीती को अपने साथियों या अपने लोगों के बीच बताने या दिखाने के लिए मनुष्य देह भाषा का प्रयोग

करता रहा है। दरअसल यही रंगमंच की शुरुआत है। मानवीय संवाद और अभिव्यक्ति के लिए जब भी कोई नई पहल हुई है, कोई नई शुरुआत हुई है या कोई नया आविष्कार हुआ है, तब तब ये बहस और विमर्श होता रहा है कि रंगमंच का भविष्य कैसा होगा या किस तरह की चुनौतियां आएंगी। जैसे आजकल ये बहस कि डिजिटल युग में रंगमंच के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं। अपने अस्तित्व को लेकर रंगमंच ऐसे सवालों से मुठभेड़ करता रहा है। जब 19वीं शताब्दी में दुनिया भर के साहित्य में बहुत कुछ श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम लिखा जा रहा था, तब भी ये सवाल आया था कि अब लोग थिएटर से विमुख हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 20वीं शताब्दी में, जो सिनेमा की शताब्दी कही जाती है, जब दुनिया भर में सिनेमा विकसित हुआ और सुंदर, श्रेष्ठ, कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में स्थापित हो गया, तब भी ये बात हुई थी कि रंगमंच का भविष्य अब अंधेरे में है। फिर रेडियो और टेलीविज़न के लोकप्रिय होने के साथ और इन माध्यमों के वर्चस्व के बढ़ने के साथ भी ये बात आई कि लोग अब रंगमंच से कट जाएंगे। अब सूचना और डिजिटल माध्यमों की क्रांति की इस 21वीं शताब्दी में भी ये बहस फिर शुरू हुई है, विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद। सामान्य धारणा है कि डिजिटल दौर में रंगमंच कई तरह की चुनौतियों से घिरा है, जहां तकनीकी प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक ह्रास भी जुड़ गया है। रंगमंच अब दर्शकों की बदलती आदतों से जूझ रहा है। दर्शक केंद्रित चुनौतियां डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे OTT यानी ऑन द टॉप, शॉर्ट वीडियो क्लिपिंग्स या ऐप्स के दर्शकों को त्वरित व्यक्तिगत मनोरंजन की ओर खींच लिया है। रंगमंच का लाइव सामूहिक अनुभव अब प्रतिस्पर्धा में पिछड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि दर्शक घर बैठे एक अलग प्रकार के मनोरंजन की सामग्री पा सकते हैं। लेकिन स्क्रीन पर भाव भंगिमाओं का ह्रास और इंटरैक्टिविटी की कमी रंगमंच की मूल आत्मा को कमजोर करती है। पारंपरिक मंचों का रखरखाव महंगा है, जबकि डिजिटल कंटेंट उत्पादन सस्ता एवं स्केलेबल लग सकता है। रंगमंच का सौंदर्य, जीवंत ऊर्जा, दर्शक अभिनेता और नाटकीय तनाव में निहित है, जो डिजिटल माध्यम में दो आयामी हो जाता है। नाट्य परंपरा में सामाजिक राजनीतिक विमर्श अब OTT के सतही नैरेटिव से प्रतिस्थापित हो रहा है। ये डिजिटल सामान्यीकरण रंगमंच की आलोचनात्मक गहराई को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि एल्गोरिदम आधारित आरोपित और अनचाही चीज़ें विविधता को सीमित कर देती हैं। कई देशों में थिएटर इन द डिजिटल एज, ऑडियंस व्यूइंग एक्सपीरियंसेस विषय पर शोध हुए। ऐसे ही कई तरह के प्रामाणिक मीडिया शोध और वास्तविक उदाहरण ये साबित करते हैं कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के बावजूद थिएटर या रंगमंच या स्टेज ड्रामा अपनी शक्ति, सार और सामाजिक भूमिका बनाए हुए है। थिएटर की जीवंतता और डिजिटल युग के बावजूद दर्शकों की पसंद में डिजिटल प्लेटफॉर्म सहायक हो सकते हैं। उनका खतरा मूल रूप से थिएटर को खत्म नहीं कर रहा है। डिजिटल मीडिया और तकनीकी बदलावों के बावजूद लाइव थिएटर अभी भी दर्शकों को खींचता है, क्योंकि लोग थिएटर में असीमित मानव संपर्क, भावनात्मक जुड़ाव और भागीदारी चाहते हैं। इस शोध के लिए सैकड़ों रंगमंच प्रेमियों ने कहा कि वो डिजिटल मंच पर मुफ्त में नाटक देखने के बजाय लाइव थिएटर जाने को प्राथमिकता देते हैं। यानी डिजिटल मीडिया थिएटर को समाप्त नहीं कर पाया। लोग अनुभव के लिए स्टेज पर लौट रहे हैं, अच्छे सौंदर्य से भरे सामाजिक और मानवीय भाव और प्रतिबद्धताओं को लेकर रचे गए नाटकों में दर्शकों की भीड़ से प्रदर्शन की शक्ति दर्शाता और आश्वस्त करता है। द रोल ऑफ थिएटर फॉर डेवलपमेंट इन द डिजिटल वर्ल्ड अध्ययन में ये साबित हुआ कि डिजिटल दुनिया में थिएटर का महत्व और भी बढ़ता है, क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करता है, भावनात्मक जागरूकता को दर्शाता है और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाता है। यहाँ तकनीक थिएटर का सहयोगी है, खत्म करने वाला नहीं। डिजिटल मीडिया रंगमंच का विकल्प प्रतिस्थापन नहीं है, बल्कि उसकी पहुँच और प्रभाव का विस्तार करता है। बीते कुछ वर्षों में लगातार हिंदी, बांग्ला, मराठी, मणिपुरी, कन्नड़, असमिया, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं में और उनके नाटकों का
हाउसफुल प्रदर्शन इस

बात की गवाही देते हैं कि देश के कई शहरों में हो रहे भारत रंग महोत्सव के नाटकों में आ रही दर्शकों की बड़ी संख्या ये साबित करते हैं कि डिजिटल माध्यम पर हुए प्रचार का ये सुखद परिणाम है। मराठी नाटक संगीत देवबा भाली ने डिजिटल चर्चा के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाई और उसके बाद भी स्टेज शो हाउसफुल रहे। इस मराठी नाटक पर एक छोटा सा ऑनलाइन इंटरव्यू वायरल हुआ, रील बनी, क्लिप चली, लोगों ने जिज्ञासा के साथ लिखा क्या ये नाटक अभी भी मंच पर होता है। अगले महीने उसके लगातार हाउसफुल शोज, डिजिटल माध्यम पर उस नाटक की चर्चा खतरा नहीं बनी, नाटक तक पहुंचने का रास्ता बनी। व्हाई थिएटर स्टिल मैटर्स इन द एज ऑफ सोशल मीडिया जैसे शोध बताते हैं कि रंगमंच में मौजूद रियल टाइम मानव संपर्क, साझा भावनाएं, तालियां और दर्शकों का समूहात्मक अनुभव डिजिटल स्क्रीन पर नहीं मिल सकता। डिजिटल सोशल मीडिया सूचना देता है, रंगमंच अनुभव देता है, ये फर्क बहुत बड़ा है। रंगमंच की जीवंत चेतना को जीवित रखने के लिए 30 से ज्यादा देशों में बेलारूस वर्ल्ड वाइड रीडिंग्स प्रोजेक्ट का शोध हुआ। कोविड महामारी के दिनों में शहर और गांव सूने थे, मोबाइल फोन की स्क्रीन रील्स शॉर्ट्स लाइव सब कुछ भरा हुआ था। उसी समय एक ऑनलाइन जूम रीडिंग हुई, दुनिया भर के कलाकार जुड़े, हजारों लोगों ने स्क्रीन पर देखा। दिलचस्प बात यह थी कि हर प्रस्तुति के बाद चैट में एक ही बात बार बार लिखी जाती थी, जब थिएटर खुले इसे लाइव देखना है। यानी स्क्रीन ने थिएटर को हटाया नहीं, उसके लिए भूख पैदा की। एक विश्वविद्यालय ने मानसिक स्वास्थ्य पर एक डिजिटल थिएटर प्रोजेक्ट शुरू किया, द मैनिक मोनोलॉग्स। लोगों ने मोबाइल पर देखा, रोए, कमेंट किया, शेयर किया, लेकिन कुछ महीनों बाद जब वही मोनोलॉग मंच पर हुआ, दर्शकों की आंखें स्क्रीन से ज़्यादा नम थीं। लोगों का कहना था कि वीडियो ने उन्हें जानकारी दी, लेकिन मंच ने उन्हें बदल दिया। नाट्यशास्त्र के संदर्भ में रंगमंच की रस निष्पत्ति एक अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण अवधारणा है। नाट्यशास्त्र के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। पर यह निष्पत्ति केवल दर्शक तक सीमित नहीं है। अभिनेता अपने भीतर के स्थायी भाव को शरीर यानी आंगिक, वाणी यानी वाचिक, मनोदशा यानी सात्विक के माध्यम से मंच पर संप्रेषित करता है। जब दर्शक उस भाव से तादात्म्य स्थापित करता है, तब उसके भीतर रस जागृत होता है और दर्शक की मौन तन्मयता, सांस का क्षण भर रुक जाना, हंसी, आंसू, सिहरन या पूर्ण निस्तब्धता, ये सब अभिनेता तक अदृश्य संकेतों के रूप में लौटते हैं। इससे अभिनेता का भाव और अधिक तीव्र, सघन और सजीव हो जाता है। नाट्यशास्त्र भले ही दर्शक को रसास्वादक मानता है, लेकिन सहृदय की अवधारणा बताती है कि रस तभी पूर्ण होता है जब दोनों पक्ष संवेदनशील हों। अभिनेता का भाव साधन और दर्शक की रस ग्रहण क्षमता एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करती रहती है। इसी रस प्रवाह के कारण रंगमंच कभी रिकॉर्डेड नहीं हो सकता। इसकी हर प्रस्तुति अद्वितीय होती है। वही नाटक, वही अभिनेता, पर हर शाम नया अनुभव। अभिनेता और दर्शक की सांस एक समय में चलती है। गलती, जोखिम, जीवंतता साथ होती है। ये अनुभव रिकॉर्ड नहीं, घटित होता है। यही कारण है कि डिजिटल माध्यम भाव पहुंचा सकता है, पर रस का जीवंत संवाद केवल रंगमंच में संभव है। कह सकते हैं कि स्क्रीन ध्यान खींचती है, मंच आत्मा को। भरत मुनि का ये मानना रहा है कि संसार की कोई ऐसी कला, ज्ञान, शिल्प, विद्या, योग या कर्म नहीं है जो नाट्य में अंग न बन सके। रंगमंच के अभ्यासी या निरंतरता और गंभीरता से साधना करने वाले जानते हैं कि किस तरह कला के सारे माध्यम, विज्ञान के सारे अंग, साहित्य और संस्कृति के सभी रूप रंगमंच में शामिल हैं। रंगमंच ने विज्ञान, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, फोटोग्राफी आदि को अपने में समाहित कर लिया है और सिनेमा मल्टीमीडिया को अपनाकर अपनी सीमाओं का विस्तार किया है। इसी प्रकार डिजिटल व सोशल

0: मीडिया को एकीकृत कर थिएटर ने आधुनिक दर्शकों को जोड़ा है या जोड़ सकता है या पहले भी जोड़ा जा चुका है। डिजिटल मीडिया के एकीकरण से थिएटर डिजिटल तकनीकों जैसे प्रोजेक्शन, मोशन ट्रैकिंग, वीडियो मैपिंग, इंटरैक्टिव इंटरफेस को अपनाकर इमर्सिव अनुभव प्रदान करता है, यानी आप बाहर से उसे देख नहीं रहे हैं बल्कि उसके अंदर मौजूद हैं। सोशल मीडिया थिएटर के लिए प्रचार, दर्शकों की भागीदारी नई अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुका है, जहां प्रदर्शनों के क्लिप शेयर कर व्यापक पहुंच बनाई जाती है। परंपरागत थिएटर वाले नाट्यशास्त्र और आधुनिक रंगमंच की सीखों के साथ सोशल मीडिया को अपनाकर दर्शकों से गहरा जुड़ाव संभव बनाते हैं और बिना सौंदर्य भंग किए। ये एकीकरण थिएटर की मूल प्रकृति और प्रयोग को मजबूत करता है। एक बात निश्चित है कि डिजिटल माध्यम दर्शक बनाता है, रंगमंच अनुभव देता है।
1: हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे प्रवीण शेखर की वार्ता, डिजिटल दौर में रंगमंच के समक्ष चुनौतियां। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सात्विक मिश्रा के स्वर में भजन।

इस सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर 0532-2970-462 और 0532-242-3649 पर पहुंच सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0532-2970-462 और 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, नंबर है 8004926250। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में अप्रैल फूल फिल्म से। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, शब्द रचना हसरत जयपुरी की।

अभी आप सात्विक मिश्रा के स्वर में भजन सुन रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। दिनांक 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले

हम दिल दे चुके सनम। जी हाँ, लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये गाना। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। संगीत से सजाया है इस्माइल दरबार ने, शब्द रचना महबूब की।

श्रोताओं, अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन सचदेवा की आवाज में, सनम बेवफा फिल्म से। सावन कुमार के बोल, महेश किशोर का संगीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: श्रोताओं, चित्रपट संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शब्द रचना मजरूह की।

सजना सजना ओ सजना।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत के कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आरजू फिल्म से। संगीत है शंकर जयकिशन का, बोल हसरत जयपुरी के।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना आपने सुना। इसी गाने के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। दिनांक 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532-2970-462 और 0532-242-3649 पर पहुंच सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0532-2970-462 और 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली खां की आवाज में ये सूफी सॉन्ग।

तक ऐब मेरे, तक ऐब मेरे उत्ते पाई पर्दा, तैनू तेरी करीमी दा वास्ता जी। जिस दे सदके थी सानू तू बख्शना है, ओस नूरे कदीमी दा वास्ता जी। दिन महशर ना बरी दी पुछ होवे, मुस्तफा दी यतीमी दा वास्ता जी। जिस दिया अखियां चों ओदी याद अंदर वगदा, दिने राती नीर होवे, ओनु किदरे गरीब ना आख बैना, ओदे जेड ना कोई अमीर होवे, ओदे दर्दे गदावां दी की दसा, करके नजर इको दुनिया बदल दिंदे, ओनी मंगदा तख्त पे।

अभी आपने बेगम अख्तर की आवाज़ में ये गज़ल सुनी। इसी के साथ सबरस कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान।

0: मान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोको डीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar.

0: of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।

0: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes.

0: डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जना मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर की जानिब से गर्मजोशी से खैर मकदम किए जाने की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेशेल्स बहरे हिंद में एक अहम बहरी शराकत दार और एक करीबी दोस्त है। जना मोदी ने कहा कि वो एक सूदमंद दौरे के मुंतजर हैं, जिसका मकसद भारत सेशेल्स देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में इश्तराक में इजाफा करना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन भी गए और वहां पौधा लगाने की तकरीब में शामिल हुए। तकरीब के दौरान जनाब मोदी ने सेशल्स के सदर की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। वजारत खारजा के मुताबिक पौधा लगाने की यह तकरीब एक पेड़ माँ के नाम पहल का एक हिस्सा थी और इससे पायदारी और माहौलियात की खातिर भारत सेशल्स के दरमियान मुश्तरक अज़्म की अक्कासी होती है। वो बोटानिकल गार्डन में जॉइंट टॉर्टोइज इनक्लोजर भी गए। इसके बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वहां आबाद भारतीय बिरादरी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी ने दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा एक मुतहरिक पुल का काम किया है, इससे अवाम के दरमियान रबते मुस्तहकम हुए हैं। खैर सगाली के खसूसी कदम के तहत वजीर आज़म मोदी ने सेशल्स के सदर को भारत में तैयार करदा गश्त के लिए तेज रफ्तार बहरी जहाज सुपुर्द किया। उन्होंने उन्हें 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी गाड़ियां और 5 लेजर रेडियल कश्तियां भी सौंपी, जो सेशल्स की तरक्की और सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाएंगी। वजीर आज़म मोदी सेशल्स के तारीखी यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी होंगे। वो सेशल्स की कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करने वाले पहले भारतीय वजीर आज़म हैं। दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारतीय बहरिया का अंदरूने मुल्क तैयार करदा निगरानी से मुतालिक बहरी जहाज INS इक्षक जनूबी मगरबी बहरे हिंद खित्ते में इसकी तैनाती के हिस्से के तौर पर सेशेल्स में विक्टोरिया बंदरगाह पहुंच गया है। वजारत दिफा ने कहा है कि सेशेल्स के 50वें कौमी दिन के मौके पर यह बहरी जहाज वहां पहुंचा है। इसने मजीद कहा है कि इससे भारत और सेशेल्स के दरमियान बढ़ती बहरी शराकतदारी और देरीना दोस्ती का इजहार होता है। इस दौरान INS इक्षक कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेगा और सेशेल्स की दिफाई अफवाज के साथ सिलसिलेवार पेशावराना राबते कायम करेगा, जिनका मकसद बहरी इश्तराक और एक दूसरे के तरीक़ेकार से वाकफियत में इजाफा करना है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DT न्यूज, वजीर आज़म के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराहे रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गांधीनगर में नायब वजीर आला हर्ष सिंघवी की मौजूदगी में जिला तरक्याती तालमेल और निगरानी कमेटी की सदारत की। वजीर मौसूफ ने मरकज की कई अहम स्कीमों पर अमल आवरी का जायजा लिया। किसानों को माली एतबार से बाख्तियार बनाने की गरज से जनाब शाह ने एक तेज रफ्तार सर्वे कराए जाने की बात कही, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जमीन रखने वाले हर किसान को कम अज कम 2 मवेशी मुहैया कराए जाए। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि दुनिया भर में किसी भी मईशत की मजबूती बहुत छोटे और मुतवस्सित कारोबारी इदारों के इसके शोबे के इश्तराक पर मबनी होती है। आज नई दिल्ली में MSME के दिन 2026 उद्यमी भारत की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में MSME का शोबा पहले सिलसिले के एंटरप्रेन्योर्स के हौसले और कारोबारी जज्बे की अक्कासी करता है। नायब सदर ने कहा कि यह शोबा मुसलसल आला मियारात को बरकरार रखते हुए मुल्क की कुल बरामदात में तकरीबन 50% का तआवुन कर रहा है। जनाब राधाकृष्णन ने मजीद कहा कि MSME का शोबा 2047 तक विकसित भारत की जानिब मुल्क के सफर में एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता हैं उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं,

पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है, उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट है। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कोश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं। अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी की उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं, सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप, कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है।

0: ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड, और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठाकर देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और फिर डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाए, पहले से तैयारी रखें, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। इसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स से कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
2: जी।
3: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
2: जी,
3: उन्होंने देखा जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
2: जी।
3: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
2: जी,
3: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
2: जी,
3: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
2: जी।
3: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन

0: है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इंपॉर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
3: जी।
4: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स में काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की

0: वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
1: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून महा विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की। उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ। उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
2: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा

0: को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर, फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंटवार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव, इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होके अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
2: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है।

0: वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरू प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तान

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was Rag Rageshri, performed by Prabhat Mukhopadhyay. He concludes his recital with a Pahari Dhun.

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स

0: 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Marke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The Ministry said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that Mr. Singh claimed that no Indian soldier lost his life during Operation Sindoor. Explaining the context of the Defence Minister's remarks, the Ministry said that at the time of Mr. Singh's address, a particularly persistent and dominant narrative had emerged in certain sections of the media and on social media claiming that Indian pilots had been lost during Operation Sindoor. The Ministry said this narrative was entirely false, yet it was being amplified aggressively with the clear